0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रابطے کے نمبر 416-593-0003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب۔

0: की विंडो थी, इसके अंदर आपने कुछ भी जो है ना वो करने की कोशिश नहीं की, तो ये आप क्यों जो है ना वो ऐसी किसी तारीख का जो है ना वो इंतजार करते रहते हैं कि जब, और ये इससे फर्क जो है ना वो किसी को इतना नहीं पड़ता, खुद आपके कॉज को जो है ना वो ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब आपका कॉज ठीक है, सही है, आप राइट के ऊपर हैं और आप अपना एहतजाज जो है ना वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो क्यों ऐसी तारीखों को जो है ना वो आप इस्तेमाल करके खुद उसको जो है ना वो कॉन्ट्रोवर्शियल जो है ना वो कर देते हैं।
1: अभी जो आज अलीमा खान साहब ने जो अपील की थी, आए मेंबरान पार्लियामेंट वगैरह या नहीं आए वहाँ पे?
0: जी वो उसके ऊपर यही ज्यादा इतलात है कि बजाय जितने मेंबर पार्लियामेंट, देखें पीटीआई के इस वक्त तकरीबन जो है ना वो 400 के करीब, 300-400 के करीब है।
1: अच्छा,
0: वो
1: दोनों एमपीपीज और ठीक है बिल्कुल।
0: हाँ जी, तो क्या कहते हैं अपना उनको, और चले साबिक भी अगर हम जो है ना वो मिला लें सबको, मिला के जो है ना काफी बड़ी तादाद जो है ना वो बनती है, तो वहां पे जो है ना वो जो कारकुन थे वो इससे ज्यादा तादाद के अंदर थे। तो जो क्या कहते हैं अपना जो अपील की थी वो तो उनके लिए की थी कि ये जो मेंबर पार्लियामेंट है ये खान साहब की वजह से बने हैं और इनको वहां पे जो है ना वो आने के लिए जो है ना वो कहा गया था, लेकिन कोई खास जो है ना पीटीआई के जो
1: नहीं थे। ठीक
0: है, अच्छा सर, वो वहां पे
1: नहीं। मुल्क में पहली आईटी मर्दमशुमारी कराने का असूली फैसला किया गया है, नौजवानों की डिजिटल महारतों को जामे डाटा जमा किया जाएगा, वजारत आईटी ने इसका दावा किया है, तो क्या इसका फायदा होगा या जबानी जमा खर्च है? क्या वाकई गवर्नमेंट आईटी के हवाले से कोशिश कर रही है, कुछ इसमें इंकलाब लाने की कोशिश कर रही है?
0: जी देखें, अभी वो हमने खबर को डिस्कस भी किया था कि वो पाकिस्तानी निजात बच्चा है जिसने अपनी एआई की कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर के साथ खोली थी और उसको जो है ना वो अब $60 बिलियन के अंदर जो है उसको टेक ओवर किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर थी टेक इंडस्ट्री के अंदर ये, और बड़ी देर मतलब ये कि उसके ऊपर गुफ्तगू होती रही। बहरहाल आईटी के अंदर जो है वो पोटेंशियल जो है पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ब्रिलियन माइंड्स जो हैं वो मौजूद हैं और इनको ग्रूम करने की, इनको यही जो है ना वो चीज, यही बच्चे जब बाहर जाके बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं और वहां पे आप देखेंगे किस तरह के रिजल्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, तो यही ग्राउंड अगर इनको यहाँ पे जो है ना वो अवेलेबल हो बच्चों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है या जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, इनको ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चे फिर इस तरह एक्सेल करते हैं ना उनकी बेस शुरू से बनाई जाती है, तो हमारे यहाँ पे जो है ना वो आईटी की बेस बनाने के लिए हमारे यहाँ पे अभी तक तालीमी निजाम को उस तरह खोला नहीं गया कि हम बच्चों को कैटेगराइज कर सकें कि कौन से बच्चे आर्ट्स में अच्छे हैं, कौन से साइंस में अच्छे हैं, कौन से आईटी के अंदर और कंप्यूटर्स के अंदर जो है ना वो इंटरेस्टेड है, तो उन उस बच्चे को उस कैटेगरी के मुताबिक शुरू से ही जो है वो उसकी तरबियत वो की जाए। हमारे यहाँ पे 60-70% पेरेंट्स का आज भी माइंडसेट यही है कि बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेगा तो दुनिया में एक्सेल कर सकता है।
1: ऑल राइट, चलिए कॉल्स लेंगे आपकी स्टूडियोज में, रब्ते के नंबर 416-593-0003-566 फर्स्ट कॉलर है आज, 566 आप ऑन एरेंज बात कीजिए, 566 लास्ट फोर डिजिट्स 566।
2: अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब।
1: जी वालेकुम सलाम
2: भट्टी साहब, पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, नई 9 मई अपना 10 मई की एक जंग हमने जीती 9 मई के दुश्मन से,
1: ठीक है,
2: और एक 10 मई को हमने, मैं समझता हूँ सब आवाम ने मिलके पूरे पाकिस्तान ने एक होकर ये जंग जीती थी उस दिन।
1: ठीक,
2: 10 दिन पहले तक अगर पतलूने उतारी जा रही थी किसी सोशल मीडिया पे, सब पाकिस्तानी
1: ठीक है जी जी ठीक।
2: दूसरी चीज देखिए, आईटी में जहाँ तक बात है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर यूथ हमारी ज्यादा है रेशो में, हमें इतना बड़ा एसेट है ये हमारा कि हमें चाहिए हम एक होकर इस एसेट से फायदा उठाएं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मर्ज करेगा, बड़ी अच्छी ताकत बनती है इंशाल्लाह।
1: ऑलराइट जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 6536 सर, आप बात करेंगे 6536। अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं 7997 सर, आप ऑनलाइन बात कीजिए 7997।
3: कैसे हैं आप?
1: जी शुक्रिया सर, थैंक यू
3: जनाब। ये आप जो ये जो बात की जा रही है ना ईरान और अमेरिका की जंग बंदी की, ठीक है, ये जंग बंद नहीं होगी, इसकी बहुत सारे वजूहात है।
1: ओके,
3: अगर ईरान बैक होता है तो ईरान में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी।
1: ओके,
3: अमेरिका का जो है अब मसला ये है कि एक बंदा है बदमाश है पूरे मोहल्ले का, अब उसको छोटी मोटी फैटी लग गई है तो अगर वो बैठ के घर चला जाए अपने तो उसकी बदमाशी तो खत्म है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख ले, हम कितने भी पाकिस्तानी ईरान के फेवर में हो, हमें ईरान को ये समझाना चाहिए कि भाई आप ये गुजरगाह को बंद नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं है, ये हमेशा से ऐसी खुली थी और ऐसी खुली रहेगी।
1: ठीक,
3: और अगर अमेरिकन्स ने कोई एग्रीमेंट किया तो पाकिस्तान को भी उस पर खड़े हो जाना चाहिए, इस डिसीजन को मानना नहीं चाहिए।

0: क्योंकि इसके पैसे पाकिस्तानी सब भरेंगे, ठीक है, और हमें मिडिल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज है मजहबी तौर भी है, हम अरब के साथ है, हम अरब को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ईरान को भी देते हैं, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी ये है अपने पेट में छुरा ना मारे।
1: Alright.
0: और दूसरा पीटीआई की बात जो कर रहे थे आप
1: जी,
0: देखे ना जो वो होता है ना दोस्त, वो दाना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। पीटीआई के पास कोई लोग है ही नहीं जो मूवमेंट चलाए, कभी बहनों को ले आते हैं, कभी क्या है,
1: ठीक है।
0: और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, फौजी गवर्नमेंट को, क्योंकि सब कुछ फौज के हाथ में है, फौज जिम्मेदार है इसकी, अच्छा हो जाएगा तो बड़ी शाबाशी है फौज को, हम देंगे शाबाशी, सब देंगे पाकिस्तान, लेकिन बुरा होगा तो ये जिम्मेदारी इन पे है।
1: चलिए, और सर थैंक यू। 5415 सर, आप ऑन एयर। 5415 5415।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
1: जी वालेकुम अस्सलाम सर।
2: जनाब पट्टी साहब की आ
1: रही थी, जी जी बिल्कुल।
2: अच्छा पट्टी साहब गल ले वे के देखो, इस सो कॉल्ड जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान दी वजह तू, जिस दिन दी पाकिस्तान ने काम शुरू किया, शहबाज शरीफ का पहला ट्वीट आया थी, उस वे जंग दी की हालत थी, अज जंग दी की हालत है। इधर उधर दी गल्लां दा मैनू नहीं पता, अज दी दिन दी अज दी तारीख तक दोवे फरीक पाकिस्तान नू सारस मान रहे ने। होर लोगों का कोई ख्वाब हो सकता, ख्याल हो सकता कि पाकिस्तान की कोई गल को नहीं, पाकिस्तान को मानता नहीं, वो कौन करेगा, लेकिन आई की तारीख तिकर पट्टी साहब दुआ मुल्क के बयान ने कि अभी पाकिस्तान की सालसी ही मान लिया, होर अभी किसी की सालसी नहीं मानते,
1: ठीक
2: एक गल।
1: ठीक है जी।
2: दूसरी गल पट्टी साहब गल ए जिथों तिकर तुसां जिक्र किया इमरान खान साहब की कॉल का,
1: नहीं कॉल का तो खैर वैसे जिक्र होया सी, मतलब वो तो मैं जैसे पूछ रहा सी कि होया। जी जी
2: जी, ओ बलार भाई सानू दसणगे, ओरे विच लीमा बाजी ने आख्या सी कि सिर्फ मेंबरां ने पार्लीमेंट नू आख्या गया, वर्कर नू नहीं आख्या गया। एक काल कामयाब है कि नाकाम है?
1: नहीं, वो दस दिता उन्होंने कि लोग नहीं आए ज्यादा, वर्कर ज्यादा सी ओहदेदारां तों,
2: मतलब है कि ओहदेदारां ने इमरान खान नू
1: दूसरी
2: गल पट्टी साहब गल और छोटी जी गल करांगा।
1: जी जी।
2: पट्टी साहब, चाहे जमीन होवे या समान होवे या समुंदर दी तहवां आउण, तुसां वेख्या अगले दिन भी पाकिस्तान ने इंडिया दा जहाज नू रेस्क्यू कीता,
1: ठीक
2: ठीक है। पाकिस्तान उस खिते दा पट्टी साहब आज दी तारीख है सब तो बड़ा प्लेयर है, और जेड़ा संदूर शंदूर है ना वो पट्टी साहब किधर उड़ गया है, किधर कोई संदूर नजर नहीं आउंदा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दा परचम जेड़ा पट्टी साहब इंजे ही लहराएगा और इंजे ही पाकिस्तान अपनी शान और शौकत
1: दे पट्टी साहब दुनिया दे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 8156 सर आप ऑन है, 8156 सर आप ऑन एयर हैं। जी जी बात करें। जी जी
3: देखें जी, केपी के कोई 8000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है, पन बिजली
1: जी,
3: हुकूमत 2 रुपए पर यूनिट उनसे खरीदती है और उसी सूबे को वापस 50 रुपए पर यूनिट बेच देती है, और उनका रॉयल्टी का कुछ 3000 अरब रुपया एक जमाने से जमा है, एक पैसा भी नहीं दिया।
1: सही।
3: गैस भी वो 400 MMSCM प्रोड्यूस करता है, 200 उनकी जरूरत है, 200 नेशनल ग्रिड में डाल देता है, उसके भी पैसा नहीं प्रोड्यूस किया।
1: सही।
3: तीसरी चीज आ जाए क्रूड ऑयल, जितनी पाकिस्तान में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है 48% वो केपीके से प्रोड्यूस होता है, उनकी डिमांड है कि वहाँ एक रिफाइनरी लगा दें, लाखों में लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी जनाब ऐसा इकबाल कहते हैं कि हम पंजाब में रिफाइनरी लगाएंगे, वो ऑयल ट्रकों में भर भर के पंजाब लेके जाते हैं।
1: तो ये पंजाब सिंध और बलूचिस्तान वाले कुछ नहीं करते, उनके पास कुछ भी नहीं है,
3: क्या चीज़,
1: मतलब वो कोई चीज, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई गैस, कोई बिजली, कोई चीज, वो कुछ नहीं करते तीनों सूबे, सिर्फ केपी करता सूबा।
3: हाँ जी, ऑयल 48% क्या दिया ना मैंने, पंजाब में क्या पैदा होता है, ना गैस पैदा होती है, ना ऑयल पैदा, गेहूँ पैदा होता है, और हाँ सिंध सबसे ज्यादा आजकल गैस पैदा करता है, बलोचिस्तान में सोई फील्ड, मैंने भी 3 साल जो है ना सोई फील्ड में काम किया।
1: चलिए ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर जी। 5794 सर आप ऑन रहे हैं, 5794 5794।
4: अपना
1: एक हिस्सा सिंध में, बलूचिस्तान में गैस निकलती
4: है, तो इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। सब पाकिस्तान के साथ है, तो बात ये है कि अब ये बात तो तयशुदा है कि भाई मेंबर्स, भट्टी साहब पहले भी बताया था, एमएनए जो भी है वो हां साहब की या इनके चेयरमैन की या लीमा की कोई बात नहीं सुनते। वो कहते हैं भाई हम फौज के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, अब मार खा के या जो मर्जी कह ले, हम में वो दम हम नहीं रहा। भाई इस बात को छोड़ो, अपनी गलती तस्लीम कर लो और चल रहे हो आगे पीछे। कौन एम एन ए शिप भट्टी साहब छोड़ता है जो एम एन ए बना हुआ है? पता नहीं कल को दो दो करोड़ दे के फिर टिकट लेनी है, तो फिर बेहतर है भाई 5 साल तो पूरे करो ना अपने पैसे, देखी जाएगी बाद में
1: जी।
4: तो बाकी ये ईरान और अमेरिका, भट्टी साहब ये बढ़के तो बहुत ज्यादा मार रहे हैं, लेकिन अफेक्ट तो गैस पे ही पड़ रहा है ना। अब यहाँ कनाडा में भी आज 10 सेंट ऊपर चली जानी है, और इनकी जो प्रिडिक्शन थी कि $2 हो जाएगी, तो आज
1: हो गई,
4: $2 हो रही है जी। तो ये पाकिस्तानी 400 रुपए में बन जाती है, तो अब देखे 200-400 पूरा बन गया पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान में तो मैं फिर भी कहता हूँ यार, कोई आपको मेट्रो ऑरेंज ट्रेन या मकसद मोटरसाइकिल अलाउंस, चलो किसी को मिल रहा होगा किसी को नहीं मिल रहा होगा, मसला रजिस्ट्रेशन का है। भट्टी साहब बात यही है ना, वहां पे मोटरसाइकिल मैंने खरीदा हुआ है, बच्चे मेरे चला रहे हैं, तो भाई उनको कौन देगा? तो ये मामला है, तो इसलिए हमें ये कि देखे ये जो भी मकसद करारदाद भी पेश की है वो भी आप वाली बात है कि ये इस तरह नहीं होता कि इस तरह मुंह उठा के जिसके मर्जी। भाई पूरा मुल्क या तो वजीर आजम या कौमी असम्बली में आए करारदाद, तो फिर तो हम मान लेते हैं। लेकिन ये है कि चले अल्लाह ताला हदायत दे सबको, हमको सबको मुल्क के लिए एक ना हो जाए, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी फरमाए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। 6141 सर आप ऑन, 6141 लास्ट 4 digits 6141 सर आप ऑन एयर बात कीजिए।
5: अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब
1: जी। वालेकुम सलाम सर।
5: भट्टी साहब ऐसा है कि देखें, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही है कि सूबाइयत को छोड़ दें, और हम लोग तो कभी ऐसा नहीं कहते कि जितनी पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इतनी तो केपीके में चोरी हो जाती है। लेकिन हम इसलिए बात नहीं करते कि हम ये बात करना नहीं चाहते सूबाइयत की, हम पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं और मोहब्बत और दोस्ती की बात करना चाहते हैं। 9 मई और 10 मई में एक दिन का फर्क है भट्टी साहब, ये कहीं वो डेटे तो सेट नहीं कर रहे
1: नहीं,
5: थे।
1: लेकिन जहाँ पे वैसे जो जनरेट होती थोड़ा सा वहाँ तो हक ये है कि वहाँ ज्यादा देनी चाहिए, जहाँ से जनरेट हो रही इजी भी है शायद वहाँ देना चीजें। वहाँ
5: भट्टी साहब देखें, पाकिस्तान में हर जगह पे अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत जनरेट हो रही है सोलर से, और गवर्नमेंट को बेची जा रही है, और गवर्नमेंट वापसी महंगी बेचती है, लेकिन फिर वो चोरी उधर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की जो है तो नहीं ना आ सकती।
1: ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 6910 सर आप ऑन एयर, 6910 6910।
6: वालेकुम भट्टी साहब।
1: वालेकुम सलाम जी सर।
6: हाँ भट्टी साहब, पहले 3-4 बातें हैं। मेन चीज ये कि जंग बंद हुई, अगर नहीं हुई होती तो यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ये सब जितने परेशान हुए हैं पहली दफा, हालांकि जंग हो रही थी ईरान अमेरिका के, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो यूएई का हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो। और तो शुक्र है कि चले हज की वजह से शायद इन्होंने थोड़ा सा इस चीज का ख्याल किया और पाकिस्तान के एफर्ट्स की, वरना ये जंग जो है वो चाहे छोटी होती बड़ी होती वो नुकसान पूरे रीजन की थी बल्कि पूरी दुनिया की थी। अब आ जाइए इसी से रिलेटेड के एनकेएम ने जो है वो फील्ड मार्शल को नॉमिनेट करने की कोशिश की है, तो बेसिकली वो अपने गवर्नर लाना चाह रहे हैं क्योंकि गवर्नर हट गया, क्योंकि शर्तों के बाद तो बिल्कुल राइट हैंड थे एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बिठाया था। अब आ जाइए गूगल पर मैंने सर्च किया तो सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने केपीके में झूठ बोला है ना वो किसी सूबे ने नहीं बोला, ये सबसे बड़ा
1: टाइम बहुत कम है। 5722 खारिज साहब, 5722
7: ठीक है, थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। मैं बस मुख्तार बात करूंगा। बात हो रही है कि भी इमरान खान को लोग क्यों नहीं आते और रिहा क्यों नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो रियासत पाकिस्तान से ज्यादा یعنی کسی کے پرسن سے زیادہ اسرائیلی مفادات کی قید میں ہے.
1: اوکے جی.
7: کیونکہ جب اپنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اقتدار میں آئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں سے کال پنڈی ایک کال آئے گی اور یہ بندہ رہا ہو جائے گا, لیکن وہ کال نہیں آئی.
1: چلے اس لیے ہو گئے. چلے ٹھیک ہے صاحب, تھینک یو سر, وقت کم ہو گیا. میں معذرت کرتا ہوں, 0449-002-6-6492 آپ کی کال نہیں لے پاؤں گا کیونکہ ٹائم بالکل کم ہے. بلال صاحب تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, کل آپ سے بات کرتے ہیں سر. تھینک یو.
8: جی جی تھینک
1: یو. اور آپ کا بہت بہت شکریہ سامع کرام, آپ سے اجازت چاہیں گے, دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کھوڑنے کی, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ ہماری آپ ملاقات اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم, اور میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولانا.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
2: CMR FM 101.3 पर ये है लवी डवी शो। मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों की तरफ से आप सारे लिसनर्स को अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। CMR FM 101.3 पर शुरू हो चुका है लवी डवी शो, रहेगा हमारा आपके साथ 11 बजे तक। 9 से 11 हम रहेंगे आपके साथ साथ और हमारे और आपके साथ रहेंगे बहुत सारे मौजू जिस पर हम बातचीत करेंगे, बहुत सारी गपशप, हल्की फुल्की बातचीत और आपकी ड्राइव को और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन गानों का सिलेक्शन। गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s और ट्रेंडिंग मेलोडीज के साथ चलेगा ये सफर। किसी भी जानकारी के लिए हमसे रابطे का नंबर है जिसको आपको मैं बता दूं, 416-303-3639। गुड मॉर्निंग, दिस इज लवी डवी शो।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
4: It's 7 degrees Celsius. This is Lovey Dovey Show. मैं हूँ शिवानी और आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। 7 degrees Celsius is the temperature right now. +7 degrees बारिशें ड्रिजल आपको महसूस हो रही हैं और दिखाई भी दे रही हैं। और ये जो सिलसिला है वो आज चलने की पूरी पॉसिबिलिटी है थ्रू आउट द डे। और दोपहर का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली आपको 12 degrees Celsius मिलेगा विथ 40% चांसेस ऑफ शावर। और कल थर्सडे को सरप्राइजिंगली देर इज नो रेन, अभी तक तो यही दिखा रहा है। सरप्राइजिंगली मैंने इसीलिए बोला क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बारिशें दिखा रहा है मौसम इस वक्त का, और आज भी है, लेकिन कल का दिन जो है वो हमें बारिशों से राहत देने वाला है। लेकिन बारिशों की अलग ही खूबसूरती होती है, अलग ही एक सुंदरता होती है। बहुत ही सारी लोगों की दास्तानें कहीं अनकहीं कहानियाँ जुड़ी हुई हैं बारिशों के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को जो बारिशें हैं वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती हैं ड्राइविंग के लिहाज से और डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिहाज से, तो उनके लिए कल का दिन थोड़ा सा राहत ला सकता है। लेकिन यू नेवर नो, वेदर कुछ भी करवट ले सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वक्त 7 degrees Celsius इज़ द टेम्परेचर राइट नाउ। और कहते हैं आज का दिन जो है वो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, यानी कोई भी दिन जब होता है वो अपने आप में एक नायाब होता है, बेशकीमती होता है, प्रेशियस होता है, उसका मोल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है, दोबारा हम उसको महसूस ही नहीं कर सकते। अच्छा गुजरा, नहीं अच्छा गुजरा, थोड़ा अच्छा गुजरा और अच्छा गुजर सकता था, ये सारी बातें, ये सारी कहानियाँ अपनी जगह ठीक हैं, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स भी अपनी जगह ठीक हैं, दलीलें भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह ठीक है। फैक्ट है कि टुडे विल नेवर कम अगेन, सो बी अ ब्लेसिंग, बी अ फ्रेंड, एनकरेज समवन, टेक टाइम टू केयर, लेट योर वर्ड्स हील नॉट वूंड, है ना। और वैसे भी कहते हैं ना कि ऑन दिस रोड कॉल्ड लाइफ यू हैव टू टेक गुड विद द बैड, यू हैव टू टेक गुड विद द बैड, स्माइल थ्रू द सैड, लव वॉट यू हैव एंड चेरिश वॉट यू हैड, always forgive but never forget, learn from your mistakes but never regret, people change, things go wrong but always remember life goes on, isn't it? Khoobsurat sa gana aapke liye, only on Lovey Dovey Show.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
3: Team Sapphire.
4: Mahesh and Rocky Khatri, your friends in real estate.
5: Are you ready to turn your real estate dreams into reality? Whether you are a first-time buyer, looking to upsize, downsize, or invest.
4: Team Sapphire. Mahesh and Rocky Khatri, your friends in real estate.
6: सोचिए अपने पहले घर की खुशी, एक ऐसी जगह जहां यादें बनती है और आपका भविष्य शुरू होता है।
5: कॉल अस एट 416-464-6568 और विजिट teamsapphire.ca।
7: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584।
8: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
7: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। वक्त हो चला है 9:21 और आमिर कहते हैं लाइफ डजंट मूव एट द सेम पेस फॉर एवरीवन। हर एक की जिंदगी अलग अलग होती है। व्हाट फील्स इजी टू वन पर्सन माइट टेक एवरीथिंग फॉर समवन एल्स, राइट? So we all have different strength, we all have different battles, we all have different circumstances shaping our path. So instead of comparing, try understanding and appreciate how uniquely everyone is doing their best.
9: Wow, wow, बहुत अच्छा। शिवानी, आप इतनी सियानी सियानी बातें कहाँ से ढूंढ के लाती हैं? मतलब इतनी सियानी, मुझे लगता है कि कोई एक बहुत समझदार, बड़ी मैच्योर, बड़ी पढ़ी लिखी रूह आपके अंदर रहती है
7: जी।
9: Is that right?
7: सही,
9: उसकी ड्यूटी लगी हुई आपके साथ।
7: आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे सी पहचान कैसे रखते हैं? ये ऐसे ये जो लफ्ज बोलते हैं आप किसी के तारीफ में, मतलब मेरी तारीफ में, वो उन 9:20 से 30 के बीच में बोलते हैं आई विल रिमेम्बर दैट टाइम, या बोलते रहेंगे।
9: आपकी बातें सुन के बंदे को लगता है कि अब मुझे बदल जाना चाहिए, अब मुझे समझदार हो जाना चाहिए। एवरी सिंगल डे मैं आपकी बातें सुन के इरादा करता हूँ कि आई शुड यू नो रीफॉर्म माई सेल्फ, आई शुड ब्रिंग मैनी चेंजेस इन माई लाइफ। अच्छी अच्छी खूबसूरत सी फिलोसॉफिकल बातें, लेकिन जो ही आपका प्रोग्राम ऑफेयर होता है दोबारा उसी पटरी पर।
7: कोशिश से इंसान क्या नहीं कर सकता।
9: मैंने बहुत कोशिश की है। देखिए शिवानी, मैंने बहुत कोशिश की है कि अपनी जिंदगी के जितने भी मनफी पहलू हैं उनको जिंदगी में से खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका
7: तो कहा था कि हर किसी की लाइफ अलग होती है, आपके केस में ये मुमकिन नहीं है।
9: हमारे यहाँ स्टूडियो में स्विचिंग का एक तरीका होता है। स्विचिंग का मतलब ये होता है कि वो लोग जो ऑडियो कंसोल ऑपरेट कर रहे होते हैं उसे हम स्विचर कहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है कार्तिक
7: जी।
9: तो मैं कार्तिक से कहूँगा कि आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दें।
7: अच्छा,
9: मैं ये बार बार सुनना चाहता हूँ। हो सकता है मैं 10 बार सुनूं तो एक खराब आदत मेरी जाती रहे।
7: अफर्मेशन के तौर पे,
9: अफर्मेशन के कहते हैं कि अगर कोई काम आप करवाना चाहते हैं तो बार बार आप उसको रिपीट कराएं। रेपिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बचती रहे वो बात, रजिस्टर होती रहे। जैसे शरारती बच्चा होता है ना, तो आप एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार टोकेंगे तो फिर उसको समझ आनी शुरू होगी।
7: जीटीए के गलियारों में तो आपके लिए बात फेमस है कि आप जो करना चाहते हैं रिपीटेडली करते हैं और उस पे काफी सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में।
9: बिल्कुल, मैं आगे बढ़ रहा था पूरी रफ्तार से, पूरी स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन फिर अचानक कभी ऐसा होता है ना कि जो लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं, कोई ना कोई तुंदो तेज हवा का झोंका उन्हें आ लेता है। तो ऐसा अक्सर होता है, वो सुबह सुबह जागने की सूरत में भी हो सकता है। जो सबसे मुश्किल काम है, अदब से वाबस्ता, लिटरेचर से वाबस्ता, ज़ौक से वाबस्ता लोगों के लिए, वो सुबह जल्दी जागना है। दिस इज़ द हार्डेस्ट थिंग फॉर लिटरेरी पीपल, दे लाइक स्टेइंग अवेक ऑल नाइट।
7: ये आमिर की बात थी, लेकिन मैं एक सीरियस नोट पर आमिर के बारे में बताऊं कि जितना भी वो कह ले मजाक के तौर पर, लेकिन उनको, उनके लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है, चाहे वो सुबह उठना हो, चाहे वो कुछ आदतें बदलना हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो उन आदतों को बदलते भी हैं और ये दिखा देते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। आमिर,
9: शुक्रिया, बहुत बहुत बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा।
7: होना ये जरूर होना चाहिए।
9: ये ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, पूरी दुनिया में अगर आपको कोई चीज शिकस्त दे सकती है तो वो आप खुद हैं।
7: क्या बात है, अमेजिंग।
9: दुनिया में आपके इरादे को कोई नहीं तोड़ सकता
7: जी।
9: आपने देखा होगा जो बड़े मजबूत आसाब के मालिक लोग होते हैं, वो दुनिया से चले जाएंगे लेकिन अपना इरादा नहीं बदलेंगे। सो पूरी दुनिया में इरादे को कभी कोई शिकस्त नहीं मिल सकती। जिंदगी को शिकस्त हो सकती है, इरादे को नहीं हो सकती। तो इसलिए आज के दिन का पैगाम यह है, बुध है आज, तो बुध का पैगाम यह है कि इरादे को मुसम्मम रखिए। मुसम्मम एक लफ्ज है उर्दू का, यानी मजबूत, मरबूत, पक्का, पुख्ता, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट इरादा होना चाहिए आपका, जो अनशेकन हो।
7: बिल्कुल।
9: तो लेकिन इरादा अच्छा होना चाहिए
7: अनशेकन होने के लिए भी अच्छा होना चाहिए
9: खराब इरादा कर बैठे और वो अनशेकन कर बैठे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मतलब जैसे आपके सामने चाय का कप पड़ा हुआ है तो जरा नजर इधर उधर हुई, साथ ही मैंने चाय का कप पकड़ा और कहानी
7: खत्म में रखा है कि अभी थोड़ी देर में मैं इसको पीऊंगी, ये इरादा था मेरा आपके साथ रह के मैंने विल पावर सीखी। और प्यारा सा नंबर, एक अच्छा सा नंबर आपको बता दूं जिस पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, 416-303-3639।
9: Stay tuned. This is Lovey Dovey Show.

0: This is Lovey Dovey Show. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिस्टनर्स. और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स. जाना पहचाना ये कोर्स है. अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है. कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं. हायरिंग के लिए किसी को हायर करके जिंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट देके आप जिंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं ए टू जी. और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली. आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: Good morning. I'm well. How are you?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, all good. Thank you so much for asking. और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है.
1: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्बिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड ऑफ मीडिया. इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है. राइट, तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें.
0: अच्छा.
1: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, आईएसओ वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है. राइट, उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं. बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं. उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें. और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है. राइट, और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो वो सिखाते हैं.
0: एंड
1: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में. एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का कोर्स है,
0: ठीक है,
1: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM.
0: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे. जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं. कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग.
1: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना उसमें आ जाता है.
0: अच्छा, ठीक है.
1: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है. एंड फंडिंग जहाँ तक आ जाते हैं तो फंडिंग भी सिखाते हैं क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है.
0: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स. बहुत रीजनेबल अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, सिर्फ वन टाइम फी है ये. 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639. हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
1: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज, ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो خود اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہے یا پھر وہ خود اگر فار ایگزامپل اگر ان کو شوق ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک انفلوئنسر بننا ہے یا پھر ان کو ویڈیوز بنانے کا شوق ہے تو یہ اسپیشلی ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے. تو میک شیور یو کم ٹو دس کورس اینڈ جب آپ آئیں گے آپ کو خود سیکھیں گے, آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کورس لینے میں.
0: کیا بات ہے, تو بس مزے مزے میں پروفیشنل بنیے اور بہت جلدی سے چار ہفتوں میں پروفیشنل بن جائیے اس کورس کو کر کے. 416-303-3639. حفیظ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, پلیجر ہیونگ یو ود اس. تھینک یو
1: سو مچ.

0: साहब, एक तो इंसान का चैन और करार मोहब्बत ले लेती है, मोहब्बत छीन लेती है, और दूसरा ये चैन और करार इंसान की सेहत भी छीन लेती है। ख़ास तौर पर इन मुल्कों में आप एक दिन घर में बैठ जाएं, दो दिन बैठ जाएं, शायद आप अफोर्ड कर लें घर बैठना, लेकिन अगर आपको बदकिस्मती से एक दो दिन से ज़्यादा घर में बैठना पड़ जाए तो लाले पड़ जाते हैं जान के, क्योंकि बच्चों की तालीम है, बच्चों का आना जाना है, खाना पीना है, घर का किचन है, बीवी की ज़रूरियात है, घर के 1000 मसाइल का अंबार लगा हुआ होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई इंतज़ाम परमानेंट किया जाए। खुदा न खास्ता अगर आप बीमार पड़ जाएँ, हालात ख़राब हो जाएँ, फाइनेंशियली आप सफ़र ना करें, बल्कि आपने कोई ऐसा इंतज़ाम करवाया हुआ हो कि आपके बच्चे, बीवी, भाई, बहन, पेरेंट्स, कोई भी जो आपके साथ रहता है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो सेफ रहे, वो सिक्योर रहे। और उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा बड़ा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा अरेंजमेंट होगा, आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी। और ख़ास तौर पर खुदा न खास्ता अगर आप कहीं बीमार पड़ जाए, मसला, परेशानी, अजियत आपको हो जाए कोई, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होंगे। इसके लिए बहुत ही एक शानदार नाम है, जाना हुआ, आजमाया हुआ, परखा हुआ, और बहुत सों की मदद ये कर चुकी हैं, बहुत कमाल की एडवाइज़र हैं टॉप फाइनेंशियल ग्रुप से, हरप्रीत कौर जी। वेलकम करते हैं मैडम आपको।
1: Thank you so much, Amir ji, for the warm welcome. Good morning to you and all my listeners.
0: Very good morning. Thank you very much for joining us this morning. First of all, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हरप्रीत, कि कोई ऐसा अरेंजमेंट है, कोई ऐसा तरीका है कि तीन चार तरह का अरेंजमेंट एक ही बैनर तले हो जाए, एक ही अम्ब्रेला तले हो जाए, कि हमें क्रिटिकल इलनेस के हवाले से या लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से या इसी तरह की इसी नौयत की कोई और भी पॉलिसी हो तो हम ले सकें?
1: जी बिल्कुल, इसका शॉर्टकट एक ही नाम मैं बताना चाहूंगी सब लिसनर्स को, 3-in-1 पॉलिसी, जिसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज़ों की कवरेज एक साथ आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज, अगर आपको खुदा नखास्ता कुछ हो जाए तो फैमिली कवर होगी, पीछे से प्रोटेक्टेड होगी पूरी, जिसमें बच्चों का खर्चा, आपकी घर की मॉर्गेज, रेंट, सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें ओवरऑल। सेकेंड चीज़ जो इसमें है वो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, जैसे आपने कहा कि खुदा नखास्ता काम चला जाता है, काम छूट जाता है, चोट लग जाती है आपकी, राइट, तो आपकी इंजरी हो जाती है, स्पेशली इंजरी के लिए जो है डिसेबिलिटी होती है, काम पे नहीं जा सकते तो आपके किचन का खर्चा नहीं रुकेगा, बच्चों की जो एजुकेशन है वो चलती रहेगी, और आपकी जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनकी कवरेज के लिए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होती है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वी कैन से कि हमें अनवांटेड कोई बीमारी एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आ जाती है जो हमारा हेल्थ कार्ड भी कवर नहीं करता है, तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी क्रिटिकल इलनेस शुरू जो है वो कवर करती है, तो उसको लेके आप इन चीज़ों की कवरेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक जो है 3-in-1 पॉलिसी का हम उसमें नाम लेते हैं, जिसमें एक लाइफ इंश्योरेंस भी कवर होती है आपकी, डिसेबिलिटी भी कवर होती है आपकी, और आपकी क्रिटिकल इलनेस भी कवर होती है। क्रिटिकल इलनेस में आपकी 25 जो मेजर इलनेस हैं वो आ जाती हैं तो उसकी कवरेज होती हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि यंग एज में ही, अभी 18 साल से लेके अगर 65 से नीचे उम्र है आपकी, अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम, कुछ कैंसर डायग्नोज हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम किसी तरह की आ जाती है, कुछ भी हैपनिंग हो जाती है, तो ये सब चीजें हमारा हेल्थ कार्ड दवाइयां कवर नहीं करता। तो ये चीजों की कवरेज जो है, ये सब अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस है तो वो उसके अंदर जो है वो आप मेजर चीजें कवर कर सकते हैं। एक लंप सम अमाउंट जो होता है क्रिटिकल इलनेस का, वो आप इंश्योर करा सकते हैं अपने आप को, 25,000 का, 30,000 का, और 1,25,000 तक जाता है मिनिमम, 25,000। तो इसमें आमिर जी क्रिटिकल इलनेस में आपको लमसम अमाउंट ही मिल जाता है, इसमें कुछ जो है, जब भी डायग्नोज होती है, डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि यू आर डायग्नोज विद दिस डिजीज, तो आप अपने क्रिटिकल इलनेस अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको लंपसम अमाउंट, टोटल अमाउंट जितना भी इंश्योर कराया है सारा इकट्ठा मिल जाएगा, और आप उससे अपने घर का खर्चा, अपनी दवाइयों का ट्रीटमेंट, अपनी जो है बीमारी का ट्रीटमेंट, अपनी दवाइयाँ, अपना घर का खर्चा कहीं पे भी स्पेंड करना चाहे एज यू वॉन्ट इट। अगर उसी पैसे से कहीं बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं किसी और कंट्री में, दैट इज योर मनी, तो आपको वो पैसा इकट्ठा मिल जाता है।
0: मिल जाता
1: तो फ्यूचर के लिए इसको, ये एक बहुत ही सेफ साइड है, हम इसको लेके रख सकते हैं।
0: जी
1: 80 ईयर्स तक हमें कवर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट जो इसका है आमिर जी, क्रिटिकल इलनेस का, एट द एज ऑफ 80 हम बिल्कुल तंदुरुस्त है, कुछ डायग्नोज नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, तो जितना पैसा हमने उसके लिए प्रीमियम दिया है ना, वो पूरा का पूरा पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है। और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हम हर कोई लेके रखता है, बट आजकल क्या हो रहा है कि अभी हमारा जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इकोनॉमी में, और उसकी वजह से तो कुछ कहते हैं नहीं अभी नहीं लेना है, लेटर ऑन वी विल थिंक अबाउट दैट। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप $20-30 अगर अफोर्ड कर सकते हैं, $1 a day, $2 a day, राइट, दैट इज, दिस इज अ मिनिमम अमाउंट जो है, तो एक आप छोटा अमाउंट ही लेके रखिए चाहे, बट अपने आप को जो है कवर करके जरूर रखिए एक सर्टन अमाउंट के लिए, ताकि फैमिली पीछे से प्रॉब्लम में ना आए।
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है हरप्रीत कौर जी का, इनसे और भी बात होगी, यहाँ हम आपको इनका नंबर देंगे, ये नंबर मिलाइए, बात जरूर कीजिए। देखिए हम हेजिटेट करते हैं, हम हिचकिचाते हैं, हम शाइनेस दिखाते हैं बात करने में। डू नॉट हेजिटेट टू टॉक टू प्रोफेशनल्स, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता, कोई तरीका जरूर निकलता है बात करने के बाद। लेकिन अगर हम बात ही नहीं करते तो जाहिर है सारे दरवाजे हमें मोर और लेस बंद ही मिलते हैं। ये रहा नंबर 6437 3 6611। नंबर दोबारा दे रहे हैं आपको 6437 3 6611। आपसे और भी बात होगी दूसरे घंटे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के।
1: थैंक यू आमिर जी, थैंक यू।
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: कुछ दिल की लगी तुम छेड़ो, कुछ दिल की लगी तुम छेड़ो, कुछ दिल लगाना हम सिखाएं, कुछ प्यार की बातें तुम करो, कुछ प्यार निभाना हम सिखाएं,
0: हम सिखाएं,
5: कुछ नजर का इशारा तुम करो, कुछ आंख मिलाना हम सिखाएं, कुछ जान की बाजी तुम लगाओ, कुछ जान से जाना हम सिखाएं,
0: वाह वाह वाह,
5: कुछ थोड़ा सा हंस के तुम देखो, कुछ मुस्कुराना हम सिखाएं,
0: हम सिखाएं,
5: कुछ मिलने की आस तुम दो, कुछ वक्त पे आना हम सिखाएं, कुछ प्यार से पास तुम आओ, कुछ गले लगाना हम सिखाएं।
0: और इतनी खूबसूरत लाइनों के बाद लफ्जों का चुनाव खासा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक कता मेरे जहन में आ रहा है, वो आपके नाम करते हैं आज सुबह। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, पर मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा। ये जो धड़का है ये बहुत जरूरी है मोहब्बत में। मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा कि कौन कहां रास्ता बदल जाए।
5: क्या
0: अजीज है?

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
5: Team Sapphire.
6: Mahesh and Rocky Khatri, your friends in real estate.
7: Are you ready to turn your real estate dreams into reality? Whether you are a first-time buyer, looking to upsize, downsize or invest.
6: Team Sapphire. महेश और रॉकी खत्री, योर फ्रेंड्स इन रियल एस्टेट।
8: सोचिए अपने पहले घर की खुशी, एक ऐसी जगह जहां यादें बनती है और आपका भविष्य शुरू होता है।
7: कॉल अस एट 416-464-6568 और विजिट teamsapphire.ca।

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
3: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
4: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
3: क्या वो मदद करेंगे?
4: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
5: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
4: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
5: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।

0: CMR FM 101.3, very good morning once again. मैं हुशवानी आपके साथ, मेरे साथ हैं आमिर, और बहुत इम्पोर्टेंट से आज टॉपिक पर हम बातचीत आपसे करने वाले हैं. आमिर, अगर हम बात करें आज के जमाने की, तो किसी भी चीज में अगर हम देखते हैं कि लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, किसी भी फील्ड में किसी एक चीज से काम नहीं चलता
1: जी.
0: हमें अपना जो होराइजन है वो एक्सपेंड करना पड़ता है, चीजें और देखनी पड़ती हैं. ऐसे ही हम अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या अपने आप को किसी भी हवाले से प्रमोट करना चाहते हैं, ब्रांडिंग के लिहाज से प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो जिनकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे.
1: बिल्कुल.
0: और इसमें मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए हम प्रमोट कर सकते हैं. अगर हम डिजिटल मीडिया, एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चलन में है, बहुत पॉपुलर है, और हर कोई चाहता है कि इससे फायदा उठाया जाए. ये जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेजेस हैं, वीडियोज हैं, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. और इसमें अगर हमें महारत हासिल हो जाए और बहुत आसानी से हो जाए, और किसी ऐसे जीनियस और एक्सपर्ट से हो जाए जिसने साल दर साल इसी पे काम किया है, तो बस ये सोच लीजिए कि आप जो सोच रहे थे वो आपके लिए पूरा होने जा रहा है. अगले महीने कोर्स शुरू होने वाला है. आमिर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं. आमिर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन.
1: जी शुक्रिया बहुत बहुत. आपको भी सुबह बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू वेरी मच.
0: प्लेजर. आमिर, जो आपके जो कोर्स चलते हैं डिजिटल मीडिया के, और ये जो प्रोग्राम चलते हैं, जो कोर्सेज चलते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से ये सिक्स्थ या सेवन्थ सेशन है,
1: जो सातवां
0: जो अगले महीने से शुरू होगा, तो क्या है ये कोर्सेज, कैसे हमारे लिसनर्स इसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल्स आते हैं और उन्होंने एक ह्यूज डिमांड पे हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं.
1: जी बिल्कुल. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 23 मई, यानी अगले महीने की 23 तारीख को ये कोर्स शुरू हो रहा है. ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन कोर्स है. दोनों चीजें कवर करेंगे, मार्केटिंग भी और प्रोडक्शन भी.
0: राइट.
1: इसके जरिए, इसके माध्यम से, इसके सोर्स से ये कंप्लीट करने के बाद लोग अपना कारोबार खुद प्रमोट कर सकेंगे. अब मार्केटिंग पे महीने बाद हजारों डॉलर्स लगाने की जरूरत नहीं है. After the completion of this course, you will be in a position to promote your products or services to local, regional or international audience.
0: That's so amazing.
1: जहां तक ले जाना चाहे अपने ब्रांड को ले जा सकते हैं. ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है, सारी जिंदगी काम आने वाला हुनर. और उसके लिए नंबर ये रहेगा 416-303-3639.
0: जी आमिर, को यहाँ सवाल आता है कि अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें, एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं बात करूं, मुझे भी इतना ज्यादा इसमें फ्लेयर नहीं है, तो अगर मैं खोलने बैठती हूं तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं जो जिसमें से कभी कभी ऐसा लगता है जिसने नहीं पढ़ा है कि ये सब चीजें हम कैसे कर पाएंगे. किसी को दे दिया जाए वो हमारे लिए कर दे, लेकिन बात यही है कि आजकल के टाइम में इतना बजट हर महीने लगाना, और तो क्या जब हम आपका ये कोर्स सीख लेंगे तो क्या हर एक जो छोटे छोटे सी चीजें हैं वो सब को सब आप पढ़ाते हैं उसमें?
1: बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस सवाल को दो हिस्सों में तकसीम करूंगा. पहला हिस्सा तो ये है कि लोग करें काम, हम क्यों करें, ये इतना छोटा सा काम है, या कैंपेन लॉन्च करनी है, या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे वीडियो बना के डालनी है, तो मैं किसी भी अपने सब ऑर्डिनेट से, किसी जूनियर से कह दूं वो बना के डाल देगा, काम हो जाएगा. एक बात याद रखिए, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे भी काम कर रहे हैं तो काम करवाने के लिए भी आपको काम आना जरूरी है.
0: राइट.
1: आप करवाएंगे कैसे जब आपको खुद ही नहीं आता, तो आप उसकी निटी ग्रिटी, उसकी टेक्निकल डायमेंशंस या टेक्निकल मामला तो उसके आप जानते ही नहीं. एक तो अगर आपने काम किसी से करवाना है तब भी ये कोर्स आपके लिए है, और दूसरी बहुत अहम बात कि ये हम बहुत बुनियादी सतह से शुरू करते हैं. आपने कहा कि कहां से शुरू किया जाता है, ये समझ लीजिए कि डिजिटल मीडिया की एबीसी से शुरू करते हैं,
0: कंप्यूटर ऑन करने से शुरू किया जाता है.
1: अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना आता है तो ये कोर्स आपके लिए है. कोई उम्र की हद नहीं है कि किस उम्र से ताल्लुक हो आपका. मेरे पिछले बैच में 72 साल की एक शख्सियत थी, उन्होंने भी ये कोर्स किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया एज कंपेयर टू अदर्स. ये नंबर मिलाइए. अगले महीने की 23 तारीख को ये कोर्स शुरू हो रहा है. वीकेंड ओनली, सैटरडे 1 till 6, संडे 1 till 6. यह रहा नंबर 416 303-3639 आप कोर्स में इनरोल कराइए, उम्र भर का स्किल सीखिए, सिर्फ एक महीना, और उस एक महीने में भी 8 दिन आपको आना है, सैटरडे 1 till 6, संडे 1 till 6, 416-303-3639।
0: क्या बात है आमिर, कुछ चलते चलते कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि आप क्या क्या इसमें पढ़ाते हैं और हर हफ्ते में आपने कोर्सेज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है और साथ में जो कंटेंट लिखते हैं, टैग लाइन्स लिखते हैं और जो पंच लाइन लिखते हैं, बड़ा आजकल बड़ा जरूरी होता है कि लोग कहते हैं वन लाइनर में हम अपनी चीज बता सकें, सोचते हैं लेकिन वो बात वही होती है कि लोग एक बस शुरुआत करने की देर होती है, तो वो भी शामिल करते हैं आप अपने कोर्स में?
1: बहुत अच्छा सवाल है। हम बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से शुरू करते हैं। पोस्टर कैसे बनाना है, फेसबुक पे डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, उसका आर्टवर्क कैसे करना है, उसके बाद बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसके बाद वीडियो कैसे बनानी है, आप आउटडोर वीडियो की बात करें, इनडोर वीडियो की बात करें, आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे लगा सकते हैं, बना सकते हैं और उस पर कंटेंट डाल के पैसा बना सकते हैं, वो भी सिखाते हैं। एडिटिंग सबसे बड़ा हिस्सा है इसका, जो भी दुनिया की कोई भी रील बनती है उसको एडिटिंग की जरूरत बहरहाल रहती है, तो हम एडिटिंग भी सिखाते हैं। फिर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिखाते हैं कि आपने उस वीडियो को वायरल कैसे करना है, फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है, सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होते हैं, विदाउट स्पॉन्सरशिप कैसे आप एड्स डाल सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट फंडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट फंडिंग देती है आपको, आइडिया जनरेशन क्या होती है, आप ट्रीटमेंट कैसे लिखते हैं, पेपर वर्क कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, कैनेडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सा पेपर वर्क और कौन कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, इस सब के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 416-303-3639। नंबर दोबारा बता देते हैं 416-303-3639।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आमिर,
1: थैंक यू।
2: Driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
0: This is Lovey Dovey Show और आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। हमसे राब्ते का नंबर है, किसी भी तरीके की हमसे बातचीत करना चाहें, किसी स्पॉन्सर किसी हमारे स्पॉन्सर के नंबर आप पर लिख नहीं पाए, ड्राइव कर रहे थे वो लेना चाहें, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहें, डिजिटल मीडिया की कैंपेन करना चाहें, तो नंबर एक ही है हर तरीके की राब्ते के लिए 416-303-3639। आमिर कहते हैं कि खूबसूरती किसको पसंद नहीं होती। कोई इंसान खूबसूरत होता है तो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, हम उसको देखना चाहते हैं, और एक और चीज़ है कि लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि खूबसूरती क्रिएट की जा सकती है कॉस्मेटिक्स से या ऊपरी बनावट से, लेकिन अगर हम अंदर से हेल्दी हैं तभी हम खूबसूरत नजर आएंगे।
1: बिल्कुल ठीक है,
0: अंदर से हम खूबसूरत हैं तभी खूबसूरत नजर आएंगे। क्या कहते हैं आप?
1: देखिए, बात यह है कि खूबसूरत होना इतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छा होना खूबसूरत है।
0: क्या बात है,
1: मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश और बिल्कुल दिल रुबा टाइप खातून हो और आप उस खातून के साथ शादी कर लें, वह इंतहा खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन वो बदजुबान हो, बद कलाम हो, बदतमीज हो, बद लिहाज हो, उजड हो और बात करने का ढंग उसलूब तरीका ना हो उसको, तो शायद आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लें, इससे ज्यादा आप अपनी इज्जत नफ्स की तजहीक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लहू लुहान हो जाएंगे आप, फिजिकली नहीं, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर आपकी जो इज्जत नफ्स है वो इतनी मजरूह होगी कि आप अपने आप को कोसने लगेंगे, ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी औसत दर्जे की खातून के साथ शादी करें जो इतनी खूबसूरत ना हो
0: जी,
1: लेकिन उसकी बातों में मिठास हो, उसकी बात में लिहाज हो, उसमें तमीज हो, उसमें अखलाक हो, उसमें मुरव्वत हो, बात करने का ढब उसलूब और तरीका हो, कहते हैं कि बात करने का जो ढब हो तो हजारों बातें एक ही बात में कह जाते हैं कहने वाले,
0: क्या बात है।
1: तो ऐसे लोग जो मीठे लोग हैं उनकी बातें असर कर जाती हैं, रूह में उतर जाती हैं, याद रह जाती हैं, वो बड़े नायाब होते हैं। सूरतें तो आरजी हैं, आज होती हैं कल नहीं होती।
0: क्या बात है। अमृता प्रीतम लिखती हैं कि हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, और हम प्यार करते हैं कि हमें जीना
1: आ जाए। वाह क्या बात है, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा।
0: इतनी मोहब्बत की बात चली है तो आमिर आपकी पसंद का एक बहुत खूबसूरत सा गाना
1: जी जरूर।
0: एंजॉय।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
5: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
6: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
5: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਹੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
7: CMR FM 101.3 पर यह है लवी डवी शो। 416-303-3639। दोस्तों, क्लीन और इवन टोन स्किन हर किसी को पसंद होती है। कौन नहीं चाहता कि स्किन क्लीन रहे और यू नो इवनली टोन रहे, रिंकल्स ना हो, डार्क स्पॉट्स ना हो, पिगमेंटेशंस ना हो। और ये जो एक मिरेकल वाली सूरत हाल है, जो स्थिति है, वो ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है बिना कॉस्मेटिक्स के और बिना किसी और। कभी कभी तो कॉस्मेटिक सर्जरी भी लोग कराते हैं इन ऑर्डर टू लुक ब्यूटिफुल। लेकिन हम क्या जानते हैं कि हमारे जो घर की फार्मेसी है, जो हमारे घर का किचन है जिसको हम फार्मेसी कहते हैं, वो इसीलिए मैं कहती हूँ क्योंकि उसमें हर एलिमेंट का ट्रीटमेंट होता है। हमारे जो स्पाइसेस होते हैं, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको हम चेहरे पर लगाते हैं तो वंडर करते हैं हमारे चेहरे के ऊपर। और ऐसे भी आज हम जिस इंग्रेडिएंट की बात मैं कर रही हूँ वो है नटमेग, जिसको हम जायफल कहते हैं। वो उसका पाउडर और मिल्क, ये दोनों चीज़ें जो है, कितना आसान सा ट्रीटमेंट है, कितना आसान सा टिप है। मिल्क में थोड़ा सा जायफल पाउडर मिलाइए, नटमेग पाउडर मिलाइए, रिंकल्स को कम कीजिए और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। हाफ अ स्पून आप नटमेग पाउडर लीजिए, उसमें मिल्क मिला दीजिए और उसमें थोड़ा सा आप रोज़ वाटर मिला सकते हैं और इसका स्मूथ पेस्ट बनाइए। ऐसा पेस्ट हो कि हमारे चेहरे पर वो स्प्रेडेबल हो और इसके बाद अपने चेहरे पर इस पेस्ट को लगाइए। 20-25 मिनट तक लगा रहने दीजिए। रोज़ वाटर, मिल्क, नटमेग पाउडर, ये तीनों चीज़ें देखिए बिल्कुल एक तरीके से केमिकल फ्री हैं, आपके को फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। आप उससे भी ज़्यादा देर तक लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाए रखिए, कोई टेंशन नहीं। और इससे आपके बहुत विजिबल डिफरेंस आपको पता चलेगा। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप रिंकल्स कम करना चाहते हैं और अपने चेहरे को क्लीन और बहुत खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं आप, तो पोटैटो जूस भी आपके काम आ सकता है। और बिना किसी केमिकल के जो पोटैटो है वो ब्लीच का काम करता है। नेचुरल उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेहरे के स्पॉट्स को कम करने में मदद करती हैं। पोटैटो का जूस लगाने से धीरे धीरे हमारे चेहरे की रंगत साफ होती है, चेहरे के जो स्पॉट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। और आपको बस पोटैटो जूस अपने चेहरे पर लगाना है 15-20 मिनट्स के लिए, उसके बाद आप उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, हनी और बेजल लीव, जिसको हम तुलसी कहते हैं। सिंस ओल्डन डेज हम सभी जानते थे कि तुलसी और हनी का इस्तेमाल किया जाता था और हमारे चेहरे पर इससे ग्लो आता है। और इसमें आप योगर्ट थोड़ा सा मिला लीजिए तो और फर्दर आप की जो खूबसूरती है वो इन्हांस होगी। और आराम से इसको बहुत थोड़ी सी देर के लिए घंटे दो घंटे तक लगाइए और इसका आप रोज़ाना इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ाना आप हमें सुनते हैं 9 बजे से 11 बजे तक आमिर और शिवानी के साथ। दिस इज़ लवी डवी शो 416-303-3639।

0: साहब, बात तो दिल की हो रही है कि दिल क्या कह रहा है, तो आपको हम बता दें कि जरा दिल से पूछ के देखिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के सुबह 9 बजे क्लॉक इन करना कैसा लगता है? मुलाजमत करते हुए दूसरों की बात सुनना कैसा लगता है? हुक्म लेते हुए आप क्या महसूस करते हैं? और ये नपी तुली हुई जिंदगी, पाबंदियों से लबरेज ये जिंदगी, इसे आप कैसे देखते हैं? इसका जायजा कैसे लेते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, दिल की आवाज तो यही कहती है कि चाहे 24 घंटे काम करें, चाहे 18 घंटे का काम हो या फिर 10 ही घंटे काम करने का मौका मिले, लेकिन करें अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपने हिसाब से, अपनी रूटीन के मुताबिक। और जो जो हम काम करें उसका डायरेक्ट फायदा हमें ही पहुंच रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि काम हम कर रहे हों और इसका फायदा कोई और उठा रहा हो। ये वाकई बहुत तकलीफ दे और परेशान कुन समरहला हो जाता है। इसके लिए जरूरी है आप अपना काम कीजिए। कहते हैं जमीन वो जो आपके नाम हो, पैसा वो जो आपकी जेब में हो, और काम वो जो आपका अपना हो। आपको अपना काम करवा के देने के लिए बेहतरीन शख्सियत है इस वक्त जीटीए में। कमर्शियल रियल स्टेट के हवाले से बात की जाए तो नाम एक ही है साहब, हसीब शेख। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन एंड काइंड वर्ड्स।
0: शुक्रिया बहुत बहुत हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ख्वाब तो सबका है, दिल सभी का कहता है, आवाज ये दिल से आती है कि काम अपना होना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो, सवाल ये है।
1: आपने बहुत अच्छा लफ्ज कहा, वो तीसरा लफ्ज आप एड अप कर देते, हिम्मत भी हो।
0: हिम्मत भी बिल्कुल ठीक है, हिम्मत होना चाहिए।
1: हाँ जी
0: बिल्कुल,
1: हिम्मत हो जाता है वो सब बात तो आपका यही है। बाकी ये है कि हम लोग बैठे इसलिए हैं कि अगर आप हिम्मत नहीं बना पा रहे, हमारे पास आप तशरीफ लाए, हम आपके साथ बैठ के हर बिजनेस के मुताबिक जो आप करना चाहते हैं उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, जो उसके रिस्क फैक्टर देखा जाता है और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको प्री मेजर किया जाता है कि आप किस तरीके से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड पीस ऑफ माइंड हो कि जिसके साथ आप ये काम कर सकते हो। तो इसके लिए जो आपकी फंडिंग होती है उसकी सेफ इन्वेस्टमेंट और सेफ एग्जिट को सामने रखा जाता है। सबसे जरूरी ये होता है, देखिए ये मनी जो है ना ये बड़ी मुश्किल होती है इकट्ठा करना।
0: जी बिल्कुल,
1: कुछ बंदे हैं हम लोग जानते हैं कि वो 20-25 हजार डॉलर महीना कमाते हैं लेकिन 5,000 डॉलर की भी सेविंग नहीं होती। तो जब अगर एक बंदा जो है हमारे पास आता है वो कहता है मेरे पास 1,00,000 डॉलर है, तो कई दफा ये सोचना पड़ता है कि कई बंदों की ये 20 साल की सेविंग होगी और किसी की 5 साल की सेविंग होगी।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही,
1: हमें देखना पड़ता है कि उसकी 5 ईयर की जो लाइफ सेविंग है उसको किस तरह प्रॉपर हम लोग यूटिलाइज करें। उसके लिए देखें छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जैसे कि मैकेनिकल वर्कशॉप हो गई, कन्वीनियंस स्टोर हो गया, डॉलर स्टोर हो गया, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, तो रेस्टोरेंट में कितने सारे बिजनेस हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसमें आपको डिपेंडेंस नहीं करनी पड़ती कि भाई शक होगा तो काम चलेगा, शक के बगैर भी काम चल
0: जी, बिल्कुल सही।
1: तो इस तरह जो है ये हम लोग आपको विदन सिटी आपको या आउट ऑफ टाउन जो है वो आपको हम लोग देते हैं, ऑफर करते हैं। जैसे कुछ लोग आश्रम एजेंट्स पिकरिंग में रहते हैं, ये तो सारा जीटी है, इसके अंदर लंडन डेरी जो भी आपका एरिया है इस वक्त हमारे पास जो बिजनेस है हम आपके साथ शेयर करते हैं, अदरवाइज हम आपकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको बिजनेस इमीडिएट फाइंड करके देते हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी, कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कारोबार का या बिजनेस का तजुर्बा नहीं है, उन्होंने कभी कारोबार किया ही नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिसको तजुर्बा नहीं है वो कभी जिंदगी में कारोबार कर ही नहीं सकता? हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन?
1: देखिए अमित साहब, हर बंदे के अंदर एक सेलमैन होता है
0: जी,
1: जब आप अपनी डिग्री के लिए अपना रेज्यूमे बनाते हैं तो आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, तो आपको वो लो रेट पे बाय करके तो हम लोग के सर्विसेज को आगे बेच के हमसे पहले बनाते हैं
0: जी।
1: तो आप सेल में शिफ्ट अपने लिए यूटिलाइज करें, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बंदा के मेरे पास उसकी स्किल नहीं है। स्किल जो है वो हम लोग ये करती बाय चॉइस मेन।
0: बिल्कुल ठीक।
1: यहाँ पे लोग जो है वो बैक होम से मीडिया टाइकून से, वो कोई एरोनॉटिक्स में था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, लेकिन यहाँ पे आके जो है वो सब PhD हो गए हैं, पिज्जा होम डिलीवरी हो गया। तो वो PhD उनकी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये किया कि यहाँ पे आकर सब करना पड़ा है। आप नई डिग्री की नई टाइटल्स को सुन के एंजॉय कर रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक, सही।
1: तो इसलिए ये आएंगे तो हम आपको यकीनन ऐसा ही बिजनेस लेके देंगे जिसमें कम से कम आपको 2-3 weeks मंथ की ट्रेनिंग भी दी जाए, ताकि आप उसको प्रूवन वे काम कर सके।
0: आपने पहले जिंदगी में कभी कारोबार किया है या नहीं किया है, लेकिन दिल कहता है कि करना है, तो एक बार हसीब शेख से बात करके देखें, आपकी सारी गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी, एक नया हौसला, एक नई हिम्मत और एक नया इरादा मिलेगा आपको। ये रहा नंबर हसीब शेख का, 647-988-4449। नंबर आपको दोबारा बता रहे हैं, 647-988-4449। शेख साहब, कोई एक दो बिजनेसेस बताइए जो मेरे जैसा गरीब आदमी भी ले सकता हो।
1: फिर तो मुझे मेरा होटल और मोटर से शुरू करना पड़ेगा अगर आपके लिए।
0: कम से कम 7-star, राइट?
1: मुझे बुर्ज खलीफा भेजना पड़ेगा।
0: वो तो आजकल बहुत सस्ता बेच देंगे आप शेख साहब। जी
1: देखिए जी, हम लोग आपको जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर आप डॉलर स्टोर लेना चाह रहे हैं, अगर आप कन्वीनियंस स्टोर लेना चाह रहे हैं, और हमारे पास इस वक्त एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है कि हम लोग एक मीफील्ड प्लाजा, आपने देखा होगा एयरपोर्ट एंड मीफील्ड के कॉर्नर पे नया प्लाजा बन रहा है, जो कि रिच टूर जिसे कहा जा रहा है, जिसमें हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है जो कि कम्प्लीटली बना हुआ है, अभी उसको स्टार्ट नहीं किया। अगर आप उसको लेते हैं तो यू विल बी द फर्स्ट गाय हु विल बी रनिंग द शो। तो आप उसको पार्टनरशिप पे भी ले सकते हैं, उसको कंसाइनमेंट पे ले सकते हैं, लीज टू ओन द बिजनेस पर भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह हमारे पास ब्रिम्पटन के अंदर रेस्टोरेंट की लोकेशन है, ब्रिम्पटन में एक नॉन फ्रेंचाइज, और सबसे बड़ी बात है राजा महाराजा स्टाइल में अगर आपने लेना है जिसमें 400 बंदे के बैठने की जगह है, जिसमें हर तरह का बफे और 50,000 पर मंथ एवरेज इनकम है और प्रूवन इनकम है, अगर ऐसे ही किसी बिजनेस को आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी सर्विसेज आपका है, हम आपसे एक कॉल अवे है। हमारे पास फुल टीम है जो कि आपको कैनरा स्मॉल बिजनेस लोन, दूसरे कमर्शियल लोन, मॉर्गेज लेने में आपकी पूरी तरह मदद करती है।
0: बिल्कुल सही।
1: क्योंकि सबसे मुश्किल बात यह है कि ये बाय करने के लिए आप अपना कर्ज निकाल भी लें, लेकिन अगर फंडिंग नहीं प्रॉपर होती तो सारे जो है वो ड्रीम्स टूट जाते हैं, लेकिन हम आपको भरपूर हेल्प करेंगे कि आपको मिले। और ये मैं सिर्फ दूसरों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे से कहें कि किसी वक्त वक्त निकाल के हमारे पास आए, हमारे पास 2 महीने से चल कर स्टॉक पड़ा हुआ है, वो खाली नहीं हो रहा।
0: शेख साहब से जरूर बात कीजिए, इज अ वंडरफुल पर्सन। आई एवरी टाइम आई गो देयर एंजॉय हिज कंपनी। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू इमोशन एंड इट्स अ न्यू डिटर्मिनेशन दैट ही गिव्स मी। बहुत कमाल के आदमी हैं, आपको बिजनेस दिलाते हैं, पूरा फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं। ही इज गोइंग टू बी विद यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। हियर इज द नंबर टू डायल, 647-988-4449। नंबर अगेन, इट्स 647-988-4449। शिक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
3: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
2: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या

0: उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
1: द लवी डवी शो ड्राइविंग यू होम अ मेलोडी अबव एंड बियॉन्ड ब्रॉट टू यू बाय रेडियो टोरंटो कनाडा मंडे टू फ्राइडे

किसी ट्रेन का इंजन पूरी रफ्तार से एक सिमत या एक डायरेक्शन में दौड़ रहा हो और एक ना नजर आने वाला मामूली सा पुर्जा टूट जाए तो इंजन की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए आप जितना कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, योर एबिलिटी एंड योर कैपेबिलिटी जरूर कीजिए, लेकिन इस गुमान में न रहिए कि यह निजाम आपकी वजह से चल रहा है। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे यू, आई लव यू।

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
3: Preet ki lat mohe aisi lagi.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माई मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 9461000 for Midland and Sears and 4167571000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.

आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर, और विजिट mymechanicauto.ca।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होंगी बिल्कुल अनलिमिटेड. एंटरटेनमेंट तो बहुत है लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल अनलिमिटेड. न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड.
3: यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं एब्सोल्युटली अनलिमिटेड। एंड बाहर का तापमान होता है 7 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 6। रेन एंडिंग अराउंड 12:30 PM और सनसेट होगा 8:26 पर। मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 10 टुडे, 10-11 डिग्रीज, टुमारो 12, फ्राइडे 14 एंड 16 डिग्रीज ऑन सैटरडे, एंड टुमारो विल बी अ क्लाउडी सनी एंड देन फ्राइडे इज अ मच बेटर डे। कुछ इसी तरह से टेम्परेचर्स रहेंगे, ऐसे ही रहते हैं मई के महीने में, एंड आई थिंक वी कैन जस्ट इन्जॉय वट एवर वी आर गेटिंग राइट नाउ। एंड मिनिमम टेम्परेचर्स टुनाइट विल बी अबाउट 4 degree Celsius, so dress appropriately and accordingly. 416-593-0055 studio ka number hai, 12:15 ki headlines bilkul taiyar hain. Pehla geet Udit Narayan ki awaaz mein aapne suna, Lagaan film ka geet, film aaya on Aamir Khan and that entire gang of Lagaan, Mitwa, beautiful song, inspirational song se din ki humne kar di hai shuruaat. And the segment is brought to you by Brampton TV and Appliances se Sultan ji. Aage chalkar Sky Lake Immigration ke special Immigration Unlimited segment mein hamare saath Manan Gupta ji honge, aapke sawal aur unke honge jawab in regards. Apple iPhone owners could get up to $95 after settlement over false advertising of Siri's AI capabilities. Privacy watchdogs to release a report today, Ottawa mein, on OpenAI, owner of ChatGPT chatbot. And ye AI ki taraf se khabar samne aayi hai. Alert, ready test to be broadcast on TV, radio and wireless devices on Thursday in Ontario. आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसा हो रहा है, और खासकर मुझे लगता TikTok being that most you know app जहां पर ये चीज social media पर हो रही है, कि आप किसी Mexico के trip की बात करते हैं, and then all of a sudden आपने TikTok खोला और देखा कि सामने मेक्सिको को लेकर ही कुछ न्यूज चल रही है, कुछ वेकेशन को लेकर। इजंट दैट स्कैरी, सो स्कैरी। मतलब, एंड दिस इज नॉट ओनली मी, मुझे लगता है मैंने कई लोगों से बातचीत की है, कई लोगों ने इस चीज के बारे में कहा है कि भाई जब भी कई बार वो किसी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, पहले तो ऐसा था फेसबुक इंस्टाग्राम पर कहा जाता था कि आपको अचानक वो ऐड दिख गई, कहीं आपने छोले भटूरे की बात की, आपको छोले भटूरे की ऐड दिख गई है, या कोई उस तरह की यू नो एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर्ड एड और समथिंग लाइक दैट। बट टिकटॉक आई फील डज दैट द मोस्ट। You know, you talk about some clothing, तो अचानक आपको उस तरह की कुछ ads देखने को मिलती है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो privacy laws हैं वो कितने मतलब यहाँ पे ढीले हैं, और कुछ नहीं किया गया उसको लेकर, is you know, you really don't have any privacy and it is a bit scary. 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है, आगे चलकर आपकी कॉल्स भी लेंगे। और गवर्नर जनरल जहां पर चुनी गई हैं, एंड शी इज़ बिन अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, एंड प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने चुना है, एंड कई लोगों ने इस पर भी क्वेश्चन उठाया है कि भाई टेक्निकली उस पदवी की जो एक मान्यता है, या जिस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ इट? इट जस्ट सीज द डिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो चीजें गवर्नमेंट कर रही है वो सही है, नहीं है, क्या है, नहीं है। बट डू यू नो कि इन द लास्ट 100 ईयर्स, 100 सालों में सिर्फ 1926 के एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एक डिसीजन लिया था अगेंस्ट कॉलिंग एन इलेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दिस वॉज 100 ईयर्स अगो। उसके बाद 100 सालों में इस पोजिशन पर जो इंसान शख्स बैठा है उसको इतना सम्मान मिलता है, बट टेक्निकली नथिंग रियली, मतलब वो कोई बहुत ज्यादा कुछ हमने देखा नहीं है कि भाई उस पोजिशन से कोई इस तरह के बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। So that's also something to think about. ऐसे करते हैं, छोटा सा छोटी सी ब्रेक लेते हैं। कूल एंड अनसेटल्ड वेदर एक्सपेक्टेड टू स्टिक अराउंड इन द GTA अंटिल मिड मे, फिर वेदर चेंज होगा, एंड वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
4: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस, सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट लीसाज कॉस्मेटिक्स.com।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court इन Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info.
3: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
4: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
5: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
6: Good afternoon. शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
7: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Lisa's Cosmetics, Spring Warehouse Sale, Brampton TV and Appliances, Clear Optical by Varun Kanda, Rajdhani Sweets and Restaurant, Kavya Homeo Care, McVean Dental Care, Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. OpenAI president ne trial mein kaha Elon Musk wanted $80 billion to colonize Mars. US-Iran closing in on one-page memo. ताकि वॉर खत्म हो। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि समझौता जल्द होगा। यूएई पोर्ट पर ईरान के अटैक में 3 इंडियन मारे गए। पीएम मोदी ने कहा दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ट्रंप का कहना है कि ईरान की मिलिट्री टोटली खत्म हो चुकी है और वेव व्हाइट फ्लैग ऑफ सरेंडर। ट्रंप ने ऑर्डर साइन किया टू ब्रिंग बैक अ प्रेजिडेंशियल फिटनेस अवार्ड फॉर चिल्ड्रेन और कहा मेरा एक्सरसाइज रूटीन हर रोज 1 मिनट का ही होता है। US ने ईरान को वार्न किया ऑफ फोर्सफुल रिस्पॉन्स इफ शिप्स अटैक्ड और कहा नॉट लुकिंग फॉर फाइट, मगर हमें उकसाने की कोशिश ना करें। US से लेकर पाकिस्तान तक इंटरनेशनल मीडिया ने बंगाल में बीजेपी की जीत को किया कवर। स्पेन ने हॉटेस्ट अप्रैल का महीना दर्ज किया सिंस रिकॉर्ड्स बिगैन इन 1961 और ईरान वॉर की शुरुआत से जापान को फर्स्ट रशियन ऑयल शिपमेंट रिसीव हुई। जापान डिपेंड्स ऑन मिडल ईस्ट फॉर 95% ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट्स। ईरान वॉर की शुरुआत से गैसोलीन कॉस्ट्स 50% मोर इन द US। और लोकल समाचारों में ट्रक रोलओवर और ऑयल स्पिल क्लोजेस रैम्प्स फ्रॉम हाईवे 427 टू हाईवे 409 एंड टोरंटो में हुए कलिजन के बाद मोटरसाइकिल trapped underneath SUV dies. Ontario to lower age for colorectal cancer screening from 50 to 45 aur RCMP jaanch mein $4.4 million ke drugs seized hue, 3 Toronto area residents ko charge kiya gaya. 16 Toronto schools ko bomb threats mili, jaanch hui shuru and cool or unsettled weather in GTA mein hogi wapsi. दूसरी और भारतीय समाचारों में इंडिया वियतनाम ने ट्रेड रोडमैप को फाइनलाइज किया है। टारगेट $25 billion बाय 2030। कोलकाता के न्यू मार्केट में चला बुलडोजर, टीएमसी ने दावा किया पार्टी ऑफिस वैंडलाइज्ड एज वेल। चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा सरमा का कहना है कि ममता अगर रिजाइन नहीं करती तो उन्हें डिसमिस करें। केसी वेणुगोपाल ने कहा टीवी के विजय कांग्रेस की सपोर्ट चाहते हैं टू फॉर्म तमिलनाडु गवर्नमेंट। और करप्शन जांच के बीच प्रोटेस्टर्स ने अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने को कहा। ट्रंप ऑफिशियल का कहना है कि इंडिया US वेरी क्लोज टू अ ट्रेड डील, बस अब लास्ट हर्डल ही बची है। केंद्र ने एयरलाइंस के लिए 18,000 करोड़ रुपीस की स्कीम का ऐलान किया एंड ओपन ड्रेन में गिरने से बच्चे की मौत हुई। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने शोक जताया और जूनियर इंजीनियर को फायर भी किया। एलआई डीएमके ने कांग्रेस और टीवीके के टाइप को लेकर कांग्रेस को बैकस्टैबर्स कहा। डीएमके के अनुसार कांग्रेस को 5 सीट्स भी उन्हीं की वजह से हासिल हुई हैं। जलंधर बॉर्डर फोर्स बेस के करीब पार्क स्कूटर एक्सप्लोड हुआ। ट्रंप ने इलेक्शंस विक्ट्री पर पीएम मोदी को दी बधाई और कैबिनेट ने 6 स्टेट्स के लिए 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 23,500 करोड़ रुपीस को अप्रूवल दे दी है। टीवीके के विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर से मुलाकात की एंड स्टेक्स क्लेम टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से, पुलिस ने कराची प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च लीडर्स को ब्रीफली डिटेन किया। कई महिलाओं को कस्टडी में लिया गया। ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को वार्निंग देते हुए कहा, अगर फ्यूचर हॉस्टिलिटी हुई तो इंडिया को करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने ग्लोबल पीस के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है, बोले आसिफ। वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इंडिया प्रॉक्सी वॉर। इंडिया के हिंदुत्व माइंडसेट से रीजन में कोई कंट्री भी सेफ नहीं। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक गेन्स किए हैं। AS लेवल बिजनेस स्टडीज पेपर ऑनलाइन लीक हुआ था। एग्जाम सिक्योरिटी पर कई सवाल उठे। अरेबियन सी में एक डिस्ट्रेस्ड वेसल ने पाकिस्तान नेवी ने इंडियन और इंडोनेशियन सेलर्स को रेस्क्यू किया। ISPR के अनुसार वेसल सफर्ड क्रिटिकल टेक्निकल फेलियर वाइल ऑन रूट फ्रॉम ओमान टू इंडिया। UAE पर ईरान के लिए किए गए मिसाइल और ड्रोन अटैक्स को पाकिस्तान ने कंडेम किया है। PM शरीफ ने UAE को अपनी स्ट्रांग सपोर्ट का वायदा किया। ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम सीज फायर की गुहार भी लगाई गई। चीफ मिनिस्टर अफरीदी ने पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया ओवर सेंटर्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट KP। और ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तान आर्मी कैडेट declared the best foreign cadet, reflecting the professionalism and excellence demonstrated by junior leadership of the Pakistan Army. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से, अभिषेक शर्मा स्टिल नंबर 1 इन ICC T20 रैंकिंग्स। ईशान किशन 23 पॉइंट्स बिहाइंड अभिषेक शर्मा एट नंबर 2 और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान इज एट नंबर 3। चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ्स होप को रीइग्नाइट कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स सफर अ सेटबैक। दिल्ली कैपिटल्स अटेन द वर्स्ट रिकॉर्ड इन IPL 2026 विद बिलो पार डिस्प्ले वर्सेस CSK। 6th कंसेक्यूटिव लॉस के बाद रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स को स्लैम किया और कहा, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसिस्टेंसी इन दिस टीम। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार नो बायलैटरल सीरीज विद पाकिस्तान। बॉलीवुड खबरों से, धुरंधर 2 के बाद डांस सॉन्ग के लिए राकेश बेदी ने नोरा फतेही के साथ टीम अप किया है। दादी की शादी की स्क्रीनिंग पर नीति कपूर को सपोर्ट करने रणबीर और आलिया भी पहुंचे। मिडल ईस्ट टेंशंस की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर स्ट्रैंडेड अमीषा पटेल रिटर्न्स टू इंडिया। अक्षय कुमार ने विद्या बालन और राशि खन्ना के साथ अनीस बज्मी की फिल्म का केरलम स्केड्यूल रैप अप किया एंड कॉल्स इट वेरी स्पेशल। प्रभास की फौजी शूट हॉल्ट हुआ आफ्टर क्रू मेंबर डाइज इन अ रोड एक्सीडेंट नियर हैदराबाद। और शाहरुख खान दीपिका पाडिकोन शूट फॉर रोमांटिक ट्रैक फॉर द मूवी किंग इन लीक्ड वीडियो। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता टू रिलीज इन द मंथ ऑफ जून, पहला पोस्टर रिवील किया गया। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल। गीत संगीत का कारवां चलेगा 2 बजे तक। आपकी रिक्वेस्ट जो आ रही हैं वो हम प्ले करते रहेंगे। कभी कभार एक आध रिक्वेस्ट रह भी जाती है, उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं, सो इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट टू प्ले ऑल ऑफ देम, बट कोशिश ये होती है कि सारी की सारी प्ले कर दी जाए। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30 प्लस लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। डॉन वैली नॉर्थ हांडे इज गिविंग फीफा टिकट्स। इट इज अ बैलेट दैट विल बी ड्रॉन इन द मंथ ऑफ जून। ऑफर एंड होती है 31 मई को। एंड अगर आप कोई भी हांडे की गाड़ी खरीदते हैं, दो नाम फॉर 2 टिकट्स विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। इफ यू बाय विंटर टायर्स फ्रॉम देम विद स्टोरेज, 1 नेम फॉर 1 टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। Similarly, with any extended warranty purchased, again, 1 name for 1 ticket will be put in for a lucky draw. 7537 Woodbine Avenue, Markham, Steels Woodbine Wala Major Intersection, Don Valley, North Hande. Naam rakhna hai yaad. Aur Asha Bhosle ji and Kishore Kumar Saab ki awaaz mein, what a song. Mahan. Zeenat Aman and Amitabh Bachchan par filmaya. Aur ye wo geet hai jo aaj bhi aisa lagta hai ki bhai, ye, this is so contemporary and... स्पीकर का वॉल्यूम ऊपर जाना बिल्कुल बनता है क्योंकि प्यार में दिल पे मार दे गोली। इंजॉय।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव. चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम. हर जर्नी को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
3: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040. 289-748-4040.
4: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल, 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.

0: जोशी।
1: कभी अपनी हंसी पर आता है गुस्सा, कभी सारे जहां को हंसाने का दिल करता है, कभी छुपा लेते हैं गम को दिल के किसी कोने में, कभी किसी को सब कुछ सुनाने का दिल करता है, कभी रोते नहीं लाख दुख आने पर भी, और कभी यूं ही आंसू बहाने का दिल करता है। कभी अच्छा सा लगता है आजाद घूमना, लेकिन कभी किसी की बाहों में सिमट जाने का दिल करता है। कभी कभी सोचते हैं नया हो कुछ जिंदगी में, और कभी बस ऐसे ही जिए जाने को दिल करता है, और कभी बस ऐसे ही जिए जाने को दिल करता है।
2: ताली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है।
3: कौन है तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
4: इसे कहते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
5: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: एक और कहानी मेरी जुबानी। मन से डर निकाल दे तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। चार्ली चैपमैन की आत्मकथा। जीवन के शुरुआती दौर में मेरी दुनिया सिर्फ दो लोग ही थे, एक थी मां और दूसरे मेरे बड़े भाई। हमारा समय बुरा चल रहा था क्योंकि हम गिरजाघरों की कृपा पर पल रहे थे। शो की टिकटों को बदौलत जैसे तैसे जिंदगी काटने को मजबूर थे। सिडनी स्कूल के दौरान समय निकालकर मैं अखबार बेचता था, और बेशक इससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती थी। जीवन में जिस सबसे बुरी चीज की कल्पना मैं कर सकता हूं वो ऐशो आराम की लत है। मां हेना ने सिखाया कि पैसा नहीं होने पर कैसे मनोरंजन किया जा सकता है। हमारी मां खिड़की पर बैठ जाती और सड़कों पर गुजरने वाले लोगों को देखती, और इसके आधार पर उनके चरित्र, रंग रूप और आचरण का अनुमान लगाती, उन पर कहानियां सुनाती, कभी कभी उनकी नकल करके भी दिखाती। मैंने अपनी मां की इस कुशलता को आत्मसात कर लिया था। मेरी मां की ये प्रतिभा और उनकी सुनाई कहानियां थीं जिसके कारण मैं दुनिया को आगे जाकर हंसा पाया। मेरा मानना है कि जिंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर आप इससे डरे नहीं। जरूरत है तो सिर्फ साहस और कल्पना की, और बहुत थोड़े से पैसों की। अगर आप नीचे देखेंगे तो कभी भी जिंदगी में इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे। इस मकार दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, यहां तक कि हमारी परेशानियां भी नहीं। चैपलिन की आत्मकथा। स्टे ब्लेस्ड।
6: काव्य होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा, पिनाक ओझा जी, 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड। मंडे टू सैटरडे द क्लिनिक इज ओपन 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग। नंबर एक ही है, 647-760-2779। वॉक इन करें या अपॉइंटमेंट बनाए, या दूर रहते हैं तो ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका दवाई शिप की जाती है, फोन पर कंसल्टेशन कर सकते हैं, 647-760-2779। मीता जी, आपका स्वागत है।
7: थैंक यू सो मच सनी जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लिसनर्स।
1: जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। और मीता जी, इस स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में जहां पर ऑन अ रेगुलर बेसिस, वीकली बेसिस, हम अलग अलग बीमारियों के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपकी एक्सपर्टीज का फायदा लेते हैं, आज किस टॉपिक पे करेंगे बातचीत?
7: जी, आज हम करेंगे यूट्राइन पॉलिप के बारे में बातचीत। और ये जो है बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर पॉलिप ग्रो कर जाना, यूट्रस की अंदर की जो टिश्यू है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं वो जब ओवरग्रो करने लगती है जिससे पॉलिप ग्रो करने लगता है, तो ये पॉलिप्स यूट्रस के अंदर उसकी वॉल से जुड़े होते हैं या ग्रैप्स की तरह ये लटकते रहते हैं जो छोटे सेसमी सीड से लेके गोल्फ बॉल जितनी साइज में पाए जाते हैं। अब ये पॉलिप्स यूजली ग्रो करते हैं लेडीज में 40 या 50s में के मेनोपोजल एज में, पेरी मेनोपोज के टाइम या मेनोपोज के बाद जब इस्ट्रोजन लेवल में चेंजेस आते हैं तो उसके साथ ये पॉलिप्स ग्रो कर जाते हैं, पर ये यंग एज में भी डेवलप हो सकते हैं जिस करके कंसीव करने में, प्रेगनेंसी रुकने में भी ट्रबल होती है। पॉलिप्स के साथ यूजली ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच बीच में स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो जाना, पीरियड्स जो है वो अर्ली आते रहना, एक तो अर्ली आ जाते हैं और फिर ज्यादा दिन लगातार चलते रहते हैं, सो हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, कई बार इसके साथ क्लॉट्स भी आते हैं, इवन ज्यादा काम कर लिया, कुछ हेवी वेट उठा लिया तो उसके साथ भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये सारे सिम्टम्स जब आपको कुछ एक टाइम से फील हो रहे हैं तो ये हिस्ट्री लेके आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएंगे, वो आपको अल्ट्रासाउंड या स्कैन करवाने को कहते हैं। तो यूट्रस का जब अल्ट्रासाउंड होता है तभी आपको पता चलता है कि ये बच्चेदानी के अंदर आपको पॉलिप्स ग्रो हुए हैं। जब यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो ये फाइब्रॉइड्स पॉलिप से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, जो यूट्रस के मसल के अंदर डेवलप होते हैं, तो इतनी वरी नहीं है। लेकिन जब पॉलिप डायग्नोस होता है तो कुछ पॉलिप्स इस तरह के हैं कि कैंसर तक में डेवलप हो सकते हैं, कि पॉलिप्स को ज्यादातर टाइम प्री कैंसरस कंडीशन मानी जाती है। तो ऐसे में जब यूट्रस में पॉलिप डायग्नोस हुए हैं या उसके साथ आपने देखा है रिपोर्ट में कि यूट्रस की अंदर की लाइनिंग जो है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं वो थिक हो गई है, साइज में एनलार्ज हो गई है, तो फिर ये कंसर्न की बात बन जाती है और इस तरह के ग्रोथ को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव रहा है इस तरह के पॉलिप्स के ग्रोथ के लिए। ये मेडिसिन आप स्टार्ट करते हो तो ये इसको श्रिंक करने में हेल्प करेगा, अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है नेचुरली उसको ये मेडिकेशन बैलेंस करती है, हम कोई हार्मोन्स नहीं देते हैं, और साथ में आपके जो सिम्टम्स हो रहे हैं कि हेवी ब्लीडिंग वगैरह तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इन कुछ एक टाइम में आप देखोगे कि पॉलिप जो है वो श्रिंक होके या निकल गए हैं अपने पीरियड्स के टाइम पे, सो इस तरह के ग्रोथ आ रहे हैं, यूट्रस के अंदर पॉलिप ग्रो कर गए हैं, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, हेवी ब्लीडिंग, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन गए हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम काफी यंग गर्ल्स को है, और ऐसे में पेरेंट्स का, मदर्स का ये कंसर्न होता है कि उनको हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए। ऑलरेडी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो साथ में आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि उसकी जड़ तक जाके सही करने में ये उसको हेल्प करेगा। सो किसी भी तरह के हेल्थ कंसर्न के लिए इसके साथ हम लेके आए हैं मसाज थेरेपी एज वेल। सो बॉडी में कहीं पे भी पेन्स हैं, आर्थराइटिस, बैक पेन, नेक पेन, हेडेक से परेशान हैं या ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस हेडेक हो रहा है, तो ऐसे में साथ में ये मसाज थेरेपी भी अवेलेबल है।
0: जी दोस्तों, बता दें काव्या होम्यो केयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाक ओझा जी 10 कॉट्रेल बुलेवर्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से सर्व करते हैं। द मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड एंड द क्लिनिक फॉर योर कन्वीनियंस इज ओपन 6 days अ वीक, मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM। अगर पूरा परिवार जा रहा है इट्स अ गुड आइडिया कि आप अपॉइंटमेंट बना लें, आप वॉक इन भी कर सकते हैं, फोन पर कंसल्टेशन कर सकते हैं एंड दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। 6477602779 एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ द मसाज एज वेल, उसके लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट्स जरूर बनवा लें 6477602779। मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया,
7: थैंक यू जी
0: 6477602779 काव्या होम्यो केयर। अगेन किशोर कुमार साहब लता जी की आवाज में, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले बने, शिव हरि का म्यूजिक, जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स, ब्रॉट यू बाय लीसा स्प्रिंग कॉस्मेटिक Warehouse Sale, Brand Name Fragrances, Cosmetics और Prestige Brand Names, जहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, up to 80% savings, perfect gift ideas for Mother's Day, आने वाला संडे Mother's Day है, Fine Chocolates, Designer Sunglasses, 135 Commerce Valley Drive, East and Markham, और ये आखिरी 3 दिन Lisa's Spring Warehouse Sale के बच गए हैं, 8, 9, 10, Friday, Saturday, and Sunday. Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. Sunday, 10 a.m. to 6 p.m. And Monday is 10 a.m. to 8 p.m. Lisa's Cosmetic Spring Wearers Sale. And cholebhature.ca, 4 amazing locations se, amazing chole bhature, Delhi wale serve karte hain. 2 in Brampton, 1 in Vaughan, and 1 in Mississauga. Dine and takeout option available at all the locations of cholebhature.ca. Enjoy the song. I'll be right back.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक. परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीतें. विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
5: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना. वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता. एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 647-628-0040. दैट इज 647-628-0040.

0: इमिग्रेशन।
1: कम्युनिटी का जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, 416-451-0040, और विजिट स्काई

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट में, जहां पर आपके सवाल होते हैं और मनन जी हॉट सीट पर होते हैं, बिकॉज वो एक्सपर्ट हैं स्काईलेक इमिग्रेशन के, द नंबर वन कंपनी इन GTA इन कैनेडा, और बेस्ट सर्विसेज आपको इमिग्रेशन की प्रोवाइड करते हैं। 416-451-0040 इज द नंबर, 416-451-0040। मनन जी से पूछते हैं टॉप थ्री क्वेश्चंस ऑफ दिस वीक बाय आवर लिसनर्स सेंट टू us, and Manan ji, aapka swagat hai.
1: Thank you very much, Sunny ji, for having me. Bahut bahut shukriya, aur program ke saath jude hue sabhi listeners aur parivaron ko bahut pyar bhari namaskar. Good afternoon, sat sri akal and adab. Thank you so much.
0: Aapko bhi namaskar and good afternoon. Sabse pehla sawal Sood sahab ne, Naresh Sood bhej rahe hain, pooch rahe hain ki Manan, I have received the oath ceremony invite for my Canadian citizenship. However, I am currently on vacation and cannot attend. क्या करना चाहिए, व्हाट कैन आई डू?
1: नरेश जी, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आपकी कैनेडियन सिटीजनशिप बनने का जो प्रोसेस है, इट्स ऑलमोस्ट एट द टेल एंड, सिर्फ ओथ सेरेमनी रह गई है, लेकिन लुक्स लाइक इफ यू आर ऑन वेकेशन तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार अब आपको करना पड़ेगा. उस इंतजार के लिए देर आर मल्टीपल वेज हाउ यू कैन हैंडल इट. बेस्ट होगा कि जो आपको ईमेल IRCC सिटीजनशिप ऑफिस से आई है, उसी ईमेल को आप रिप्लाई करें विद योर जेन्युइन रीजन कि यू आर वेकेशनिंग, यू आर आउट ऑफ कंट्री. क्योंकि ये ओथ सेरेमनी, इसके लिए आपको विद इन कैनेडा रहना पड़ता है. चाहे आप वर्चुअल करें या इन पर्सन करें, वो आपने नहीं बताया कि आपकी इन पर्सन ओथ सेरेमनी की कॉल आई है या वर्चुअल, लेकिन दोनों ही सिनेरियोज में यू हैव टू बी विद इन कैनेडा. तो बेस्ट थिंग वुड बी टू सेंड अ क्विक ईमेल टू IRCC एंड दे कैन ऑलवेज रीशेड्यूल. लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी सिनेरियो हो सकते हैं कि आप IRCC को लास्ट मिनट पर ना इन्फॉर्म कर पाए. सो उस सर्कमस्टांसिस में IRCC बाय डिफॉल्ट नो शो करके आपको अगली ओथ सेरेमनी की डेट भी मिल जाती है. बट इट्स ऑलवेज गुड, एडवाइजेबल टू सेंड अ यू नो ईमेल फ्रॉम योरसेल्फ अलर्टिंग देम. जी
0: जी. एंड अगला सवाल जो है बड़ा वो भी इम्पोर्टेंट है. सरिता कालिया जी पूछ रही हैं कि मनन जी, माय एल्डरली पेरेंट्स आर इन इंडिया, दे आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कैनेडा, बट द PR कार्ड रिसेंटली एक्सपायर्ड. ये तो बहुत कईयों के साथ होता है. सवाल उनका ये है कि हाउ कैन आई फैसिलिटेट देयर ट्रैवल टू कैनेडा?
1: ओके, वेल, जैसा कि सनी जी आपने बताया, आपकी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो. कई बार चाहे पेरेंट्स हों चाहे एक ऑर्डिनरी एज ग्रुप के लोगों को, उनका PR कार्ड एक्सपायर हो जाता है जब वो आउटसाइड कैनेडा होते हैं. उसका सीधा रेमिफिकेशन ये होते हैं कि आप बिना वैलिड PR कार्ड के आप डायरेक्टली कैनेडा की फ्लाइट नहीं पकड़ सकते. यू नो यू वोंट बी अलाउड एंट्री. सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सरिता जी के लिए ये है कि वो अपने पेरेंट्स का यू नो परमानेंट रेजिडेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसे PRTD कहा जाता है, वो अप्लाई करें. एंड आई एम श्योर कि उनका PR कार्ड एक्सपायर हुआ है, उनका PR स्टेटस को कोई किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं है. सो $50 की फीस लगती है, और उसके साथ आपने प्रूफ भेजना है कि दे आर जेन्युइनली PR रेजिडेंट और उनकी पुरानी जो सी रेजिडेंशियल हिस्ट्री है. तो वो नॉर्मली अगर वो इंडिया में है तो तकरीबन 2-4 हफ्तों के बीच में उनको PRTD डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जिससे वो वन टाइम ट्रैवल कैनेडा कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली इफ दे आर इन पोजेशन ऑफ US अमेरिकन वीजा उनके पास है, तो दे कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू लैंड बॉर्डर इन अ प्राइवेट कार्ड फ्रॉम US बॉर्डर पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू कनाडा. उसके लिए भी उनको PR कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन ये US वीजा हर एक के पास नहीं होता, बट दैट्स अ वेरी सेफ एंड सिक्योर वे अराउंड टू हैंडल दिस सिचुएशन. जी
0: जी. एंड आखिरी सवाल आपके लिए है, नंबर मैं दे दूं स्काईलेक इमिग्रेशन के मनन गुप्ता जी का और उनकी टीम का, 416-451-0040. आखिरी सवाल सुमित राणा पूछ रहे हैं कि मनन जी, द बायोमेट्रिक्स फॉर माय सिस्टर वर डन इन May 2022, बट द ऑनलाइन टूल डजंट शो एनी सच रिकॉर्ड. हाउ कैन आई गेट द वेरीफाइड स्टेटस?
1: ओके, वेल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्योंकि नॉर्मली सनी जी होता क्या है कि जो बायोमेट्रिक्स का वैलिडिटी का टूल है IRCC की वेबसाइट पर, उसमें आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती हैं. UCI यानी कि यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर नंबर, और फिर लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ. सो आई एम नॉट श्योर कि क्या इन्फॉर्मेशन गलत है या क्यों वो मैच नहीं कर रही है इनके सिस्टर के बायोमेट्रिक्स के साथ. बट अगेन हैविंग सेड दैट, इसका ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने बायोमेट्रिक्स पहली बार करवाए थे थे और जब किसी भी वीजा एप्लीकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था उनको एक बायोमेट्रिक्स की वैलिडिटी की लेटर ईमेल के जरिए या बाय पोस्ट जरूर आई होगी. सो उस लेटर को यू नो ट्रेस करें, उसको ट्रैक करें कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं. बट लास्ट रिजॉर्ट यही है कि आप अपना सिस्टर के डिटेल्स वेब फॉर्म के जरिए IRCC को भेज सकते हैं विद द एप्लीकेशन नंबर एंड विद हर UCI एंड डेट ऑफ बर्थ. आई एम श्योर IRCC विल डिग इनटू एंड फिगर आउट वेयर आर हर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स.
0: जी दोस्तों, बता दें हर वेंसडे को इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाला सेगमेंट होता है. आप इमिग्रेशन सेगमेंट

0: मनन गुप्ता 416-451-0044-1616-451-0000। मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सो मच जी, कीप अप द गुड शो। और 12 से 2 तक जो इन्फॉर्मेशन हाईवे आप चला रहे हैं साउथ एशियन लिमिटेड पर, उसकी धूम हर तरफ मचती रहती है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद एंड थैंक यू टू ऑल द सपोर्टर्स।
0: थैंक यू मनन जी, इट्स यूर द बैकबोन ऑफ द शो, यू आर दैट ब्रदर दैट हैज ऑलवेज बिन विद साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो एंड माई सेल्फ फ्रॉम डे वन, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू जी, इट्स अ टीम वर्क।
0: थैंक यू जी। 416-451-0040 द वन एंड ओनली मनन गुप्ता, एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग फ्री सेमिनार सैटरडे आफ्टरनून होता है 12:30 से 3:30 बजे। आपने प्लीज मेक श्योर करना है कि प्लीज डोंट जस्ट वॉक इन, क्योंकि कई बार सीट्स इनफ ऑलरेडी रिजर्व हो जाती हैं। प्लीज रिजर्व योर सीट, एंड चाहे आप एक अकेले जा रहे हैं या 3-4 लोग जा रहे हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। 905-206-1008, 905-206-1008। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 2-bedroom बेसमेंट अपार्टमेंट फॉर रेंट, न्यू मार्केट में अवेलेबल है। 9 फुट की सीलिंग्स मिलेंगी, सेपरेट एंट्रेंस है, सेपरेट लॉन्ड्री है, बहुत ही साफ सुथरा 2-bedroom बेसमेंट अपार्टमेंट है, सिर्फ 2 साल पुराना, और अवेलेबिलिटी इसकी है 1st June से। एंड वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम अपर कैनेडा मॉल एंड बस टर्मिनल। द नंबर टू कॉल फॉर दिस 2-bedroom बेसमेंट अपार्टमेंट इन न्यू मार्केट 416-399-1607, 416-399-1607। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा 2 लोकेशन से सर्व करते हैं। नेम ब्रांड सनग्लासेस पर बहुत भारी सेल है, आई एग्जाम्स करवाने, डॉक्टर अवेलेबल है 7 days a week, ब्रैम्पटन जॉर्जटाउन 2 लोकेशन दे सर्विंग फ्रॉम। एंड गीत संगीत का कारवां चलेगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है दोस्तों कि आपने किसी टॉपिक के बारे में बात की और अचानक आपने टिकटॉक खोला और आपने देखा कि भाई वो जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे थे, चाहे यू वर टॉकिंग अबाउट शूज और यू वर टॉकिंग अबाउट क्लोदिंग और यू वर टॉकिंग अबाउट मे बी अ मूवी, एंड आपने देखा अचानक वही चीज आपको टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पर दिख रही है, ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, बट आई थिंक ये प्राइवेसी लॉज हैं जो कुछ इसी तरीके से हैं, जो कि गवर्नमेंट को मुझे लगता है स्ट्रिक्ट करने चाहिए थे, या अभी भी कर लें तो चंगा है, क्योंकि अच्छा होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम कहते हैं हमारा फोन जो है हमें सुन रहा है 24 आवर्स। इसका मतलब आपके खराटे भी जो है फोन सुनता है, एंड इफ यू कीप इट क्लोज टू योरसेल्फ। सो इफ दिस इज हैपनिंग, यू नो मे बी कुछ प्राइवेसी फीचर्स इस तरह से कुछ होंगे जिन्हें आपको टर्न ऑन करना है, एंड ताकि ऐसा ना हो। ओके, आई एम गेटिंग कपल मैसेजेस जिसमें कुछ हमारे लिसनर्स बता रहे हैं। एक मैसेज जो है राहुल का मैसेज आ रहा है, वो कहते हैं कि या दैट यूजली हैपन्स विद टिकटॉक क्वाइट अ लॉट। एंड इसके अलावा जो है दिनेश जी का मैसेज आ रहा है कि इंस्टाग्राम पर मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं किसी टॉपिक के बारे में बात करता हूं एंड देन आई कम अक्रॉस दैट सर्टन थिंग। क्रेजी। एंड उदित नारायण अलका याग्निक कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में द फिल्म वॉज कुछ होता है, एंड फिल्म आया ऑन रानी मुखर्जी, काजोल एंड नन अदर देन शाहरुख खान। इंजॉय द सॉन्ग, आते हैं वापस।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: pujahut.com। इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस, सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
6: Ja,

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ हैं विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इंसॉल्वेंसी काउंसलर. जब भी आयशा जी आती हैं हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं फॉर डेट सेटलमेंट, हाउ यू कैन सेटल योर डेट एंड से गुड बाय टू ऑल द डेट दैट यू हैव. जितना भी कर्जा है उसे आप किस तरीके से स्मूदली उससे छुटकारा पा सकते हैं, आयशा जी के एक्सपर्टीज का फ़ायदा ले सकते हैं. नंबर है 416-428-2165, 416-428-2165. आयशा मुनव्वर जी, आयशा जी आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर.
3: बिल्कुल, आई हैव टू लेट यू नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल डेट सेटल करने के लिए. तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें आ जाती हैं कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज हैं. इसके अलावा हम बैंकरप्सी में भी हेल्प आउट करते हैं, कलेक्शन कॉल्स रोक देते हैं, लीगल एक्शन रुक जाता है, इंटरेस्ट भी रुक जाता है, आपके एसेट्स जो है वो सेव रहते हैं. तो बेसिकली ये हमारी सर्विसेज हैं और मोर देन 20 ईयर्स से मैं कम्युनिटी को हेल्प आउट प्रोवाइड कर रही हूँ और उसमें यह कि बेताशा क्लाइंट सब सक्सेसफुली डेट फ्री हो चुके हुए हैं. और अपॉइंटमेंट्स ऑलवेज फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल होती हैं और वन ऑन वन अपॉइंटमेंट इसलिए जरूरी होती है कि हर पर्सन की सिचुएशन फर्क होती है, हर पर्सन की फाइल एक यूनिक फाइल होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बैंक्स किस तरह से जो है इसको मैक्सिमम सेटल करेंगे और लीगैलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ आपको बताया जाता है. एंड देन एंड के ऊपर वी हैव टू लेट यू नो कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्रेडिट को आप किस तरह से दोबारा एस्टेब्लिश करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो basically this is you know what we do in first appointment to review your situation to know your options. Aur khali hum options discuss karke consultancy nahi provide karte, hum services provide karte hain. Basically we can file consumer proposals for you, bankruptcies for you, and also we provide credit counseling services. To kai tarah ke debts hote hain, unsecured, secured. To basically all kind of unsecured debts can be settled aur business debts ho, personal ho, iske alawa CRA ke taxes hain, HST mein agar aap behind hain. Aur kai लोग ऐसा करते हैं कि इधर उधर से गलत मशवरे लेके आ जाते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू के यू नो ऑलवेज गेट योर एडवाइस फ्रॉम राइट प्रोफेशनल. ओनली पीपल हु आर फेडरली लाइसेंस दे कैन प्रोवाइड यू नो दीज सर्विसेज, जो कि ट्रस्टी ऑफिसर्स होते हैं और वी आर वन ऑफ देम. और उसमें ये कि हम डायरेक्टली वन ऑन वन बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं, कोई तीसरी पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपके केसेस के खराब होने के चांसेस जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाते हैं. एंड हमारा जो सक्सेस रेट है वो close to 99.9% आप समझ लें, it's really high. और you know we know the right options for you, so all you have to give me a call to review your debt problems and know your right options to settle your debts. So phone number is 416-428-2165, that is 416-428-2165. Thank you.
2: जी आयशा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया. आयशा जी का नंबर मैं दे दूं, आयशा मुनव्वर डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट इंसॉल्वेंसी काउंसलर है विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. 3 डेकेड से लंबा वक्त है, उससे भी ज़्यादा हो चुका है, 30-35 साल से यही कर रही हैं और आपको कर्जों से छुटकारा दिलवाया जाता है, अलग अलग डेथ सेटलमेंट के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं. नंबर है 416-428-2165. कॉल करें, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होगी एंड योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सेइंग गुड बाई टू योर डेट problems. 416-428-2165, 416-428-2165, 416-428-2165, आयशा मुनव्वर जी. एंड ओके, अगला गीत जो है आप ही की रिक्वेस्ट है एंड एस पी बाला सुब्रमण्यम एंड चित्रा की आवाज में. द मूवी वॉज लव, रेवती एंड सलमान खान पर फिल्माया. साथिया ये तूने क्या किया. इन्जॉय द सॉन्ग. आते बहुत ही जल्द वापस. बाहर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस हो चुका है एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट अबाउट 11.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940. दिस सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कार्ना, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन. एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days a week, 905-457-3232. फॉर नेम ब्रांड सन ग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा. द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट यू बाय होम लाइफ मिरिकल के सुपरस्टार रियल्टर्स सरबजीत गिल, सी पी चटवाल, फॉर रियल स्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
1: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है. बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
2: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
3: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca.
4: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
5: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
4: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
6: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
0: काविया होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काविया होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
7: He's breaking through the midfield.
8: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
0: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन. 905-450-2828. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान हमारे साथ हैं. सुल्तान जी, 11 AM टू 7 PM देर ओपन 7 days a week. ब्रैम्पटन अप्लायंसेज .com पर जाकर भी आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं. लेकिन देर आर मोर रीजन देन वन. मदर्स डे, जी हाँ, मदर्स डे पर अमेजिंग डील्स आपका इंतजार कर रही हैं. और सबसे पहले टीवी वाला सेक्शन, सुल्तान जी आपका स्वागत है.
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे जो मदर्स डे स्पेशल प्रमोशन है वो मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि सनी भाई इसमें मैं अपफ्रंट बता रहा हूँ, ये सर्टन लिमिट्स के साथ बहुत कम इन्वेंट्री है जो कंपनीज ने ऑफर की है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस को। अगर हम बात करते हैं 85 इंच टीवी की, तो 85 इंच टीवी आपको आज मिल रहा है जी मदर्स डे स्पेशल पे $1800 वाला सिर्फ 999 में
9: जी।
7: सैमसंग का 85 इंच 999 में लेके मदर्स डे स्पेशल पे आप गारंटेड इसमें $500 से $600 सेव करेंगे, क्योंकि राइट आफ्टर मदर डे ये आपको मिलेगा जी $1500 का।
9: वाओ,
7: सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अप फ्रंट आपको प्राइसेस बता रहा हूं कि मदर्स डे पे 999 पे 85 इंच टीवी मिलना जरूरी है, लेना जरूरी है, अगर तो फिर मदर्स डे पे ही ले लें 9054502828, अदरवाइज ये $1500 से कम नहीं मिलेगा।
9: क्या बात,
7: आपने सिर्फ कॉल करके नाम एंड नंबर दे के अपना टीवी होल्ड करवाना है। डिलीवरी डेट आप मई जून जुलाई की कोई भी रख सकते हैं। 55 इंच 499 में, 65 इंच 699 में, और 75 इंच 799 में मिलेगा आपको ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 9054502828, जहां आपको सैमसंग लोएस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है मदर्स डे पे स्पेशल बिग स्क्रीन टीवीज में, वहां सोनी ब्रेविया मॉडल, क्योंकि सोनी ने जो लॉन्च किए हैं सोनी ब्रेविया 2, सोनी ब्रेविया 3 और सोनी ब्रेविया 5, द हाई एंड सोनी ब्रेविया 5 75 इंच $3000 वाला, बल्कि सेल प्राइस पे 2799 का भी हमने बेचा जी, लेकिन मदर्स डे पे ओनली 1999, $800 आप सोनी ब्रेविया 5 पे सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहां आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है आपको, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 9054502828, 905-450-2828 जी।
9: सुल्तान जी, जहां पर टीवी सेक्शन में मदर्स डे की मोस्ट अमेजिंग डील्स का ऐलान आपने कर दिया है, मैं चाहूंगा कि अप्लायंस लॉन्ड्री में भी मदर्स डे की सबसे बेस्ट डील्स आप जरूर दें, क्योंकि मदर्स डे वो मौका होता है जहां पर हम कुछ ना कुछ अपने मम्मास के लिए करना चाहते हैं स्पेशल, और ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर क्या स्पेशल है वो बताइए।
7: बिल्कुल जी, मदर्स डे स्पेशल पे किचन अप्लायंसेस में ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट हम लेके दे रहे हैं जी अपने कस्टमर्स को, जो भी कस्टमर बिल्ट इन किचन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मंथ स्टार्ट हुआ है जी, और मई मंथ में अगर आपको मदर्स डे स्पेशल पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा तो ये हमारी इंडस्ट्री में, अप्लायंसेस इंडस्ट्री में ह्यूज डिस्काउंट है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 15 या 20 या मैक्सिमम 25% होता है, 40% का डिस्काउंट मदर्स डे स्पेशल पे लेके दे रहे हैं हम अपनी कस्टमर्स को, जिसमें बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवॉशर, और ये बॉश का ब्रांड है जी, बॉश जो कि जर्मन ब्रांड है, पूरे का पूरा बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज, वो भी आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ, ये बॉश का बिल्ट इन किचन मदर्स डे स्पेशल पे आपको $16,000 वाला सिर्फ 9,900 में मिलेगा, मोर देन $6,100 की आप सेविंग करेंगे, 6 मंथ में आप पे करेंगे। अगर आप अपने किचन को एक नई लुक देना चाहते हैं, हाई एंड प्रीमियम ब्रांड खरीदना चाहते हैं, तो जरूर मदर्स डे पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस आपको 40% डिस्काउंट लेके आपकी बिग सेविंग्स करेगा, और ये 40% डिस्काउंट के बाद जो भी अमाउंट बनेगी आपने 6 मंथ में पे करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। सिर्फ आपको इसके लिए विजिट करना है, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 7 days a week स्टोर खुलता है जी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। हमारे लॉन्ड्री सेक्शन में भी टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर आपको मिल रहा है $1600-1700 वाला, मदर्स डे स्पेशल पे ओनली 1199, सिर्फ 1199 का पेयर मिलेगा, वॉशर एंड ड्रायर दोनों। ये टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है, लार्ज कैपेसिटी टब स्टेनलेस स्टील में, आपको 1199 का पेयर दिया जा रहा है जो आप 6 मंथ में पे करेंगे, फ्री होम डिलीवरी होगी। इसी तरह सिंगल पीस आपको अगर फ्रिज चाहिए तो आपको बॉश का फ्रेंच डोर फ्रिज है काउंटर डेप विद आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ, $3,500 वाला, $1,000 डिस्काउंट के साथ 2499 में बॉश फ्रिज ले सकते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से। स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए तो हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स में स्पेशल ऑफर किया जा रहा है। सैमसंग ने बहुत ही शानदार एयर फ्रायर एंड कन्वेक्शन ओवन के साथ स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1,300-1400 वाला मदर्स डे स्पेशल पे 899 का लगाया है जी। टॉल टब की डिशवॉशर आपको $1,000 वाली 50% डिस्काउंट आधी प्राइस पे स्टेनलेस स्टील की 499 की मिलेगी। तो हमारे ऐसे बहन भाई जो रियल्टर हैं रियल स्टेट के साथ, अगर उन्होंने भी अपने किसी क्लाइंट का कोई अप्लायंसेस रिप्लेस करवाना है तो ये बेस्ट टाइम है कि मदर्स डे स्पेशल प्रमोशन का एडवांटेज आपको मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी और आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है जी, bramptonappliances.com, हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं 9054502828, 9054502828। और एक बात याद रखें जी, जहां अप्लायंसेस में आपको सेविंग्स हो रही हैं, लॉन्ड्री में वॉशर एंड ड्रायर पे सेविंग हो रही है, वहां बिग स्क्रीन टीवी 85 इंच सिर्फ 999 में और बिग स्क्रीन टीवी 98 इंच $3,500 वाला सिर्फ 1999 में मिलेगा, जो आप 6 मंथ में पे करेंगे। सैमसंग का 98 इंच 1999 में मदर्स डे स्पेशल प्रमोशन पे जी, 9054502828, 9054502828 जी।
9: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
9: जी। 9054502828।

0: anyone at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Seerat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
2: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
3: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley। घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल। Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086। Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं। राज जी से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और आपकी कुछ रिक्वेस्ट 2 बजे से पहले वी विल मेक श्योर वी प्ले देम एज वेल। राज जी आपका स्वागत है।
4: सनी जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
1: जी। गुड आफ्टरनून
4: जी। हमारी कम्युनिटी में एक तो हम बहुत जबरदस्त क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स या मैथमेटिक्स के स्किल्स के साथ बड़े होते हैं, तो लोग ज्यादातर कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं करते और हिसाब अपने दिमाग में ही लगा लेते हैं। इसलिए हम प्राइस कॉन्शियस हैं नंबर वन, और नंबर टू हमारी फैमिलीज जो हैं वो आम ज्यादातर नॉर्थ अमेरिकन फैमिलीज से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जिसमें 2 generations या 3 generations अंडर 1 roof रहते हैं
1: जी।
4: इसी को ध्यान में रखते हुए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बोथ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लो 400s, HST सेविंग्स अप्लाइड है अप फ्रंट, 3-story के टाउन होम्स फ्रॉम 1252 स्क्वायर फीट अप टू 1700 स्क्वायर फीट, 2-car पार्किंग के साथ 3-story के ये टाउन होम्स हैं, 3 minutes to Highway 403, located by Rest Acres और Grand River Road की location, सिर्फ और सिर्फ ये 10 minutes हैं to Brantford और 25 minutes to Hamilton, 45 minutes to Kitchener, बहुत ही जबरदस्त location। अगर Brampton की भी बात करें, यहाँ से about an hour away है, Mississauga से about 50 minutes, so location बहुत जबरदस्त है और डेवलप हो रही है ये कम्युनिटी पेरिस की। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इसको अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इस ग्रैंड ओपनिंग का फायदा ले लें और हमें कॉन्टैक्ट कर लें। लो 400 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम नजर करें वुड स्टॉक की तरफ, तो वहां पर भी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो भाई बहन डिटैच होम में भी इंटरेस्टेड है, उनको बता दूं फ्री होल्ड टाउन यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 500, डिटैच होम स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 700। इस प्रोजेक्ट में भी HST रिबेट फॉर ऑल न्यू होम बायर्स अप टू 130,000। बहुत जबरदस्त मॉडल्स बने हुए हैं, अगर आप विजिट भी करना चाहते हैं, हम आपको डिजाइनर फिनिश्ड मॉडल होम को एक्सप्लोर करा सकते हैं। 3 different मॉडल्स बने हुए हैं, ऑफ कोर्स बहुत ही रेप्यूटेड बिल्डर है और लोकेशन है वुडस्टॉक की और प्राइस अमेजिंग अगेन, 500 से फ्री होल्ड टाउन्स और 700 से डिटैच होम। हमें कॉन्टैक्ट कर लें, एक ही नंबर है और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, इसके जरिए हम जब हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को रीच आउट करते हैं और इनको सर्व करते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज फॉर अस. सनी जी बहुत बहुत शुक्रिया. विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून.
1: एक्सलेंट. बहुत बहुत शुक्रिया राज जी. रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के बहुत ही नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी. 6478661086 सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं. एंड 6478661086 इज द नंबर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
4: थैंक यू सनी जी.
1: जी एंड सुदेश भोसले साहब की आवाज में जुम्मा चुम्बा दे दे ये गीत था बच्चन साहब का फ्रॉम द मूवी हम जो कि 1991 में रिलीज हुई थी. बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और ये गीत आज भी पार्टीज में काफी ज्यादा चलता है इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स 35 समथिंग ऑड ईयर्स. एंड एक टू बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट फॉर रेंट है न्यू मार्केट में. 2 9-foot की सीलिंग सेपरेट एंट्रेंस सेपरेट लॉन्ड्री वेरी क्लीन ओनली 2 years ओल्ड अवेलेबल फ्रॉम 1 June वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम अपर कैनेडा मॉल एंड बस टर्मिनल. आज ही के आज कॉल कर लीजिए 416-399-1607. लीसास कॉस्मेटिक स्प्रिंग वेयरहाउस सेल की तरफ से ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस की तरफ से ये प्यारा सा गीत. एंजॉय करें. आई विल बी बैक.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
2: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
3: Jag mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Masiki Rail Gari, aayi Sean Express, Masiki Rail Gari.
4: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
5: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
4: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean मीडिया.
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आपका वेलकम करती हूं Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. हमारा और आपका साथ बरकरार रहेगा पूरे 4 बजे तक बहुत सारे एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट के साथ. और आज है वेंसडे, May 3rd. आपका हम करते हैं स्वागत इस नए दिन में बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ और बहुत सारे जो है गानों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ. आप दे सकते हैं एक बार फिर से मेरा साथ बाय कॉलिंग अस ऑन द स्टूडियो नंबर 416-593-0055 और आ पर्सनल नंबर विच इज 416-569-7812 416-569-7812. कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ अच्छा लगता है जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है. जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होता तो सब कुछ अच्छा लगते हुए अच्छा नहीं लगता, राइट? ऐसा ही होता है. तो दोस्तों, आज का दिन जो है एक एहसास के साथ शुरू करते हैं. और आज का दिन आपको जल्दी नहीं बैलेंस सिखाने आया है, थोड़ा खुद के साथ रहने का, थोड़ा मुस्कुराने का और थोड़ा लाइफ को अप्रिशिएट करने का. तो दोस्तों, एक पल जरा रुक जाइए, डीप ब्रेथ लीजिए और खुद को कहिए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे. आज मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ या अदा करती हूँ. कहते हैं कि अच्छे दिन अचानक नहीं आते, उन्हें अच्छी सोच से अच्छा बनाया जाता है. तो अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हमारा दिन बहुत बहुत बहुत मज़ेदार बन सकता है. तो वेल, आज तो बरसात भरा दिन है दोस्तों, तो बरसात भरे दिन में जब तक गाना ना हो एक लड़की भीगी भागी से, तो क्या मजा आएगा, राइट? तो चलिए, आपकी फरमाइश पर कुछ अलग तरीके से शुरुआत करते हैं आज के शो की. फिलहाल 5 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर का तापमान, लाइट रेन है, क्लाउडी स्काई है और आज का हाइएस्ट टेम्परेचर 8 डिग्रीज एंड लोएस्ट 4 डिग्रीज जाने की है संभावना. गुड आफ्टरनून.

0: एक लड़की भीगी भागी सी, एक लड़का भीगा भागा सा, मज़ेदार गाना आपने एंजॉय किया। और इस बरसात के मौसम में ऐसे गाने सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई इस वक्त तो क्या बताएं मौसम का हाल चाल, कि अब वापस से सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, सिंगल डिजिट्स पर फिर आ गए हैं। तो डबल से सिंगल, सिंगल से डबल, ये हमारी ज़िंदगी ऐसे ही रहती है। खुशियाँ भी कभी डबल होती हैं, खुशियाँ भी कभी सिंगल होती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर एज वेल। तो चलिए आज के वेदर को देखने का नजरिया पॉजिटिव रखते हैं। वेदर को ऐसा ना सोचें कि हाय फिर सर्दी पड़ गई, ये सोचिए कि वाह सच ए ब्यूटीफुल मौसम आउटसाइड, कितनी अच्छी बरसात हो रही है। और इस बरसात से जुड़ी कुछ अच्छी अच्छी यादें अपने जहन में रखिए, या इस मोमेंट को इतना अच्छा बना दीजिए कि आपके जहन में इतनी प्यारी यादें हो जाएं कि आगे से जब बरसात पड़े आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। कितनी अच्छी बात है, ऐसे ही कोशिश करते हैं कि आपके चेहरों पर स्माइल आए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अब, और इसके साथ साथ नंबर भी बता दें, अगर आज कोई भी सेलिब्रेट कर रहा है अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, या आज किसी आपके दोस्त के लिए स्पेशल डे है आज का, उस तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहें, डू गिव अस अ कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर 416-593-0055, या आप सीधे मैसेज के जरिए भी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं 416-569-7812, 416-569-7812। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बहुत प्यारी एक रीमिक्स आप तक पहुंचाएंगे जिसमें 90s का फील भी होगा और इसके साथ साथ नए दौर का भी फील होगा। अमेजिंग ट्रैक्स हैं आपके लिए, बिल्कुल रेडी हैं। जस्ट इन फ्यू मोमेंट्स विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
1: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
1: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुंचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
5: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर, अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Sean Express, making you bilkul refresh. This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant. वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3, और अब वक्त है हमारे सुपर मीनिंगफुल और रिलेटेबल सेगमेंट का, यानी आज का दिन। आज का दिन क्या कहता है, क्यों आप आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं और आज का दिन क्यों खुशियां लेकर आता है आपकी जिंदगी में, ये आपको बता दें। 6 मई है आज की तारीख, और किस किस बात के लिए आज का दिन फेमस है। आज का दिन है हेल्थ, सेल्फ केयर और अप्रिसिएशन से भरा हुआ। कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले इंटरनेशनल नो डाइट डे, यानी आज कैलोरी काउंटिंग आप छोड़ दीजिए जस्ट फॉर टुडे, और गिल्ट छोड़िए, और जो मन में आता है वो खाइए। आपको छोले भटूरे खाने वो खा लीजिए, पानी पूरी खा लीजिए, यम्मी, और चाट खा लीजिए, जो मिठाई खानी है गुलाब जामुन, whatever it is, just go and eat today, because today is International No Diet Day. इसके अलावा National Nurses Day भी है आज। Nurses वो होती हैं जो हर patient के साथ दिन और रात खड़ी रहती हैं, तो उनकी केयर, डेडिकेशन और कंपैशन को सैल्यूट करते हैं हम। और जितने भी नर्सेज हैं, मेल एंड फीमेल नर्सेज हैं, वो रियल एंजल्स के तौर पर काम करते हैं द हॉस्पिटल। डॉक्टर्स तो बहुत बाद में आते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो फासला तय करते हैं हम नर्सेज के साथ जब भी हमारी तबीयत खराब होती है। तो नर्सेज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। इसके अलावा आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डे है, बहुत ही मीनिंगफुल डे है, कि नेशनल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स स्क्रीनिंग डे। और ये दिन हमें रिमाइंड करता है कि मेंटल हेल्थ को हमें इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बिगड़ी हुई है तो उसको चुस्त और दुरुस्त कर लीजिए अपनों के साथ के साथ। सो इट्स ओके टू टॉक टू समवन दैट यू नो, दैट यू एब्सोल्युटली ट्रस्ट, दैट यू एब्सोल्युटली लव और केयर अबाउट। तो आज एंग्जाइटी डिसऑर्डर स्क्रीनिंग डे है, अपनों के साथ बैठिए, अपने आप को स्क्रीन कीजिए कि कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर गैप्स हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में फिल करने हैं। इसके अलावा नेशनल स्किल्स ट्रेड डे भी है। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, टेक्नीशियंस, जो लोग हमारी ज़िंदगी को स्मूथ बनाते हैं, उन लोगों का दिन है। उनकी मेहनत को सैल्यूट, उनकी मेहनत को सलाम। तो अगर आप में भी इनमें से कोई लोग हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आप में से कोई स्किल ट्रेड वाले हमारा शो सुन रहे हैं, कोई नर्सेज हमारा शो सुन रही हैं, या अगर आप ओपनली बताना चाहते हैं कि आपने अपने एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया, ज़रूर हमारे साथ डिस्कस कीजिए ऑन एयर। शायद आपकी स्टोरी से मिलियंस ऑफ लोगों को फ़ायदा पहुंच जाए, चाहे आपकी स्टोरी, चाहे आपके घर में किसी और की स्टोरी, चाहे आपने किसी अपने दोस्त की मदद की हो एंग्जाइटी से लड़ने के लिए, डिप्रेशन से लड़ने के लिए, मेंटल हेल्थ से लड़ने के लिए, और उसको वहाँ से बाहर निकाल कर आप लाए हों। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपने अप्लाई की हैं, टॉक टू अस टुडे, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू ऑन शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, दैट्स 416-593-0055। अब भाई, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको दो गाने सुनाने का, और वो दो गाने हैं, सेम गाना है बट दो अलग अलग ढंग से आप तक पहुंचाया जा रहा है उसको नई थाली में परोसा गया है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 90s का वो दौर जब म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं महसूस किया जाता था और स्क्रीन पर आती थी ऐसी अदाएं जो हर दिल को कर देती थी बेकरार। शहर की गलियों में वो जब मुस्कुराई, शहर की गलियों में जब वो मुस्कुराई, हर नजर बस उसी पर ठहर गई। ना नाम पता ना कोई रिश्ता, फिर भी दिल कह बैठा हाय ये लड़की मेरी हो गई। शहर की लड़की, ये गाना आपकी नजर करते हैं और अल्टीमेट डांस एंथम था उस वक्त का, फिल्म का नाम है रक्षक। ये गाना आपकी नजर करते हैं, उसके बाद आपको सुनाएंगे इसी गाने का न्यू वर्जन फ्रॉम द मूवी खानदानी शफाखाना। शहर की लड़की, ओल्ड और गोल्ड साथ साथ मिलेगा और फिर देखे क्या मैजिक क्रिएट होता है। मस्ती की रेलगाड़ी पर जरूर आप हमसे अपने दिल की बात कर सकते हैं। 416-593-0055। गुड आफ्टरनून।

0: कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
2: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
3: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट डे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
2: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
3: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810, मिड्डा फर्नीचर।
0: वेलकम बैक दोस्तों, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन सीएमआर एफएम 101.3। मैं हूं शालिनी और हमारे साथ जाने जा रहे हैं पवन मिड्डा जी फ्रॉम मिड्डा फर्नीचर गैलरी। और आज हवा में कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आज आ चुका है। और पवन जी से करते हैं बातचीत। सबसे पहले चलिए लेट मी टेक द इनिशिएटिव और उन्हें मैं कंग्रेचुलेट कर देती हूँ इन एडवांस। पवन जी, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी।
4: थैंक यू वेरी मच जी, और मस्ती की रेलगाड़ी सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरा प्रणाम और बिल्कुल आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज जो दिन है वो कहते ना, जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। तो वैसे तो आई बिकम ए ग्रैंड डैड नाउ, मैं हमारी 3 महीने की सिया, हमारी हमारे घर देवी लक्ष्मी आई है। और आप मेरी छोटी बहन है या जो मेरी छोटी बहनें सुन रही हैं, तो आज सभी को, क्योंकि जो छोटी बहनें होती हैं या जो बच्चियां हैं या जैसे मैंने अपने सिया का नाम लिया, तो आज देवियों को नमन करते हुए, मतलब कहते हैं ना देवियों के तो चरण छू के भी आशीर्वाद लेना, क्योंकि मतलब हमारे कल्चर में हमने मतलब अपने माना कि देवियां हैं आप, और देवी तो दुर्गा भी होती है, देवी सरस्वती भी है, देवी लक्ष्मी भी है, तो आप आशीर्वाद चाहिए। तो आज आशीर्वाद लेते हुए मिड्डा फर्नीचर अनाउंस कर रहा है कि 5वीं लोकेशन जो है वो लंदन ओंटेरियो में मान प्राप्त हो रहा है, मान प्राप्त हो रहा है ब्रांडिंग का। कम से कम जो बहन भाई लंदन जानते हैं, वंडरलैंड रोड साउथ है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, पूरे 2 किलोमीटर का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है जहाँ पे हर ब्रांड नेम फर्नीचर है। तो जो मान प्राप्त हो रहा है कि मिड्डा फर्नीचर भी अपना ब्रांड उस उन ब्रांड के साथ, उन ब्रांड के साथ मतलब वैसे तो हमारा लेफ्ट साइड में होम सेंस और राइट साइड में विनर है जहां पे हमें लोकेशन मिली है। तो जो सुनने वाले हमारे हैं जो लंदन तक सुन रहे हैं या इस एरिए में सुन रहे हैं, क्योंकि शालिनी की आवाज तो बहुत दूर दूर तक जाती है, लेकिन जो बहन भाई ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, स्कारब्रो में, कैम्ब्रिज में जो हमें सुनने जा रहे हैं, और उनका मैं बहनों का आशीर्वाद मांग रहा हूँ उनका नमन करके, और बड़े भाइयों को भी, क्योंकि बड़े भाई भी आपके जो बड़े भाई होते हैं वो उनका भी सिर पे हाथ रहता है, और छोटे भाइयों का भी स्नेह चाहूंगा और छोटी देवियों को तो नमन कर रहा हूँ। आज का मोटिव एडवर्टीज करना नहीं है, आज का मोटिव है आप बहन भाइयों से आशीर्वाद लेना कि ये सब कुछ संभव हो पाया जब आपका प्यार मिला, जब आपका साथ मिला। मे बी आई गेट इमोशनल। आपने बिजनेस भी दिया और कहते हैं ना तन मन धन से साथ किया, तो ये साथ हम लंदन में भी चाहेंगे, क्योंकि अगर आप इधर लंदन रहते हैं तो सोने पे सुहागा इस एरिया में, नहीं तो आपका कोई दोस्त रहता होगा, कोई यार दोस्त बनती रहता होगा, कोई कुलीक रहता होगा, तो उनको भी आपका रेफरेंस भी चाहिए होगा, और आपका ये प्यार बना रहे, आपका हमारा ये साथ बना रहे, हमारे रिश्तों की ये जो डोरी है और लंबी होती रहे, ये रिश्तों की चेन और स्ट्रांग होती रहे। और मेरी बहन का तो ये आपको भी ये श्रेय जाता है, शालिनी को भी जाता है और शिवानी को भी जाता है कि आपके माध्यम से, आपके माध्यम से मेरी मेरा ये परिवार बढ़ा, मैं यही कहूंगा, मेरी बहनें और मेरे भाइयों का प्यार मिला। तो क्रेडिट गोज टू यू एज वेल, नॉट ओनली एज ए होस्ट, एज ए यंगर सिस्टर, आपने हमेशा ही हमें हर खुशी में, भगवान दुख तो किसी के ना ही लाए, लेकिन आपने हर खुशी में हमारा साथ दिया है, आगे भी हमारा ये साथ बना रहेगा। दोबारा से आपको बधाइयां, हम आप सुनने वालों को कांग्रेचुलेशन, मिड्डा फर्नीचर को नहीं, आपको, यू डिजर्व दैट। तो थैंक यू वेरी मच। और मिड्डा फर्नीचर अब आज से अनाउंस करेंगे कि आए तो सही, अजमाए तो सही, अपना बनाए तो सही। वी आर सर्विंग फ्रॉम 5 लोकेशंस, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज एंड लंदन। जी हाँ, मैं कर दूं यहाँ पे कि अभी ग्रैंड ओपनिंग तो मैंने सिर्फ कहा था कि आज एड्रेस बता देंगे, तो कि हमने आज आके अपने सेटअप शुरू करा, तो होपफुली इन टू वीक्स ग्रैंड ओपनिंग भी भर करते हैं ना, ढोल धमाके वाली ग्रैंड ओपनिंग भी करेंगे, तो वहाँ भी आपका प्यार चाहेंगे, दूर चाहेंगे। और सेम फॉर्मेट ग्रैंड ओपनिंग की डील्स चारों लोकेशन पे लगाएंगे। हिंट देने जा रहा हूँ, मैट्रेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रांड नेम, हाई एंड में बात कर रहा हूँ। एक साल तक मैट्रेस आप घर स्लीप ट्राई कर सकते हैं। एक साल तक मैट्रेस अगर आपको लगा कि पसंद नहीं है, मिड्डा फर्नीचर बिना कॉस्ट के वापस ले लेगा। तो वो चीजें हम करते हैं आपकी, मतलब अपने, तो ये है आज का एक, कहते हैं ना, हिंट भी दे दिया कि करने हम क्या जा रहे हैं, तो आपका प्यार मिलता रहेगा। तो आपके लिए ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता होगा, पहले 10% किसी प्राइस को बीट करते थे, अब 12% से बीट करेंगे। माफी मांगते हैं, किसी बहन भाई से कंपटीशन नहीं, जो वॉल्यूम लंदन का क्रिएट होगा उससे हमारा 2% डिस्काउंट और बढ़ जाएगा, तो फिर आपको 10 से नहीं 12% से तो प्राइस बीट करके देंगे। मिड्डा फर्नीचर आपका स्टोर मिड्डा फर्नीचर, 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: थैंक्स अ लॉट पवन जी, और मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एंड द होल टीम ऑफ मिड्डा फर्नीचर गैलरी, योर फैमिली, आवर फैमिली। और आप लोग जरूर जाएं, पांचों लोकेशन से आपको सर्व करते हैं नाउ, ऑल्सो इन लंदन, बिफोर दैट कैम्ब्रिज, स्कारब्रो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इस सब जगह से मिड्डा फर्नीचर हर तरफ आपको नजर आएगा। middafurniture.com, 416-901-2810, that's 416-901-2810। थैंक यू पवन जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
4: थैंक यू जी।
0: दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी 4 बजे तक ऐसे ही चलेगी CMRFM 101.3 पर। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो, 416-569-7812, 416-569-7812। आज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे है और मैं चाहती हूं कि आप लोग आकर बताएं कि किस तरह से इस परेशानी से बाहर निकलने में आपने अपनी या किसी अपने की मदद की है। हमारे साथ शेयर करें, 4 बजे तक का वक्त रहेगा। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, दैट्स 416-593-0055। छोटा सा टाइनी सा मैसेज लेंगे, उसके बाद चलते हैं आज की ताजा हेडलाइंस की तरफ। Stay tuned.
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157, that's 416-570-0157.

0: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीज फायर को लेकर सहमति दे सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को आशंका कि लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक ईंट की फोटो पोस्ट की। ये ईंट पाकिस्तान के एबटाबाद में उस घर से ली गई जहां ओसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ छिपकर रह रहा था। उधर भारत में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर आग लग गई। सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दी धमकी और साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पिरिट को लेकर अटकलों पर मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट।
1: और दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की ताजा लोकल हेडलाइंस की तरफ। आज पूरे कनाडा में अलर्ट रेडी इमरजेंसी सिस्टम टेस्ट किया जाएगा। ऑन्टेरियो में भी टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल डिवाइसेस पर ये अलर्ट बजेगा। ये सिस्टम साल में दो बार टेस्ट होता है ताकि इमरजेंसी प्रिपेयरनेस बनी रहे। उधर होंडा ने कनाडा में प्रपोज्ड 15 बिलियन का ईवी प्लांट प्रोजेक्ट फिलहाल रोक दिया है। स्लो यूएस डिमांड और टैरिफ प्रेशर के चलते कंपनी अब हाइब्रिड पर फोकस कर रही है। प्लांट 2028 तक शुरू होना था। GTA और क्वेबेक में बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क बस्ट किया गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की 18 महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 3 टोरंटो एरिया से हैं। सीजर में 153 किलोग्राम्स ऑफ कोकीन, 10 ग्राम्स ऑफ हेरोइन, 1.6 मिलियन वर्थ ऑफ कैश और फायरआर्म भी बरामद हुए हैं। टोरंटो की एक क्लिनिक है जिसका नाम है कैंसर फेटीग सर्विसेज। वो कैंसर सर्वाइवर्स के लिए नई उम्मीद बन रही है। एक्सरसाइज बेस्ड रिकवरी प्रोग्राम्स के जरिए पेशेंट्स को फेटीग से लड़ने में मदद मिल रही है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ओवरऑल वेलनेस के लिए बड़ा इफेक्टिव है। टोरंटो में फीफा फैन फेस्टिवल के फ्री टिकट्स कुछ ही घंटों में हो गए हैं सोल्ड आउट। सुबह 10 बजे बुकिंग शुरू हुई और दोपहर तक सारे फ्री पासेस खत्म। फेस्टिवल फोर्ट यॉर्क और द बेंटवे पर जून 11 से जुलाई 19 तक चलेगा। 46 लाइव मैचेस और 20 से ज्यादा कॉन्सर्ट्स भी होंगे इस दौरान। उधर टोरंटो सिटी अब समर सीजन की तैयारी में जुट चुकी है। मेयर ओलिविया चाओ ने अनाउंस किया है कि आने वाले हफ्तों में 1000 से ज्यादा वाटर इमेनिटीज जैसे पार्क्स, वॉशरूम्स, फाउंटेन्स और स्प्लैश पैड्स, साथ ही पूल्स को रीओपन किया जाएगा। नई हीट रिलीफ स्ट्रेटजी के तहत बहुत गर्म दिनों में पूल खुले रखने के लिए भी गाइडलाइंस लागू की गई हैं। और अब नजर डालते हैं वेदर अपडेट पर, जो रहेगा कूल एंड रेनी पैटर्न के साथ। आज मौसम रहेगा कूल एंड क्लाउडी, हाई करीबन 12 डिग्रीज और आने वाले दिनों में भी बारिश के चांसेस हैं। टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री के आसपास और आज का ओवरनाइट लो 4 डिग्रीज जाने की है संभावना। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
0: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 Kanda Optical the name you can trust
2: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023 इट्स 437-829-6023 मास्टर धनिक महाराज
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार, पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई, वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: Welcome to Madras Restaurant. Swad Swag और South का तड़का। Friday, Saturday और Sunday enjoy कीजिए authentic South Indian unlimited थाली। Starting at सिर्फ 20-26. 20 plus South Indian delicacies। गर्मा गर्म और unlimited। पराठा, इडली वड़ा, spicy aromatic curries and more। Unlimited servings, amazing variety और price जो pocket को भी खुश करे। Don't forget to try their signature dosa. Biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश।

हर 200 गानों की स्वीट डिश आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। कोई मिडलमैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। Beautiful looks, extraordinary quality, superior style, security, durability, energy efficiency, सब कुछ एक साथ, और जो price ऐसी है जो आपकी pocket को suit करे। इसके अलावा अगर आप business खोलना चाहते हैं तो franchise options भी available हैं। आप जल्द से जल्द call करें यश विंडोज एंड डोर्स को 416-732-3600, 416-732-3600। और इसके साथ साथ दोस्तों, देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं और लेटेस्ट डील्स हैं सुपर फैंटास्टिक। और डील्स कुछ इस तरह से हैं कि टोरंटो से दिल्ली या मुंबई, दोनों जगह में से कहीं भी जा सकते हैं मई के महीने में वन वे $820 में। टोरंटो से अहमदाबाद राउंड ट्रिप लगा हुआ है मिड मई से जुलाई तक $1,640 दो बैग्स के साथ। दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है $1,590 में। टोरंटो से बेंगलुरु एक बड़ी स्पेशल प्राइस है, सितंबर से अक्टूबर तक राउंड ट्रिप $1,340 दो बैग्स के साथ। और आप दोनों लोकेशन में से कहीं भी जा सकते हैं ब्रैम्पटन एंड इटोबिको। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। और दोस्तों चलते हैं अब आपको लेकर बॉलीवुड की तरफ और एक बहुत प्यारा सा गाना आपकी नज़र करते हैं। वो गाने की बारी है जो 90s की मासूम मोहब्बत, पहाड़ों की ठंडी हवाओं और पहले धड़कन की याद दिलाता है। जी दोस्तों, ये वो गाना है जो 90s की मासूम मोहब्बत, पहाड़ों की ठंडी हवाओं और पहली धड़कन की याद दिलाता है। फिल्म बेताब से गीत जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। सनी देओल और अमृता सिंह की फ्रेश केमिस्ट्री ने इस गाने को यूथ रोमांस का एवरग्रीन एंथम बना दिया। कहते हैं कि जवानी की दहलीज पर जब प्यार मुस्कराता है, हर ख्वाब में बस कोई अपना सा नजर आता है। दिल कहता है बस यही पल ठहर जाएं, जब हम जवां होंगे प्यार और भी गहरा हो जाए। ये गाना सिर्फ एक रोमांटिक ट्रैक नहीं था बल्कि 80s के दौर की लव स्टोरी का सिंबल बन गया। बेताब से सनी देओल और अमृता सिंह दोनों ने अपनी स्ट्रॉन्ग डेब्यू बनाई। पहाड़ी लोकेशंस, इनोसेंस, यूथफुल एनर्जी ने इस गाने को उस वक्त के यंगस्टर्स के दिलों के बहुत करीब पहुंचा दिया। तो चलिए दोस्तों, यही गाना हम इंजॉय करते हैं। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून।

0: अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: क्या आप अपने घर में लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं? तो भरोसा करें KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर। सेपरेट साइड एंट्रेंस, मॉडर्न वॉशरूम, प्रीमियम फ्लोरिंग, कस्टम किचन्स, फुल होम रेनोवेशन, पेंटिंग और विंडो अपग्रेड्स, हर काम प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग, कॉन्क्रीट इंटरलॉकिंग और बहुत कुछ एक ही ट्रस्टेड नाम। घर हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट, KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप आपकी पहली पसंद। कॉल मन्नत कंकवाल 647-966-5681,
2: 647-966-5681। शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और अब जो है आपको लेकर चलते हैं एक बेहद खास सेगमेंट की तरफ, जो आपके लुक्स को इम्प्रूव कर सकता है, आपको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है। मैं कोई स्किन केयर की बात नहीं कर रही, मैं कोई मेकअप प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही, मैं एक नेचुरल चीज़ की बात कर रही हूँ, आपके हेयर। अगर आपके हेयर अच्छे होते हैं तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। व्हेनेवर यू गो समवेयर, नो मैटर हाउ ब्यूटिफुली यू आर ड्रेस्ड अप, अगर आपका हेयर स्टाइल सही नहीं है तो सारा पानी फिर जाता है पूरे तैयार होने पर। तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। और एक बहुत ही अच्छा फ्रेश प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्रेश हेयर टॉनिक, एंड व्हाट अ वंडरफुल नेम। और 20 साल से ज़्यादा कनाडा में लोगों का टेस्टेड एंड ट्राइड ये सोल्यूशन है फ्रेश हेयर टॉनिक। और हमारे साथ जफर मलिक जी जुड़ने जा रहे हैं फ्रेश हेयर टॉनिक के बारे में बहुत सारी जानकारी लेकर। और जफर जी, आपका वेलकम है, कैसे हैं आप?
4: जी वेलकम एवरीबॉडी, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
4: जी जी, हुक्म करें, क्या हो गया जी बालों को? क्या हो गया?
1: बस अब क्या बताएं जफर जी, आजकल जिसको देखो अब उसकी परेशानी है। और सबसे बड़ी बात आजकल ये है कि उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आजकल बहुत ही यंगस्टर्स जो है ना, उनमें नजर आ रहा है बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना। तो क्या आपको लगता है द रीजन इज द स्ट्रेस बिहाइंड इट?
4: नॉट ओनली द स्ट्रेस, स्ट्रेस तो एक वजह है ना, एक कॉज है। बहुत सारी कॉजेज और हैं जिसकी वजह से बाल सूख जाते हैं तो पोर में नहीं रुकते। जब ड्राइनेस से बाल सूखता है तो वो फिर पोर में नहीं रुकता, जब आप ब्रश करते हैं, शैम्पू करते हैं तो निकल जाते हैं।
1: अच्छा।
4: यानी नौजवान बच्चे, स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेज में जाने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, वो भी सख्त परेशान है। लेडीज परेशान है, बड़े बूढ़े तो परेशान होंगे ही
1: जी।
4: हमें इस चीज का पता था कि ये कैसी प्रॉब्लम है कि जो कम से कम 70% लोग इसको फेस कर रहे हैं, जो बालों से बड़े तंग हैं, उनके चेहरे की हैयत ही बदल जाती है, उनकी पर्सनैलिटी अजीब हो जाती है। तो हमने जो ऑयल बनाया है ये आपके बालों को गिरने से रोकता ही नहीं, वापस उगाता भी है। 20 बरस से हम कनाडा में बनाते हैं, लोगों के घर पे फ्री शिपिंग भी देते हैं।
1: Wow.
4: लोगों को इलाज दे रहे हैं कि बाल झड़ने बंद हो जाते हैं 3 दिन में और वापस उगते नजर आते हैं 6-7 दिन में। पहले दिन की तस्वीर ले लें, पांच छह दिन के बाद भी तस्वीर ले लें, फर्क आपको मिल जाएगा जी।
1: क्या बात, अमेजिंग। और यहाँ पर आपका नंबर एक बार मैं बता दूं, बहुत आसान सा नंबर है दोस्तों, जफर मलिक जी से बात कर सकते हैं 6475215159। बहुत अच्छी आपने बात कही जफर जी की, यूजुअली हम प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है बालों को काले करने का, ये प्रोडक्ट है बालों को गिरने से रोकने का, ये है ऑयल डालने का, और ये है बालों को उगाने का। तो हमारे जो वॉशरूम्स होते हैं ना, उसमें तमाम चीजें रखी रहती हैं हेयर केयर की, और दिस इज परफेक्ट, एक सिंपल सॉल्यूशन डज एवरीथिंग फॉर अस।
4: ये इतने काम करता है कि अगर आपके सर में सोराइसिस भी हो ना, एलोपेशिया अच्छा। भी हो, तो ये ऑयल आपको ठीक करता है।
1: ओ वाओ,
4: किसी अच्छा। किस्म की कोई प्रॉब्लम स्किन के बारे में हो तो ये ऑयल उसको ठीक करता है, ये आपके बालों को वापस उगाता है, गिरने से रोकना तो पहले 3 दिन में पता चल जाता है,

0: सुखते नजर आते हैं, एक नॉर्मल आदमी का इसमें इलाज हो जाता है। और बोलिए जी।
1: वेरी नाइस। तो इसके लिए जफर जी कितना वक्त लगता है, वो जैसे शिपिंग कराएं ऑल ओवर कनाडा, आप कहीं पर भी शिप कर सकते हैं, नो मैटर हाउ मेनी बॉटल्स देयर।
0: हम यूएसए में भी देते हैं, आप कनाडा में तो हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं ना।
1: ठीक है,
0: आप दुनिया में जहां मांगे हम आपको पहुंचा देते हैं। मेरा सामान nice. मेरा ऑयल ऑस्ट्रेलिया भी जाता है।
1: ओह वाओ, क्या बात है,
0: ऐसी कोई बात नहीं। जी
1: जी, तो ये भी सुना है जफर जी, उस दिन आपसे बात हो रही थी कि बड़े सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर इसको बनाया है, जैसे फार्मासिस्ट हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, क्वालिटी प्रोफेशनल्स हैं, और आपने ये सारा प्रोडक्ट जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर हेयर टॉनिक बनाया है, और वो भी कनाडा में आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, एम आई राइट?
0: जी जी जी जी, कैनेडियन प्रोडक्ट है, यही बनती है। अच्छा, तमाम लोग इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्टीज हमारे पास मौजूद है जो इसको बनाते हैं।
1: ओके वंडरफुल। तो यहाँ पर जफर जी आपका नंबर दे दूं और अपने लिसनर से कहें कि जल्द से जल्द इस नंबर को डायल करें। ऑल ओवर कनाडा फ्री शिपिंग है, फ्रेश हेयर टॉनिक 6475215159 6475215159। जफर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपसे फिर जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट,
0: ओके, गुड लक, टेक केयर, सो नाइस
1: जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और दोस्तों बस एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। शेफाली हमारे साथ जुड़ने लगी हैं जो इंडिया और इंटरनेशनल खबरें लेकर आप तक पहुंचाएंगे, और इन बिटवीन द न्यूज बुलेटिन हम विन लाइफ टाइम का भी रुख करेंगे, जहां पर बात करेंगे हम रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी के साथ, और आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है आपके लिए। सो अ लॉट मोर फॉर यू इन स्टोर अंटिल 4 p.m. हमारे साथ जुड़े रहें ऑन CMR FM 101.3। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812 416-569-7812। एंड दिस सेगमेंट इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय दे ओल्ड ट्रैवल। इनका एक बहुत ही स्पेशल लगा हुआ है रेट टोरंटो से बैंगलोर, आप जा सकते हैं सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,340 में दो बैग्स के साथ, दो लोकेशंस इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। नंबर्स आर 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। स्टे ट्यून्ड। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।
2: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।

0: परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं दोनों देश। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीज फायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता तैयार है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इस बातचीत के मुताबिक सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी। 30 दिनों तक दोनों देशों की विस्तृत बातचीत होगी। इसमें हॉर्मूज, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों में डील जैसे मुद्दे होंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद या फिर जिनेवा जैसे शहरों पर विचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को यह आशंका है कि लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है। अब इसे लेकर बांग्लादेश के मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी पुश बैक की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी को अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेला जाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक ईंट की फोटो पोस्ट की है। ये ईंट पाकिस्तान के एबटाबाद में उस घर से ली गई थी जहां ओसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ छिप कर रह रहा था। CIA ने बताया कि ऑपरेशन के बाद वहां से 13 ईंटें मिली थीं जिन पर अलग अलग अक्षर लिखे थे। इनमें से एक ईंट पर अब CIA के म्यूजियम में से रख दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घर करीब 2006 में बनाया गया था। इसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और तार लगे थे। घर में ना फोन था ना इंटरनेट। वहां रहने वाले लोग अपना कचरा बाहर देने के बजाय खुद जला देते थे ताकि किसी को शक ना हो। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, क्या आज आप तैयार हैं जीतने के लिए, और क्या आप कल तैयार होंगे जीतने के लिए, क्या आप तैयार होंगे परसों जीतने के लिए, क्या आप तैयार हैं रोजाना जीतने के लिए? और आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल, डू नॉट वरी, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है सिर्फ और सिर्फ विन लाइफ टाइम ने। किस तरह से ये ट्रेडिंग की प्रॉमिसिंग दुनिया में आप एंटर कर सकते हैं और रोजाना आप पैसा कमा सकते हैं। यू कैन हैव अ गुड लाइफस्टाइल विद द बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ मनी विद योर फैमिली। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर फ्रॉम विन लाइफ टाइम राफी जी, और उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से वो लोगों को ट्रेन करते हैं और कैसा फील करते हैं जब लोगों को वो खुश देखते हैं। तो राफी जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच। और जब आप पहली बार देखते हैं लोगों को वॉक इन करते हुए एक बड़ा मायूस सा चेहरा लेकर, और उसके बाद आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आप देखते हैं हंसता खिलखिलाता चेहरा कि वो लोग कंटेंटेड हैं अपनी लाइफ को लेकर, दे आर हैप्पी टू सी देमसेल्व्स हैप्पी, देयर फैमिली इज हैप्पी टू सी देम हैप्पी, तो कैसा लगता है आपको, कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है?
2: जी एब्सोल्युटली, देखें, हमने सबसे मुश्किल काम होता है अपना नॉलेज किसी के ब्रेन में डालना और उनको वही एग्जीक्यूट करवाना जो आप जानते हो, लेकिन एआई के पावर से और एआई के सॉफ्टवेयर से और जो हम पिछले 18 साल से मेहनत करते आए हैं, स्पेशली जो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने आज तक ट्रेडिंग का नाम नहीं सुना होता, वो आके ट्रेडिंग में कुछ परफॉर्म करके पे आउट्स लेते हैं, तो एज ए मेंटर, एज ए टीचर, वी फील वेरी प्राउड एंड वी फील के हमने उनको ऐसी स्किल अब लाइफ टाइम के लिए दे दी है वेयर दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर जॉब चली जाए, बिजनेस कोलैप्स हो जाए, हाउ विल आई अर्न, बिकॉज दिस इज लाइफ टाइम वर्क।
1: वंडरफुल। तो राफी जी, एक बात आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कई बार लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता ट्रेडिंग में, चाहे वो कहीं भी करते हैं, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो व्हाट आर दोज मिस्टेक्स दैट यूजुअली पीपल डू व्हेन इट कम्स डाउन टू ट्रेडिंग?
2: देखिए, ट्रेडिंग एक सबसे जो एवरीडे डे ट्रेड करता है उनके लिए ये रिकमेंडेशन है, प्लीज आप अकेले ना करें। कई दफा आपको कुछ ह्यूमन बिहेवियर या इमोशंस के मसले आ जाते हैं जो टेक्निकल नहीं होते, लेकिन आपको इसको एज ए ग्रुप के तौर पे, एज ए मेंटर के तौर पे किसी के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अकेले कई दफा आप इवन सॉफ्टवेयर भी है तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स लोगों की बैड हो जाती है। तो हमारी यही रिकमेंडेशन है कि हमारे 6 मेंटर्स हैं, तो आप किसी के साथ जरूर प्लीज बैठे।
1: वंडरफुल। तो अगर कोई हमारा लिसनर ये काम स्टार्ट करना चाहे राफी जी, तो कितना इसमें फंड्स इन्वेस्ट करने होंगे, कितना वक्त इन्वेस्ट करना होगा?
2: कुछ यूजर जिसको सिर्फ 2 वीकेंड की क्लासेस होती हैं उसमें सीख जाते हैं, और कुछ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन मोस्ट यूजर्स विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स इस काबिल हो जाते हैं, दे नो हाउ टू डे ट्रेड, नॉट अ बिग डील। फंड्स नहीं चाहिए, आपने सिर्फ एजुकेशन लेनी है। एक दफा आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको एज ए ट्रेडर हायर कर लेती हैं और एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो फंड्स उनके होते हैं, तो आपने अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने इस कारोबार में।
1: Wonderful. तो well दोस्तों, you are saved from all the different directions. और पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना, वक्त भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, फैमिली को वक्त देना है, पैसा कमाना है, वगैरह वगैरह। मेंटर्स आर देयर ऑन द फ्लोर विद यू, और आपके साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं, और आपको रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। सो वेल, अब देर किस बात की है, पिकअप योर फोन एंड कॉल एट दिस नंबर, बुक योर फ्री सीट फॉर द कमिंग सेमिनार विच इज हैपनिंग ऑन अपकमिंग सैटरडे दोपहर में 1 बजे in the heart of Mississauga. 905-206-1008 or visit the website winlifetime.com. Rafi ji, thank you so much for joining us today. Aapse phir mulaqat hogi. All the best.
2: Thank you. Take care.
1: Take care. Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
3: Well, वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर बुधवार शाम 4:10 पर आग लग गई। अफसरों ने फौरन लोगों को बाहर निकाला और परिसर को खाली कर दिया गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। आग लगने के कारण मेट्रो एक्वा लाइन के अंडरग्राउंड कॉरिडोर में कफ परेड के बीच मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि आग टेक्निकल रूम में लगी थी। पंजाब में 3 घंटे के भीतर 2 जगह धमाके हुए। पहला धमाका मंगलवार रात 7:45 जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के बाहर हुआ। इसके बाद अमृतसर में आर्मी कैंप में करीब 11:00 ग्रेनेड अटैक किया गया। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के खालिस्तानी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए DIG संदीप गोयल और उनके परिवार को टारगेट किया। इसके बाद श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे CM भगवंत मान ने कहा कि चुनाव से पहले BJP ऐसे छोटे मोटे ब्लास्ट कराती रहती है। वो लोगों को डरा कर वोट ना चाहती है, लेकिन पंजाबी डरने वाले नहीं हैं। ये BJP का स्टाइल है कि चुनाव वाले स्टेट में छोटे मोटे ब्लास्ट या दंगे करा दो। सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा कि अभी कनाडा में तेरा विरोध हो रहा है, जब अमेरिका आएगा तो वहां भी विरोध होगा। पन्नू ने दिलजीत दोसांझ के मेरा भारत महान कहने और अमिताभ बच्चन के पैर छूने पर एतराज जताते हुए कहा कि दिलजीत अहंकारी है। उन्होंने कहा कि तेरा ये घमंड ही तेरा दुश्मन है। दरअसल दिलजीत और 2026 के नाम से वर्ल्ड टूर पर हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने उनके शो में झंडे लहराए थे। भोपाल और इंदौर मेट्रो में अब प्री वेडिंग शूट, फिल्म की शूटिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन भी किए जा सकेंगे। इसके लिए लोगों को 1 घंटे के 5,000 से 7,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। 15 दिन पहले बुकिंग भी करानी होगी। नियम और टाइमिंग दोनों का ध्यान रखना होगा। सेलिब्रेशन में ना तो शराब ले जा सकेंगे और ना ही बीड़ी सिगरेट। पटाखे ले जाने पर भी मनाही है। मेट्रो में प्रवेश से पहले ही स्टेशन पर चेकिंग की जाएगी। इस सुविधा की शुरुआत आज 5 मई से ही कर दी गई है। तमिलनाडु में 7 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल टल सकता है। TV के चीफ विजय ने बुधवार को लोकभवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। समर्थन पत्र में TV के 107 और कांग्रेस के 5 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने 118 विधायकों के समर्थन के पत्र की मांग की है। इस पर विजय ने समर्थन के लिए समय मांगा है। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर एक बार फिर वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। इस बार मामला पेपराजी से जुड़ा है। मुंबई में फिल्म दादी की शादी की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान रणबीर फोटोग्राफर्स पर नाराज होते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रणबीर पत्नी आलिया भट्ट के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। ये इवेंट उनकी माँ नीतू कपूर की फिल्म दादी की शादी के लिए रखा गया था। जैसे ही दोनों वेन्यू से बाहर निकले, पेपराजी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वीडियो में भीड़ और कैमरों की धक्का मुक्की से रणबीर असहज दिखे। वायरल क्लिप में रणबीर पेपराजी से पीछे हटने और दूरी बनाए रखने को कहते दिख रहे हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पिरिट को लेकर अटकलों पर मेकर्स ने अपडेट जारी किया है। सोशल मीडिया पर खबरें थी कि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है। ऑफिशियल बयान में साफ किया गया कि स्पिरिट तय समय पर ही रिलीज होगी। मेकर्स के मुताबिक स्पिरिट 5 मार्च 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रोडक्शन टीम ने बताया कि फिल्म का काम प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।
4: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
1: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
4: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
5: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
8: Jab

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक. चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स. वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल. कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर्स जरूर चेक करें. लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन. कॉल 9054585300, 9054585300. बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना. शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना.

0: नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, कितना कन्वीनियंट है ना सब कुछ करना, पान भी खाओ गोरी से भी मिलने जाओ. समटाइम्स वी कॉम्प्लिकेट द लाइव्स टू मच, लाइफ इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. कभी कभी हमें जब सीधे रास्ता किसी चीज तक जाने का पता होता है, वी आई डोंट नो व्हाई डेलिबरेटली वी ट्राई एंड टेक अ वेरी डिफिकल्ट राउट टू गो टू द डेस्टिनेशन. आर डेस्टिनेशन आपकी खुशियाँ हैं, उसका रास्ता बहुत सिंपल है, लेकिन लेट्स नॉट ट्राई एंड कॉम्प्लिकेटेड. जिंदगी में खुश रहने की बहुत सिंपल चीज़ है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो लोग हैं आपके पास, उनका दायरा थोड़ा कम कर दीजिए. यू नो इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज़ द क्वालिटी दैट मैटर्स. तो ज़िंदगी में क्वालिटी लेकर आइए, और ऐसा ही क्वालिटी एंटरटेनमेंट आपको मिलता है मस्ती की रेलगाड़ी पर. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए. और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कि अगर आपको चाहिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज़ एंड डोर्स, तो यश विंडोज़ एंड डोर्स में ज़रूर बात करें. पूरे ओंटारियो में सर्विसेज देते हैं, खुद ही विंडोज़ एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है खुद ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. सो नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक का सफर तय करते हैं विंडोज़ एंड डोर्स. और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेप्शनली गुड लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग टुगेदर, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे. इसके साथ साथ फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यश विंडोज एंड डोर्स से बात करें. 416-732-3600. धर्म जी के साथ बातचीत कीजिए दोस्तों, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको आएगा जिंदगी में. और 416-732-3600. इसके अलावा देओल ट्रैवल की तरफ से जो डील्स आ रही हैं वो बता दें, और उसके बाद देओल ट्रैवल की तरफ भी आपको ले चलेंगे. और देखते हैं कि आज राजवीर जी हमारे साथ जुड़ती हैं, और लेटेस्ट जो फेयर्स हैं, लेटेस्ट जो हाईलाइट्स हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगी. टोरंटो से दिल्ली या मुंबई, मई के महीने में वन वे जा सकते हैं $820 में. नाउ टोरंटो से अहमदाबाद स्पेशल फेयर है मिड मई से जुलाई तक, राउंड ट्रिप $1,640 दो बैग्स के साथ. टोरंटो से नाउ दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है $1,590. टोरंटो से बैंगलोर सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,340 दो बैग्स के साथ. नाउ टू लोकेशंस टू सर्व यू, ब्रैम्पटन एंड इटोबिको. देओल ट्रैवल का नंबर 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. आप हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. और कोई भी अगर आपको हैंडीमैन की ज़रूरत है, तो अगर आप चाहते हैं घर में कोई भी छोटा मोटा काम है या बहुत बड़ा काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, घर को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, आप फ्लोरिंग चेंज करना चाहते हैं, टाइल्स चेंज करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप जो है किचन को रेनोवेट कर दें, वॉशरूम को रेनोवेट कर दें, कोई भी इस तरह की सर्विसेज आप चाहते हैं, तो आप जो है राजेश शर्मा जी से बात करें क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में, और आपको बहुत ही एक्सेप्शनली गुड सर्विसेज वो देंगे. और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि उनका जो डायरेक्ट नंबर है जिस पर आप रीच आउट कर सकते हैं 6472102075. एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, वापस लौटते हैं अगले सेगमेंट के साथ, स्टे ट्यून्ड. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी.
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है.
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड.
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232, 890-3232.

0: ਕੰਡਾਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
2: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਸ ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 ਕੰਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar Aaye Hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
4: Welcome to Madras Restaurant. Swad, swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety. Aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosa. Biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600.
5: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस
6: वेल दोस्तों एक बार फिर से शालिनी आप लोगों का वेलकम करती है और ये जो सेगमेंट है आप तक पहुंचाया जा रहा है स्पेक्स एक्सप्रेस के सौजन्य से और आपको स्पेक्स एक्सप्रेस की तरफ से एक लकी विनर को दिए जाएंगे स्केचर्स के पोलरॉइड सनग्लासेस जो यूनिसेक्सुअल रहेंगे तो चाहे महिला चाहे पुरुष चाहे हमारी बहनें चाहे भाई लोग जो भी जीतते हैं एक विनर हम निकालेंगे आज के शो से और जैसा आज बताया था आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि आज एक बहुत ही बड़ा दिन है नेशनल एंग्जाइटी डिसऑर्डर स्क्रीनिंग डे जो हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है उसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में बाहर कर सकते हैं सबसे पहली बात है बाहर तो करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि उसको स्क्रीन कैसे करें कैसे पता चलेगा कि एंग्जाइटी है हमको या एंग्जाइटी नहीं है हमें हम जब तक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे हम जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे उस बारे में बात करने के लिए तब तक हाउ डू वी नो व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम तो इसीलिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छा रिमाइंडर देता है कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प एंड यू आर नॉट अलोन तो आपसे मैंने पूछा था एक सवाल जिसका मुझे जवाब सही नहीं आया क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी में तो मेरा आपसे सवाल ये था कि इस तरह की कोई भी एंग्जाइटी से अगर आप जूझ रहे हैं आपने कैसे उसको ओवरकम किया है या आपने किसी अपने की कैसे हेल्प की है टू ओवरकम द एंग्जाइटी आपने किसी बच्चे की हेल्प की हो आपने किसी दोस्त की हेल्प की हो फैमिली मेम्बर की हेल्प की हो या अपनी खुद की हेल्प की हो बताइए ज़रूर क्योंकि आज है नेशनल एंग्जाइटी डिसऑर्डर स्क्रीनिंग डे और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें हेड ऑन लेना चाहिए तभी इस प्रॉब्लम का हम सल्यूशन निकाल सकते हैं हम फन टॉपिक्स तो हमेशा डिस्कस करते हैं और आप लोगों का पार्टिसिपेशन मिलता है बट मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सीरियस टॉपिक में भी और मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको सीरियसली लेते हैं अपनी और अपने अपनों की सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और बेस्ड ऑन योर पार्टिसिपेशन हम एक रैंडम विनर निकालेंगे जिसको दिए जाएंगे स्पेक्स एक्सप्रेस की तरफ से स्केचर्स के पोलराइड सन ग्लासेस ऑल राइट तो वेल दोस्तों अगला गाना जो है आपकी फरमाइश पर एक हमारे जो लिसनर हैं आशीष शर्मा बड़े सालों से शो सुनते हैं और हमेशा सीरियस गाने रिक्वेस्ट करते हैं और आपने अब बधाई होकर ये गाना रिक्वेस्ट किया है क्योंकि आप आज कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट मूड में हैं बहुत हैप्पी मूड में हैं सो वेल लेट्स हियर दिस ब्यूटिफुल ट्रैक सुपर हिट गाना मोरनी बन के शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर इन्जॉय

0: जी दोस्तों, देओल ट्रैवल के बारे में रोजाना बताते रहते हैं और आइए आज आपको सैर कराते हैं देओल ट्रैवल की, और जो आपको सैर कराते हैं पूरी दुनिया की अमेजिंग अमेजिंग डील्स के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगी नवजोत जी। नवजोत जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून
0: जी। तो नवजोत जी, बताइए कौन कौन से आज स्पेशल ऑफर्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करेंगी ऑन एयर?
1: जी, आज मैं लेके आई हूँ जी, टोरंटो से लेके बॉम्बे तक अगर जाएंगे आप, आपको ये डील दो बैग के साथ 780 में मिलेगी। एंड अगर आप टोरंटो से बैंगलोर जाते हो सेप्टेम्बर मंथ से अक्टूबर मंथ तक, तो ये डील आपको मिल जाएगी 1340 में, वो भी दो बैग के साथ। एंड अनदर डील इज टोरंटो से लेके अहमदाबाद तक अगर आप जाते हो मिड मई से जुलाई तक, ये राउंड ट्रिप आपको सिर्फ और सिर्फ 1640 का मिल जाएगा दो बैग के साथ।
0: वाओ, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, और बहुत अच्छी बात है। आपने बड़ी अच्छी अच्छी डील्स बताई हैं नवजोत जी। तो ये जो आपने बताई हैं डील्स, इनका कोई ऐसा टाइमिंग है कि कब तक ये अवेलेबल रहेंगी डील्स?
1: जी राइट नाउ आज के लिए ये डील्स हैं, विल कंटिन्यू विद द फर्दर डील्स टुमारो एज वेल। ये डील के लिए जिसको भी ये डील चाहिए हमें खुद ही कॉन्टेक्ट कर लें जल्दी से जल्दी।
0: जी जी बिल्कुल, और आपके दोनों नंबर्स आप अनाउंस कर दें नवजोत जी, ताकि जल्द से जल्द हमारे लिसनर्स आपसे बात करें और ये डील्स का फायदा उठाएं।
1: ओके, ये दोनों डील्स हमारे दोनों लोकेशंस में हैं, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 905-588-4200 एंड 905-588-5100
0: 588-5100 and 588-4200 ब्रैम्पटन एंड इटोबिको दो लोकेशन से सर्व करते हैं देओल ट्रैवल। टेक एडवांटेज ऑफ दीज अमेजिंग ऑफर्स। नवजोत जी, थैंक यू सो मच, आपसे फिर जुड़ेंगे बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।
0: ओके, टेक केयर। वेल, इट्स 3:34 राइट नाउ, और अगला गाना उसकी फरमाइश। और मुझे ये बात सुनकर ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, ये बात देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, इनफैक्ट ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं दिया। आज एंग्जाइटी की बात हमने की थी, फन की बात करते हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं सुनना चाहती थी कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एंग्जाइटी का शिकार हुए हैं या आपके अपने एंग्जाइटी का शिकार हुए हैं। एंड आपका ये जो पार्टिसिपेशन है, दैट शोज कि आप सीरियसली कितना ले रहे हैं इस चीज को। मुझे नहीं लगता आप सीरियसली लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपका जानने वाला पहचानने वाला, उसकी आपने मदद 100% की होगी एंग्जाइटी को लेकर, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे आपका कोवर्कर हो, चाहे आपका दोस्त हो। आज नेशनल एंग्जाइटी डिसऑर्डर स्क्रीनिंग डे है दोस्तों, और इस बारे में मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, कि आपने कभी एक्सपीरियंस की है एंग्जाइटी, या आपने किसी अपने को हेल्प करा है एंग्जाइटी से बाहर निकलने में। तो इस हवाले से मैंने आपसे पूछा था सवाल, लेकिन आपके जवाब नहीं आए, तो मुझे लगता है आप में से कोई भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। दैट इज द रीजन कि आज की डेट में एंग्जाइटी डिसऑर्डर कितना ज्यादा बढ़ गया है। जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं लेकर ये प्रॉब्लम कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरा एग्जाम है, तो हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, अब सो जाओ, ठीक हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता, एंग्जाइटी वगैरह ये सब दिमाग पर भूत सवार है आजकल सबकी एंग्जाइटी का। इस तरह से हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, जो एक फिजिकल डिसऑर्डर से ज़्यादा खतरनाक साबित होता है मेंटल डिसऑर्डर। तो इन चीज़ों को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और आप भी नहीं सोच रहे तो अब आप प्लीज़ आज के बाद इस बारे में सीरियसली सोचें। जब कोई बच्चा आपके पास आता है कहकर कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंग्जाइटी है, आई नीड योर हेल्प, सो गो एंड हेल्प द किड, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट फील कि इस वक्त आपने बच्चे को चुप करा दिया तो थिंग्स गेट बेटर। नो, उस वक्त के लिए थिंग रुक चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर और थॉट प्रोसेस बच्चे का स्ट्रांग हो रहा है, दैट इज गोइंग टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ यू वेरी सून। सो डोंट टेक इट लाइटली, बीट योर एंग्जाइटी और योर किड्स एंग्जाइटी। 416-593-0055 वी हैव अ कॉलर विद अस, लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। एंड हु इज दिस? गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज केयर। ओके, सो
0: केयर, या वेलकम।
2: हां या, मैं बहुत स्टम्प शब्द में कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। एंग्जाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप जैसे अभी बोल रहे थे, बच्चों में होती है, बट बड़ों में भी होती है, और बहुत ज्यादा होती है, और बड़े तो कह भी नहीं सकते किसी को, राइट? और ज्यादातर मैंने देखा है जो अकेला रहता है कपल या फैमिली, राइट, उसको ये बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो
0: That's right. कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता बात करने के लिए, उनसे डिस्कस करने के लिए. आई गॉट इट.
2: और ये परिस्थिति हम भी सभी तकरीबन कनाडा में, अमेरिका में या कहीं पे भी हो, सभी लोग गुजर चुके होते हैं आज तक, राइट? सुबह से लेकर शाम तक हम कभी ना कभी ये फील करते हैं. बट हमने, मैंने पर्सनली, हमारा फैमिली और जो फ्रेंड्स फैमिली, हमने तय किया है कि हम महीने में एक बार मिलेंगे किसी भी बहाने से, राइट? और अपने जो भी सुख दुख सब शेयर करते हैं. हम भगवान का नाम लेते हैं, सुंदरकांड करते हैं, तो ये एक एंजाइटी दूर करने का, और उससे बच्चों को भी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, राइट?
0: वेरी नाइस.
2: दैट इज माय लाइक ऑल नटशेल ऑफ द स्टोरी. एंजाइटी का सबसे अच्छा तरीका है दूर करने का, लोगों से मिलो, अपनों से बात करो, ठीक है? यही एक तरीका है जो आप एंजाइटी से दूर कर सकते हो. थैंक यू.
0: क्या बात है केयूर जी, थैंक यू सो मच. आई ट्रूली अप्रिशिएट योर कॉल, और आपका जो आइडिया है दैट इज मार्वलस. आई लव्ड इट. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. जी वेलकम, हु इज दिस?
3: हेलो
0: जी, वेलकम.
3: हाँ जी, हाँ, एंग्जाइटी के बारे में बताना है. मैं भी एंग्जाइटी से गुजर चुका हूँ, एंड आई हैव वेरी सवीर एंग्जाइटी.
0: रियली? आर यू हैड इट? अब तो नहीं,
3: अभी no, no, चली गई. अभी मैं एंग्जाइटी का डॉक्टर बन गया एक्चुअली.
0: ओह रियली? अच्छा, आपका नाम?
3: मेरा नाम है द्रविड. एक्चुअली मेरे को इतनी डेंजर एंग्जाइटी हो गई थी, यू डोंट बिलीव. इन 60 डेज आई सी द डॉक्टर 30 टाइम विदाउट रीजन.
0: Oh my God, really? 60 दिनों में 30 बार? ऐसा डॉक्टर आपको कहाँ से मिला जो 30 बार अवेलेबल था मिलने के लिए? सबसे पहले तो आजकल डॉक्टर्स के दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है.
3: या मैं डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर के पास जाता था. कभी मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, कभी मेरी आंख में प्रॉब्लम है, कभी मेरी नाक में प्रॉब्लम है, कभी मेरे पैर दुख रहे हैं, कभी मेरा सर दुख रहा है. ओ माय गॉड, इट्स ड्राइव मी नट्स.
0: Oh my goodness, I can understand.
3: इतनी डेंजर हो गई थी, मेरा हार्ट बीटिंग लाइक क्रेजी. कुछ नहीं था, नथिंग बट इज एंग्जाइटी.
0: दैट्स राइट, बिल्कुल.
3: इतनी डेंजर.
0: आप अकेले थे? आप अकेले थे द्रविड जी यहाँ पर?
3: फैमिली भी थी, बट दे डोंट नो अबाउट द एंग्जाइटी. दैट्स द प्रॉब्लम, दैट दे डोंट नो व्हाट इज द एंग्जाइटी, यू नो.
0: ओके जी.
3: ओह माय गॉड, लाइक आई स्टार्ट वॉशिंग द डिश, आई ट्राई टू बी बिजी cleaning the house, you know, doing all the stupid thing, you know, what I'm not supposed to do. But I just did it and just get out from anxiety. And once I get come out, I can take anybody's anxiety now.
0: Okay. So, आपको क्या लगता है द्रविड जी, क्या सबसे बेहतर तरीका है anxiety को control करने का? I know.
3: You have to be busy. Like, जब भी आपका मन अकेला हो जाएगा, anxiety आप पे चढ़ जाएगी again.
0: So you have to be
3: busy and watch always positive news. Don't you watch the negative news, you know?
0: जी, बिल्कुल.
3: Yeah, and be happy and busy yourself all the time.
0: That's right. और in fact, during COVID times, कितने लोगों को एंग्जाइटी हुई थी जो हमारे यू नो टेलीविजन पे चलता रहता था ना, एक मीटर किस्म की चीज, उसमें होता था कि इतने केसेस बढ़ गए, इतने केसेस बढ़ गए, और उसकी जो
3: एंग्जाइटी एक्चुअली दैट द वे आई गेट एंग्जाइटी, मेरे को वहीं से एंग्जाइटी हुई थी. And then
0: That's
3: I
0: right.
3: have fear, okay, if I touch somebody, I get COVID. When I go home,
0: oh
3: my wife gets COVID. My kid, who's going to take them to the hospital? Who's going to take care of everybody? This and that,
0: That's blah, blah, blah.
3: You know, so that's driving me nuts.
0: That's right. Okay. Gee,
3: so I go
0: thank
3: to the
0: you
3: heart
0: so much.
3: Specialist. Yeah,
0: Gee.
3: I go everywhere. I see all the doctors top to bottom.
0: Okay. And इस वक्त आप यू आर फीलिंग बेटर नाउ आफ्टर टेकिंग इट सीरियसली? आप बिजी हो गए तो नाउ यू आर फीलिंग मच बेटर देन बिफोर, राइट?
3: I am the anxiety doctor now. I can take anybody's anxiety.
0: क्या बात है?
3: I've been through already.
0: क्या बात है? थैंक यू सो मच द्रविड जी. और आपके लास्ट फोर डिजिट्स 8333, am I right? Last four digits of your call is 8333. आप कॉल कर सकते हैं दोबारा. I just need to. Okay, perfect. 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर. बस हमारे साथ जुड़ेंगे रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर मुकेश चौहान जी फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट और उनसे करेंगे एक छोटी सी मुलाकात. बट थैंक यू सो मच द्रविड एंड केयूर फॉर कॉलिंग अस टुडे एंड डिस्कसिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज एंग्जाइटी. एंग्जाइटी को स्क्रीन करना बहुत जरूरी है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. चाहे हमारी एंग्जाइटी हो, किसी और की एंग्जाइटी हो, बच्चे की खास तौर पर एंग्जाइटी हो, क्योंकि बच्चों का माइंड एक ऐसा होता है कि बहुत देर तक उनका माइंड में जो है ना इंप्रेशन रहता है. सो वी शुड ऑल ट्राई एंड टैकल इट इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ. वेल यहाँ पर आपको मैं बता दूं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के बारे में और ऑल ओवर यू नो ओंटारियो इनकी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सबसे ज्यादा इनकी जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की सप्लायर है ये ऑल ओवर कैनेडा. इनफैक्ट लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर ऑल ओवर कैनेडा. घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स आप लगवा सकते हैं. फ्री बारबेक्यू आपको मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल. टॉप क्वालिटी मटेरियल्स हैं, ग्रेट डिजाइंस हैं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन है. 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी नंबर 416-831-4790 416-831-4790. और मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर मॉर्गेजेस के हवाले से. आइए उनके बारे में सुनते हैं, फिर करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात. एंजॉय.
4: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812.
5: एक लाइफ है जिसे लव है
6: ये कहते मुझसे सब है,
7: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है.

0: One stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: वेल दोस्तों, मुकेश चौहान हैं, रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट. और जब भी बात आती है डेट्स की, जब भी बात आती है आपकी लाइबिलिटीज़ की, जब भी बात आती है मॉर्गेजेस की, आपको लेना हो कुछ रीसेल में प्रॉपर्टी, आपको लेनी हो कोई भी प्रॉपर्टी प्री कंस्ट्रक्शन में, आपको अपनी करंट फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, आपको चाहिए सेकेंड मॉर्गेज, या आपको परेशानी आपको हो रही है बेसिकली कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है, और इसके अलावा आप अप्लाई आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगी लाइन ऑफ क्रेडिट, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर दैट मैटर्स, तो मुकेश चौहान जी से बात करें. इनफैक्ट ही कैन अरेंज इमीडिएट फंड्स फॉर यू विदाउट द अप्रेजल. कुछ केसेस में अप टू 85% लोन टू वैल्यू भी करा देते हैं. सो डेट कंसोलिडेशन में भी आपकी मदद कर सकते हैं अगर यू आर under tremendous huge amount of debt. So he can definitely help you. उसके अलावा business loans भी आपको अरेंज करा कर दे सकते हैं, और अप टू $1 million की वर्किंग कैपिटल भी करवा कर दे सकते हैं. मुकेश चौहान, नंबर नोट करें 647-512-7000. मुकेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे. मुकेश जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
3: शालिनी जी, बहुत ही बढ़िया हूँ मैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत बहुत धन्यवाद. इट्स अ ब्यूटीफुल हैप्पी वेडनेसडे, और हमारे सारे श्रोताओं को भी हैप्पी वेडनेसडे. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. आई होप आपका शो तो हमेशा बढ़िया ही रहता है शालिनी जी, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी.
2: थैंक्स अ लॉट मुकेश जी हमसे जुड़ने के लिए. और बिल्कुल, जो लोग भी हमारे स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना लिसनर्स, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, उसमें सबसे बड़ी होती है हमारी जो घर होता है, जो हमारी मॉर्गेज होती है. इफ दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ, आई गेस 80-90% प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की सॉल्व हो जाती है. लाइक यू सेड दैट डे, फाइनेंशियली इफ वी आर स्ट्रांग, देन वी आर इन अ वेरी हेल्दी एनवायरमेंट, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड एवरीथिंग हेल्दी एंड स्मूथ.
3: Very well said.
2: Right? तो इसी हवाले से करेंगे आज फिर से बातचीत मुकेश जी, और कुछ सवाल, कुछ टॉपिक्स हमारे पास हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे. सबसे पहले जी बात करते हैं हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स की. मुकेश जी, कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, जो घर लेना चाहते हैं, तो परचेज से पहले हाउ वुड यू एडवाइज एंड वॉट वुड यू एडवाइज देम कि किस तरह से ये सारी चीज की जाए, और एग्जिस्टिंग होम ओनर की जब हम बात करें जो बिगर हाउस में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट केसेस हैं. सो हाउ कैन यू हेल्प?
3: देखिए, आपके सवाल का जवाब वैसे दूंगा कि एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, राइट? तो आपको इम्तिहान में आप जाने वाले हो, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कौन से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मैं कैसे आंसर करूंगा. तो देखिए, पहले तो इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है फर्स्ट टाइम होम बायर को, के मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली, बट ऑब्वियसली, राइट? क्योंकि आप मॉर्गेज लेने जा रहे हो, अनलेस आपके पास कैश पड़ा है $1 million, या जाके ले लें, नो स्ट्रेस एट ऑल. बट वेन एवर यू हैविंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, 30 ईयर का कमिटमेंट है आप जा रहे हो, तो यस, यू नीड अ वेरी स्ट्रांग सॉलिड, फ्यूचर का पता नहीं, बट एटलीस्ट 2-3 साल का प्लानिंग करके चल सकते हो. यस, फर्स्ट टाइम होम बायर की बात करें, काफी बिल्डर जो है काफी बहुत सारे प्रमोशन के साथ आ रहे हैं. बिल्डर प्रायर परचेज हैं, एग्जिस्टिंग हाउस में है, HST में रिबेट मिल रहा है, राइट? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी मॉर्गेज क्वालिफाई करवाएं, किसी भी प्रोफेशनल का अप्रोच करें. बैंक में आपके अच्छी इनकम आ रही है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया, बैंक से भी करवाएं. आपको कहीं हेजिटेशन लग रही है, आप किसी भी, मेरी तरह किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करें, जहां से आपको ये पता लगे कि कितनी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करते हैं और क्या कितनी मंथली पेमेंट कर सकते हैं. और मेरी एक एडवाइस ये है कि जो भी मंथली पेमेंट है उसमें हमेशा $500 आप एड ऑन करें आप. तो अच्छा, उसमें हाँ, हमेशा एड ऑन करें. देखें, अगर मॉर्गेज आज कम है, कल अगर बढ़ेगी 2 साल के बाद 3 साल के बाद 5 साल के बाद, तो आज की उस पेमेंट को आज से पे करना शुरू करें आप. तो जो पेमेंट आप 30 ईयर में पे कर रहे हैं, वो आपके 20 साल में 25 साल में पेमेंट हो जाएगी आपकी. और ग्रेजुअली उसको आप 500 को 1000 में भी चेंज कर सकते हैं आप, है ना? तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो करें, ये तो हैबिट रखें आप. अगर आप वाकई उस घर को अपना बनाना चाहते हैं और बिल्कुल चीज़ों को एक सॉरी फॉर माई लैंग्वेज ऐसा नहीं है, उसको एटीएम मशीन मत बनाइए, उसको बनाए कि आपके अपना घर है, एक दिन आपको मॉर्गेज फ्री करना है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। और एग्जिस्टिंग घर के लिए ये है कि कोई अपग्रेड करना चाहता है आपका, तो आपको डेफिनेटली अपनी दोबारा से आप वही मैसेज दूंगा, अपनी क्वालिफिकेशन चेक करें अपनी कि आप कितनी मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हैं, और जो है उसको बड़े घर के लिए अगर मिलियन का घर है, 2 मिलियन के घर पर जा रहे हैं, तो उसके लिए येस आई कैन हेल्प यू टू गेट द अप्रूवल फॉर यू, प्री क्वालिफिकेशन चेक कर सकता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टी क्या 5वीं ले सकते हैं आप, राइट? तो सारी अंडर राइटिंग पॉसिबल है, आई नीड जस्ट 2 to 3 business days टू हेल्प यू टू गेट योर फाइनेंसेस। तो आप लो क्रेडिट हैं, बैड क्रेडिट हैं, एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और इस तरह की सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली यू कैन रीच मी आउट एट माय डायरेक्ट नंबर इज 6475127000।
2: अब जी मुकेश जी, कुछ जो होम ओनर्स हैं वो जैसे रेनोवेशन कराना चाहते हैं, पैसे की कमी है, जैसे आजकल हर जगह फाइनेंशियल क्रंच चला हुआ है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइनेंस द होम इम्प्रूवमेंट्स?
3: डेफिनेटली देखिए, 3 तरीके हैं। पहला तो आप मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग के थ्रू भी आप पैसा निकाल सकते हैं, ऑलवेज री मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग हेल्प यू। दूसरा है कि आपको रीफाइनेंसिंग नहीं कराना चाह रहे हैं, आप होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं या आप सेकेंड मॉर्गेज ले सकते हैं। अगर आप स्पेशली आपका क्रेडिट लो है या बैड क्रेडिट है, आप सेकेंड मॉर्गेज ले सकते हैं। सेकेंड मॉर्गेज आपको 2 से 5 दिन में मिल सकती है, लाइन ऑफ क्रेडिट आपको 2 से 3 हफ्ते में मिल सकती है। बैंक को पहले अप्रोच करें, अपने बैंक के पास जाइए, है ना? बैंक के पास अगर आपकी नहीं हो रही है, कोई इनकम इश्यूज हैं या आपको कोई क्रेडिट इश्यूज हैं, तो देन यू कैन रीच आउट द प्रोफेशनल लाइक माई सेल्फ कि हाँ भाई नहीं हो रही है। तो देर आर इंस्टीट्यूशन शालिनी जी, बैंक इज नॉट द लास्ट ऑप्शन, बैंक के अलावा भी इंस्टीट्यूशन है जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, राइट? तो आप जब कॉल करेंगे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सेकेंड मॉर्गेज बेस्ट है आपके लिए या लाइन ऑफ क्रेडिट बेस्ट है। ये सारी डिपेंड करती है आपकी शॉर्ट टर्म, आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बेसिस पे। क्या घर अपग्रेड करा के बेचना चाहते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन आंसर में आता है। तो मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोन पे कर लें, मिलना चाहे मिल लें, मैं मिसेस आगरा में हूँ, राइट? सो वंस अगेन दिस इज मुकेश चौहान, माई डायरेक्ट नंबर इज 6475127000।
2: जी, और अंत में मैं पूछूंगी मुकेश जी, मॉर्गेज रिन्यूअल के बारे में किस तरह से आप एडवाइस देना चाहेंगे, व्हाट इज द बेस्ट वे?
3: देखिए, रिन्यूअल के लिए तो अपने, अगर आपको मॉर्गेज में कोई चेंजेस नहीं करनी है, तो अपने बैंक को भी रीच आउट करें टू गेट द बेस्ट टू बेस्ट रेट, है ना? तो उससे अच्छा बढ़िया रेट कोई नहीं देगा। मगर आपको एमोर्टाइजेशन आपकी ऑलरेडी 15 साल रह गई है, मगर आपको मॉर्गेज देने की भी दिक्कत आ रही है, तो यस, रीफाइनेंसिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन, है ना? पहले उसी बैंक को बोले कि रीफाइनेंस कर दें, अगर आपको लग रहा है कि इनकम क्रेडिट इश्यूज हैं, जिनका बात नहीं बन रही है, आपको डेट्स पे करने हैं। देखिए, रिन्यूअल के टाइम पे द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अपनी सारी चीजें कंसोलिडेट करें आप।
2: अच्छा,
3: डेट्स पे करें, क्रेडिट कार्ड पे करें, सेकंड मॉर्गेज पे कर दें, प्रॉपर्टी टैक्स बिल पे कर दें, सीआरए टैक्स बिल पे कर दें, ये सब काम मुमकिन है रिन्यूअल के टाइम पे। अपॉर्चुनिटी मिस मत करें, क्योंकि रिन्यूअल के टाइम पे आपको कोई पेनल्टी नहीं पे करनी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंस अगेन, कोई भी रिन्यूअल का प्रश्न है, परेशानी है, दिक्कत है, डेफिनेटली रीच मी आउट। शालिनी जी, आप ही नंबर बता दें। बिल्कुल।
2: क्या बात है मुकेश जी, अब यू नो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी हो सकती है आफ्टर हियरिंग यू। पैसा चाहिए वो भी मिल जाएगा, रिफाइनेंसिंग करनी है वो भी हो जाएगा, मतलब सारे आपने चेक मार्क्स कर दिए हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर आवर लिसनर्स आर हैप्पी यू नो टू हियर यू एज यूजुअल। तो नंबर आप का मैं फिर से बता दूं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों, मुकेश चौहान, टू कॉल और टेक्स्ट एट दिस नंबर 6475127000। थैंक यू सो मच मुकेश जी, विल टॉक टू यू अगेन वेरी सून, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
3: थैंक यू सो मच अलिन जी, थैंक यू।
2: यू मोस्ट वेलकम। जी दोस्तों, एक छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। इनफैक्ट दो न्यूज फ्लैशेज आई हैं आपको बता दूं। एक हैमिल्टन के पर्सन है, 40 साल के हैं, उनको अक्यूज किया गया है ऑफ सीक्रेटली रिकॉर्डिंग

0: ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं जो अभी अभी न्यूज फ्लैश आया है जो हमने आपके साथ शेयर किया। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक, विल बी राइट बैक विद द लास्ट ट्रैक ऑफ टुडेज मस्ती की रेलगाड़ी की जर्नी। एंजॉय करेंगे साथ मिलकर टाइनी सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन।
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें। इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।

दोस्तों, कभी कभी दिल की बेचैनी ही प्यार की पहचान बन जाती है। कभी कभी दिल की बेचैनी ही प्यार की पहचान बन जाती है। उसी एहसास को महसूस कीजिए और सुनिए ये गाना, कसूर फिल्म से लिया गया, कितनी बेचैन होकर। कहते हैं कि कसूर दिल का नहीं था, बस मोहब्बत हो गई। राइट, थैंक यू सो मच आज की जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। और आज के कॉन्टेस्ट के विनर हैं द्रविड़ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको दिए जा रहे हैं स्केचेस के पोलराइड सनग्लासेस फ्रॉम स्पेक्स एक्सप्रेस। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा डायरेक्ट नंबर आफ्टर द शो फॉर ऑल द बिजनेस नीड्स, ऑल द बिजनेस प्रमोशंस, डायरेक्ट नंबर टू रीच अस आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812. कल दोपहर 2 बजे फिर मिलेंगे मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। कुछ अल्फाज कुछ नगमे और थोड़ी सी बातें, कुछ अल्फाज कुछ नगमे और थोड़ी सी बातें, इन्हीं से महक उठेगी आज की हमारी ये मुलाकातें। सुरों के समंदर में डुबकी लगाने को हो जाइए तैयार, सुरों के समंदर में डुबकी लगाने को हो जाइए तैयार। लेकर आए हैं हम आपके लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। ये हिड वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
2: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
2: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, सुइट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844. That's 6478648844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई और ले जाना है तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
7: हाँ जी मेरे भाइयों, लीजाज कॉस्मेटिक्स सेल, प्रेस्टीज ब्रांड नेम्स कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल नेल कलर एंड नेल केयर एंड मच मोर। जरूर पहुंचिएगा 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, लीजाज कॉस्मेटिक्स सेल, आपके लिए, सबके लिए, सब कुछ वहां पर। ये है रेड वॉइस। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बिंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
8: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
9: It's time to cast your vote. Voting is now open for the 2026 Top 25 Canadian Immigrant Awards presented by Western Union. We invite all Canadians to meet the shortlist of 75 finalists from across the country. Read their profiles and vote for their three favorites. This is your chance to vote for someone who has become successful in their own right and has made a difference in their community. Don't forget to vote by June the 12th. For more information, visit canadianimmigrant.ca/top25.
10: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
11: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
12: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
13: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232 3289032232.
14: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
15: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
14: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
16: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
17: हाँ जी मित्र भाइयों, जी वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन। बिंदर भाइयों, मौसम बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे टोरंटो का मौसम किसी अनसेटल्ड ब्रेकअप से गुजर रहा हो। हाँ जी बिंदर भाइयों, मई का महीना चल रहा है। उम्मीद थी कि शॉर्ट्स और टी शर्ट निकालेंगे, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कूल एंड अनसेटल्ड मौसम कहीं नहीं जा रहा। मतलब ये है कि कल रात हमने जैकेट खुशी खुशी संदूक में रखी और आज सुबह वो जैकेट संदूक के अंदर से मुझे चिढ़ा रही थी, निकालो बेटा बिना मेरे बाहर कदम रखे के देखो कैसा महसूस होता है। और हमने जैकेट की बात मान ली, जैकेट पहनकर ही बाहर निकले। कल हमने अपनी गाड़ी साफ की, धूप में चमकाई, बादल देखकर लग रहा था कि बादल हंस रहे हैं मुझ पे। बंदर भाइयों, ये बारिश और ये ठंडी हवाएं अभी नहीं डेरा जमाए बैठी है, और कब तक ये डेरा रहेगा मौसम विभाग भी फिक्र में पड़ गया है। टोरंटो का मौसम उस मेहमान की तरह है जो जाने का नाम नहीं लेता। आप उसे कह रहे हो अरे भाई घर कब जाओगे, और वो सोफे पर लेट कर कह रहा है अरे अभी तो बस 15 डिग्री है, अभी तो और गिरेगा। बिंद्र भाइयों, अपनी जैकेट को गुड बाई मत बोलिए, बस सी यू लेटर कहिए। और अगर छाता घर भूल गए तो समझो आज मुफ्त में शावर भी लेने का पूरा इंतजाम मौसम ने किया है। हाँ जी बिंद्र भाइयों, संभल कर गाड़ी चलाइएगा और मौसम की हल्की हल्की बूंदों में गर्मा गर्म चाय और समोसे खाना मत भूलिएगा। ये हिड वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी मेरे भाइयों, लीजाज कॉस्मेटिक्स सेल, प्रेस्टीज ब्रांड नेम्स कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल नेल कलर एंड नेल केयर एंड मच मोर। जरूर पहुंचिएगा 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, लीजाज कॉस्मेटिक्स सेल, आपके लिए, सबके लिए, सब कुछ वहां पर। ये है रेड वॉइस।
5: घर कहीं भी लेना हो

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844. That's 6478648844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
8: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
9: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक. परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
10: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com. गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का.
11: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा.

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माजी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
5: It's time to cast your vote. Voting is now open for the 2026 Top 25 Canadian Immigrant Awards presented by Western Union. We invite all Canadians to meet the shortlist of 75 finalists from across the country, read their profiles and vote for their three favorites. This is your chance to vote for someone who has become successful in their own right and has made a difference in their community. Don't forget to vote by June the 12th. For more information, visit CanadianImmigrant.ca/top25.

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस FM 101.3 और मैं हूं अमिताभ। इट्स वेंसडे 4:25 PM और वक्त हो चला है उनसे मिलने का जिन्हें आप और हम सालों से रियल एस्टेट की ट्रस्टेड अथॉरिटी मानते आए हैं, प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज हो या फिर रेसिडेंशियल होम्स। पीके सबरवाल जी का बस नाम ही काफी है। विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड विनर ऑफ टॉप रियल एस्टेट अवार्ड्स, पीके इज विद अस एवरी वेंसडे टू नेविगेट यू थ्रू द शिफ्टिंग टाइड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द कनेडियन एंड इंटरनेशनल रियल एस्टेट मार्केट्स। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कब करें, मार्केट का रुख किस तरफ का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन और विश्लेषण सबरवाल साहब से आपको यही रेडियो वॉइस पर मिलता है। सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे 4:50 तक। तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप भी पीके से डायरेक्टली पूछ सकते हैं बाय कॉलिंग आवर स्टूडियोज ऑन 416-593-0055। सबरवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज हमारी श्रोताओं को अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाने दें और हम सभी को रियल एस्टेट की इस हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स दें प्लीज।
2: थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी। रियल एस्टेट के मुतालिक अभी जो ट्रेप की रिपोर्ट आई है, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है जीटीए के अंदर, अभी अप्रैल के महीने में 5,946 सेल हुई है और विच इज 7% अप फ्रॉम द लास्ट ईयर, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। और उसके साथ साथ न्यू लिस्टिंग्स भी कम हुई है 9.3%, विच इज अगेन ए गुड थिंग टू हैपन क्योंकि मार्केट के अंदर इन्वेंट्री लेवल इससे कम हो सकता है। और एक्टिव लिस्टिंग जो है वो भी डिक्लाइन हुई है 6.4%। सो ये सारी तीनों के तीनों फिगर्स ये बता रही हैं कि मार्केट में हलचल थोड़ी शुरू हो चुकी है। और लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो बेंचमार्क जो प्राइस इंडेक्स वो ये बता रहा है कि 6.6% प्राइस डाउन हुआ है ईयर ओवर ईयर। एंड वो तो हर नजर सबको आ ही रहा था, लेकिन ये भी साहब ने कहा जा रहा है कि ट्रंप के चीफ जो हमारे जेसन मर्सर साहब है उन्होंने कहा कि जी अगर ये अगर हम देखें कि भाई जियो पोलिटिकल टेंशन थोड़ी अगर कम होती है और तो उससे कि मार्केट के अंदर और इम्प्रूवमेंट उनको होती नजर आ रही है, विच इज अगेन इट इज ए गुड साइन कि इतनी लंबी एक दो ढाई साल के मार के बाद रियल एस्टेट में कुछ एक गहमागहमी शुरू हुई है। जी
1: वही आज की जो न्यूज आपने भी फॉलो करी होगी, जो आज की न्यूज जो डेवलपमेंट्स है ईरान और यूएस को लेके, तो वहां से तो पॉजिटिव न्यूज हमें सुनाई दे रही है। ईरान ने भी थोड़ा सा जा बोला नहीं है, ट्रंप साहब ने भी अपने मुंह पे थोड़ा सा अंकुश लगाया है और थोड़ी सी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, पर वो चार पॉजिटिव बातें करते हैं उसके बाद दो धमकियां दे देते हैं, तो लोगों को वही कंफ्यूजन रहता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरे ख्याल से वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जब तक
2: उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो बोलेंगे क्या कल, उनको खुद नहीं पता, रात को सोने से पहले कुछ सोच रहे होते हैं, सुबह उठने के बाद कुछ और बोल देते हैं, उनको खुद ही नहीं पता एक्चुअली।
1: मैं तो सोचता हूँ सबरवाल साहब कि वो रात में भी सोते नहीं है क्योंकि उनके ट्वीट्स जो होते हैं, जो सबसे खतरनाक ट्वीट्स जो होते हैं उनके, वो अक्सर रात में 2:30-3 बजे के बीच में पाए जाते हैं।
2: पता नहीं क्या कर सकते हैं। देखो अब हमारे किंग चार्ल्स भी आए थे तो वो भी कुछ बोल के गए थे, इनको समझाकर कुछ बताकर गए थे
1: जी, जी।
2: पर जो भी है अल्टीमेटली हम सब ये चाहते हैं कि शांति हो। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। सबरवाल साहब मेरा एक क्वेश्चन था कि बैंक ऑफ कनाडा ने रेट्स को तो 2.25% पे होल्ड किया है, लेकिन गैस प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन फिर से डरा रहा है हम सबको, तो क्या आपको लगता है कि बायर्स को अभी लॉक इन कर लेना चाहिए अपने रेट्स या फिर वेट करना चाहिए?
2: देखो बात यह है इस वक्त की, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी लास्ट वीक वेडनेसडे को भी 2-3 क्वेश्चन इसी के मामले में आए थे। मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन तो ये कह रहे हैं, बैंक ऑफ कनाडा कह रहा है कि बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस ये इन्फ्लेशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3% अभी आ जाएगी इस वक्त। और लेकिन वो इसको मेन मुद्दा नहीं, वो GDP के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि GDP की फोरकास्ट जो कर रहे हैं 1.2% 2026 में और 1.6% 2027 में एंड 1.7% 2028 में, अगर ये रहा और इस हिसाब से हाउसिंग डिमांड को अगर मद्देनजर रखें तो स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ और वीक इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट है, ये सब देखते हुए
1: जी,
2: पहली बात तो आप वाली बात इंटरेस्ट रेट की बता दूं, मुझे नहीं लगता कि इस साल इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता। और 2027 के अंदर भी ये नॉट ओनली इन्फ्लेशन, हम इसको काउंट नहीं करेंगे, जीडीपी जो है ना, जो और भी बड़े पहलू है इसको कैलकुलेट करने के। मेरा मानना है कि शायद एक साल पूरा, अभी जो मई आ गया, मई से अगले साल 31-30 अप्रैल तक मुझे इंटरेस्ट रेट हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बशर्ते कोई और अनहोनी ना हो जाए। एक्चुअली मैं ये बता दूं कि मैं तो मॉर्गेज ब्रोकर हूं ही नहीं, मैं तो रियल एस्टेट ब्रोकर हूं, लेकिन आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है, मेरे को ये चांस है कि अभी 7-8 महीने 10 महीने इंटरेस्ट रेट को ये नहीं छेड़ेंगे, मेरे को ये लगता है इस तरीके से। जी
1: जी बिल्कुल। अगर मैं, मेरा एक फॉलो अप इसी क्वेश्चन से था कि अगर इन्फ्लेशन 3% क्रॉस करती है तो फिर भी क्या हम, तो फिर क्या हम ईयर एंड तक रेट हाइक देख सकते हैं, आपके विचार?
2: हाँ, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो उन्होंने बाइंग, इन्फ्लेशन बढ़ने से तो नेचुरली इन्होंने जो है बाइंग पावर को कंट्रोल करना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये इन्फ्लेशन सुपरफिशियल है, ये एक्चुअल नहीं है, ये टेम्पररी है, टाइम बींग चल रही है बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस, और इसके ऊपर अपोजिशन भी चिल्ला रही है कि भाई आप इसके ऊपर कुछ लाओ, कुछ करो, उसको रोको, जो कि नहीं रोक पाएंगे, पूरी दुनिया में ये हाल है। तो मेरे को लगता है ये सिर्फ गैस प्राइस के बेसिस के ऊपर नहीं करेंगे, कोर इन्फ्लेशन की तरफ ये ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि ये आर्टिफिशियल जो गैस प्राइसेस के ऊपर चल रहा है। मेरा ये मानना है कि इसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, इतनी जल्दी इसको डिसीजन नहीं लेंगे ये।
1: ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सबरवाल साहब। फेडरल गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन नंबर्स पर तो थोड़ा कंट्रोल लगाया है, फिर भी सप्लाई गैप बरकरार है, तो जीटीएचए के रेजिडेंशियल मार्केट पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं?
2: वो तो नजर आना शुरू हो गया, अब देखिए ना, अब ये जब इमिग्रेशन कम हुई, हमारी हाउसिंग अब पॉपुलेशन में ही चलेगी ना, अगर पॉपुलेशन नहीं है तो घर किसके लिए बनाएंगे? और एक तो ये हो गया इन्फ्लेशन, ये इमिग्रेशन की बात होगी, नेचुरली जब अभी कम हो, ऊपर से ये अभी इसको ईज कर भी नहीं रहे, ईज भी नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने जो स्टेप उठा लिया, और ऊपर से इनकी ये एक और रिपोर्ट जो आई थी कि ग्रेटर हैमिल्टन एरिया जीटीए, यहाँ पर जो है जो कॉन्डो की सेल हुई है Q1 2026 में, द लोएस्ट Q1 की सेल, लोएस्ट इन 35 ईयर्स है। अब इनको ये भी खतरा बना हुआ है ना कि भाई ये जो इन्वेंटरी इसको कैसे निकालें बाहर, और नए जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं कि एक तो पुराने जो प्रोजेक्ट बनने शुरू हो गए थे, जो बिके थे, वो आने शुरू हो गए, अब वो इन्वेंटरी मार्केट में आ गई, ऊपर से बायर लगभग खत्म हो गए, 246 सिर्फ कॉन्डो अगर बिके हो ग्रेटर टोरंटो हैमिल्टन एरिया के अंदर, 240 एक पूरे क्वार्टर के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है कि मार्केट डेड है, बिल्कुल डेड है,
1: मार्केट सेंटीमेंट है ही नहीं,
2: बिल्कुल डेड है ना, बिल्कुल डेड है। और इतने सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आ गए, बिल्डर से बात करो, वो कहते हैं हम कोई लॉन्च ही नहीं कर रहे, हमारा पुराना जो इन्वेंटरी वो निकलेगी तब जाके बात होगी। तो ये सारी बातों को, और ऊपर से सबसे बड़ी मार और पड़ रही है, अगर मान लीजिए क्लोजिंग करते हैं तो अप्रेजल कम आ रही है भाई, एक एक एक एक एक कॉन्डो अपार्टमेंट अगर 8 लाख है, उसकी अप्रेजल आ रही है 7 लाख, कई जगह तो 6.5 लाख, जो बायर है वो इस तरीके से फेंक गया, कागज फेंक गया, कहता है मैं क्लोजिंग नहीं करता, जो करना कर दो, उसके पास क्लोजिंग कॉस्ट के लिए पैसे नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमी, और ऊपर से वो अप्रेजल के पैसे भी लेकर आए। इन सारे जमेलों के अंदर सरकार भी कंफ्यूज हुई पड़ी, करें तो क्या करें, वो जिस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो नए यूनिट्स के ऊपर दे रहे हैं जो नए अब बिक रहे हैं 1 अप्रैल से, पर इस मामले में ध्यान ही दे रहे कि जिन लोगों ने पहले बुक कराया है उनको नॉट ओनली उन्होंने महंगा लिया हुआ है बल्कि उनको अप्रेज वैल्यू भी कम आ रही है, वहां पर वो बहुत कंफ्यूज है, जिसके ऊपर इतनी ज्यादा गहमागहमी चल रही है। आज भी ओटावा में इस बारे में बहुत जबरदस्त मीटिंग हो रही है, बातें हो रही है, मुझे पता है ओटावा में क्यों हो रही होगी, मेरे जान पहचान वाले कुछ मीडिया के वहां गए हुए हैं आज, तो वहां कवर करने के लिए। तो ये बातें जो है ना इस वक्त झमेले में मैं तो कहूंगा पड़ी हुई है, और ऊपर से ये कह रहे हैं हमारी बैंक ऑफ कैनेडा ये कह रहा है कि जैसे आपने कहा 3% तक तो ऑयल इसको उठा देगा इन्फ्लेशन को, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अर्ली 2027 तक ये इन्फ्लेशन फिर उनके टारगेट में 2% तक आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी, या तो लग रहा है इनको कि तब तक ये ऑयल वाली प्रॉब्लम, ईरान वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती इनको नजर आ रही है शायद, समथिंग इज गोइंग इन बिटवीन, दे आर कंफ्यूज्ड एज अदर कंट्रीज। मैं तो ये कहूंगा क्लियर कट इनके आगे को रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा। और बाकी जो आपने पहला क्वेश्चन किया था वेरिएबल और फिक्स के ऊपर, ये अपनी आपका स्ट्रेंथ के ऊपर जाएगा। अगर आप उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं तो अभी भी वेरिएबल के हक में हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन आपको लगता है कि भी अचानक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो गो फॉर फिक्स। कम से कम आपके सामने ये तो टारगेट होगा ना कि मेरा फिक्स महीने का इतने का जाएगा, मेरे को कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1: जी
2: मेरा नंबर भी साथ में देंगे अगर कोई लिस्नर अगर कॉल करना चाहे तो।
1: जी बिल्कुल, वही मैं अपने सुनने वालों से वही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो पी के सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4:50 तक, तो आप बेझिझक अपना फोन उठाइए, स्टूडियो को कॉल करिए 4165930055 पर और अपना प्रश्न आप पी के सबरवाल जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सबरवाल जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक एक सब्जेक्ट और एक जो चीज बार बार आजकल सामने आ रही है वो है अफोर्डेबिलिटी ऑफ आर यंग कैनेडियंस। वो बेचारे आजकल दे आर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ना तो वो घर खरीद पा रहे हैं ना ही वो उनकी अफोर्डेबिलिटी ऐसी है कि अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी कुछ रेंट कर पाए, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल दुख है बहुत, मैं यंग कैनेडियंस को मिलता हूँ, यंग बच्चों को मिलता हूँ और ये उनसे जब बात करता हूँ ये बिटवीन द एज ऑफ 20 to 34, 35 वो कहते हैं कि अभी ये रिपोर्ट भी आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की स्टडी भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी खुशियां खत्म हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर इनकी खुशियां डिपेंड करती है, पढ़े लिखे बच्चे आजकल के हैं और ये क्राइसिस जो चल रहा है इनको कुछ नहीं करने देगा, घर खरीदना है तो वो खरीद नहीं पा रहे, घर किराए पे लेना तो किराए भी नहीं दे पा रहे ये लोग, और ये बहुत बड़ी एक विडंबना है मैं तो कहूंगा कि ऐसे हो रहा है। 1 in 5 कैनेडियन एजेड बिटवीन 20 to 34 वो इनसिक्योरिटी में है बिटवीन 2023 से 2025 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी 1 in 5 यंग कैनेडियन, लेकिन अगर सीनियर की बात करें वो 1 in 13 है, मतलब डबल से भी ज्यादा, हाफ से भी ज्यादा कम सीनियर से, डबल से ज्यादा यंग है, यानी कि यंग कैनेडियन सीनियर के मुकाबले ज्यादा परेशान है। वो 13 में 1 है सीनियर और यंग 5 में 1 है। ये जो है ना, और एक बहुत बड़ी मैं एक बहुत बड़ी फिगर जो मेरे सामने आई थी जब मैं स्टडी कर रहा था 2004 से लेकर अब तक घरों के एंट्री लेवल घरों के प्राइस जो है वो बढ़े हैं 265%। 2004 से लेकर अब तक एंट्री लेवल होम प्राइसेस जो छोटे घरों की बात कर रहा हूं वो बढ़े हैं 265%, जबकि बहुत एक दुख की बात है यंग ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड उनकी इनकम बढ़ी है सिर्फ 76%।
1: ओके,
2: आप लगाइए कितना जबरदस्त गैप पड़ गया, जितना आसान 2004 में लेना था मकान इतना टफ हो चुका है इस वक्त 2025-26 में लेना मकान, कहा 265% और कहा 76। ये फिगर जो है खुद ही बता देती है कि यंग कैनेडियन कितना परेशान है। जो जो सीनियर्स हैं चलो उनके पास इन सिक्योरिटी के साथ साथ घर तो है, यंग कैनेडियन के पास घर भी नहीं है और इन सिक्योरिटी है। देखो जब आदमी के पास घर होता है ना, सिर पे छत होती है, तो वो कहता है ज्यादा क्या होगा, बड़े घर से छोटे घर में आ जाऊंगा, छोटे घर से और छोटे घर में आ जाऊंगा, या बिल्कुल छोटे घर से मैं बेच के किराए पे चला जाऊंगा और जो पैसा मेरे पास होगा उससे मैं अपना बुढ़ापा बिता लूंगा। लेकिन एक यंग कैनेडियन क्या करे जो घर खरीद नहीं पा रहा और घर किराए पे भी नहीं ले पा रहा, और इनकम के हिसाब से मैंने आपको अभी फिगर दी है जिस तरह से बड़ी है वो एक डराने वाली है।
1: बिल्कुल, बड़ी अजीब सी विडंबना है स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए, मतलब हम सबके फैमिलीज में अभी यंगर जनरेशन है ही, तो सोच सोच के ही घबराहट से होती है।
2: देखो अभी कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की रिपोर्ट इसके बारे में आई थी, क्योंकि ये तो मेरा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं ये फिगर्स मेरे दिमाग में घुस जाती है। वो कह रहे हैं कि यंग कैनेडियंस जो पर्टिकुलरली अफेक्टेड है 41% एजेड बिटवीन 18 to 29 है, वो 39% है 30 to 44.
1: ओके,
2: एज ऑफ हाउसिंग के हिसाब से परेशान है ये. हाउसिंग के अंदर चाहे वो खरीदना हो चाहे वो किराए पे हो, इस बात से इतने ज्यादा एक परसेंटेज ये परेशान हुए बैठे हुए हैं. और ये भी कह रहे हैं बहुत अजीब ग्रोइंग नंबर जो है इनमें से 18 to 44 एज वाले ये भी कह रहे हैं कि लगता है कि उनका रियलिस्टिक गोल ऑफ ड्रीमिंग ए हाउस इज ऑल्सो गॉन. मतलब खरीदना छोड़ दो, सपना भी लगता है उनका खत्म हो गया घर खरीदने का.
1: दैट इज बैड. सबरवाल साहब चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक कॉलर के पास सीधे चलते हैं. हेलो, रेडियो वॉइस पे आप पीके सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड.
3: हेलो, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर पीके जी.
2: जी
3: पीके जी, माय क्वेश्चन इज आई हैड अ एजेंट राइट, सो ही प्रॉमिस्ड मी कैश बैक ऑफ 1%. Property closed, everything done. Now he's saying, I will give the cash back when the builder pays me back. That's like 3 months now.
2: So can I even look at your name?
3: Anmol.
2: Anmol. Anmol ji, your name is so beautiful. And you have returned it 1% cash back? Ka?
3: Yeah, yeah, I have an email. Yeah.
2: तो ईमेल, चलो ठीक है, ईमेल भी काम करेगी लेकिन हम दिखा सकते हैं सर्टिफिकेट. पर बात यह मैं बताता हूँ, वो एजेंट आपको क्यों कह रहा होगा. पहली बात तो जो एजेंट आपको कैशबैक दे रहा है वो मैं कहा करता हूँ कि वो रियल्टर है ही नहीं, वो बंदर है. वो ये क्योंकि उसका देने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो कैशबैक दे रहा है क्योंकि उसका सर्विस नहीं है, उसका इन आउट सर्विसेज नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, उसको प्रॉपर ढंग से खरीदा नहीं होगा. उसने पूरा जो भी बंदा कैश दे रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास कुछ देने के लिए नहीं है. जिस बंदे के पास देने के लिए बहुत कुछ है वो कैश क्यों देगा, नंबर वन. नंबर टू, चलो हो गया कैशबैक में 1% दूंगा आपको, लेकिन जब जब जब तक आपकी क्लोज नहीं होता उसको तो कमीशन नहीं आ रही ना सर. जो उसको कमीशन अगर आ भी रही है, एक मिनट मुझे लग भी फिनिश, जो अगर कमीशन थोड़ी बहुत अगर उसको बिल्डर ने एडवांस दे भी दी है, दैट इज नॉट ए कमीशन अर्न्ड, दैट इज ए कमीशन एडवांस्ड. उसके बाद लिखा हुआ है क्लियर कि ये जो बिल्डर ने उसको मान लीजिए उसमें से मैं मानता हूँ 1%, 1.5%, मैं कहता हूँ 2% भी दे दिए, तो बिल्डर ने उस स्कोप के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट द कमीशन यू अर्न, दिस इज वी आर गिविंग यू एट एडवांस. अगर यूनिट क्लोज नहीं होगी तो ये पैसा आपने हमें वापिस करना है. कोई हिसाब से तो वो कर रहा है कि आपको नहीं दे रहा.
3: यूनिट क्लोज हो चुका है, रेंट पे भी चढ़ गया है कॉन्डो.
2: अच्छा, 90 डेज के अंदर ऑन एन एवरेज 90 डेज के अंदर उनको पैसा बिल्डर से आ जाता है.
3: अच्छा.
2: अगर आप मुझे बिल्डर का नाम बता दें तो, या प्रोजेक्ट का नाम बता दें तो मैं आपको बता देता हूँ.
3: नरेटिव कॉन्डो
2: तो अभी 90 दिन हुए ही नहीं. अभी तो
3: फरवरी में क्लोजिंग हुई थी.
2: फरवरी में आपकी ऑक्यूपेंसी हुई होगी सरकार?
3: नहीं नहीं, फाइनल क्लोजिंग हुई है जी.
2: मार्च अप्रैल मई बस आने वाले हैं पैसे. फरवरी मार्च अप्रैल मई बिल्कुल हो गए ना, 90 डेज बस अब आपके होने वाले हैं. अब मिडल तक हो जाएंगे क्योंकि मुझे याद है कि ये लंबी नैरेटिव लंबी चली थी. ये आपको 90 डेज के अंदर आ जाने चाहिए और वो आपको उसको आपको दे देने चाहिए. या एक और तरीका है, आप सीधा नैरेटिव कॉल करके उनसे पता कर लो कि कमीशन इशू हो गई है, जनरल क्वेश्चन कर लो उनसे आप.
3: नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि आई मीन वर्स कम वर्स अब रिको पे वी कैन गो टू रिको.
2: आप ईमेल के बेसिस पे जा सकते हैं क्योंकि दो काम हो सकते हैं. रिको इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1% ही प्रॉमिस, बट फॉर अनएथिकल बिहेवियर के बेसिस पे उनके पीछे जा सकते हैं.
3: ओके, एंड ही इज नॉट पिकिंग माय फोन कॉल, सो दैट्स अनदर थिंग.
2: आपकी आवाज गूंज रही है, सॉरी, क्या कहा?
3: मेरा फोन, ही इज नॉट पिकिंग माय फोन, सो ये भी एक इशू है.
2: टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, 2-3 प्रूफ अपने पास रख लीजिए. जवाब नहीं दे रहा वो भी प्रूफ साथ लगा दीजिए कि ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, एंड वो साथ लगा के रिको को कंप्लेन कर दीजिए और उसकी ईमेल साथ लगा दीजिए. इसने मेरे को 1% कहा था, ही इज डिसअपीयर्ड नाउ. और कुछ नहीं होगा तो कम से कम उसको वार्निंग मिलकर उसको एक्शन तो उसको रिको लेगा कम से कम. अनएथिकल बिहेवियर बदनाम कर रखा है लोगों ने रियल एस्टेट को.
3: थैंक यू.
1: अनमोल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सबरवाल साहब, सीधे चलते हैं एक दूसरे कॉलर की ओर. हेलो, आप रेडियो वॉइस से जुड़े हुए हैं और आप पी के सबरवाल सी जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड.
4: हेलो, इज इट, कैन यू हियर मी? Mr. Siddiq, PKG, I just want to say कि आप बहुत knowledgeable हैं and आपकी advice हमेशा बहुत अच्छी होती है. लेकिन आज मैं थोड़ी सी confused हूँ कि आपने reality check तो दे दिया young adults को कि उनकी क्या सूरत हाल है, but इसमें इसके लिए कोई tips या solutions भी अगर आप बता देते कि कैसे ये जो young लड़के लड़कियाँ हैं हमारे जो बच्चे हैं between the ages of 20 to 34, what should they do so that hopefully they can their dream does not vanish.
2: Beautiful. बहुत अच्छा मिसेज
4: दी. इंप्लीमेंट करें, ऐसे स्टेप्स इंप्लीमेंट करें जिससे उनको ना ये ड्रीम रियलिटी हो जाए. क्योंकि आपने बहुत थोड़ा सा भयानक ही था आपका एडवाइस, लाइक आपका जो ये था, बट आई थिंक वी नीड टू गिव देम होप. And I have solutions, but you are the expert, so I want your opinion.
2: जी, मैंने ना पिछले सेमिनार किया था, अभी लगभग ये बात इसको इस सेमिनार को भी लगता है 3 साल हो गए हैं, फॉर यंग किड्स. बहुत जबरदस्त रिस्पांस था, बल्कि इतना ज्यादा रिस्पांस था कि मुझे वो 2 करने पड़ गए थे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो थी वो 300 की थी और मेरे पास 700 के आसपास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी. तो मैंने डबल किया था वो सेमिनार, इट वॉज फ्री और उसमें लंच वगैरह ब्रेकफास्ट सब कुछ सर्व था, यंग बच्चों के लिए किया था. मैं सीधी सी बात करता हूँ, आपने बुढ़ापा अगर सुधारना है, उस सेमिनार में मैंने ये बात बोली थी, अगर फाइनेंशियली आपने बुढ़ापा सुधारना है तो जवानी को आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि जी आज हम मौज कर लें और बुढ़ापे में ऊपर वाला हमें देख लेगा, तो ऊपर वाला तुम्हें आज क्यों नहीं देख रहा, वो बुढ़ापे में ही क्यों देखेगा. तीसरी बात, ये भी कई क्वेश्चन वहाँ सेमिनार में उठे थे कि आज मैं मौज कर लूं और बुढ़ापे में मेरे बच्चे मुझे ध्यान से मुझे पाल लेंगे, मुझे मेरा ध्यान रखेंगे. तो मैंने उस बच्चे से क्वेश्चन किया था, तो जवानी में तूने कौन सा अपने माँ बाप को पाल लिया जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे बच्चे तुझे पाल लेंगे. तो सिंपल सी बात है, अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं बुढ़ापे के लिए, तो फाइनेंस के मामले में आपको अपने बच्चों की जरूरत नहीं है, उनके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपको आपको बड़ी तमन्नाओं से देखते हैं आपके बच्चे कि बड़ी बड़ा हमारा फादर हमारी मदर मेरी बुरे वक्त में मदद कर देगी. लेकिन आप ड्राइविंग सीट में बैठे होते हैं और आप मैं आपको छोटी सी बात अपनी बता देता हूँ, मैं अपनी छोटी बात बताता हूँ. बच्चा हमारा यंग बिल्कुल यूनिवर्सिटी से निकल के आया था और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ये बच्चों को ये होता है कि मेरी तो बहुत सख्त जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर हार लेके खड़ा होगा मेरे को इनवाइट करने के लिए. जब वो प्रैक्टिकलिटी देखते हैं मार्केट में आकर, तो उनको आटे भाव का दाल पता चलता है. वो बच्चे ने कहा कि मेरे को डाउनटाउन जाना है, मुझे अपना वन ऑफ योर कॉन्डोज मुझे दे दो रहने के लिए. तो मैंने बेटे को दे दिया, ही वॉज वेरी यंग, क्योंकि उसके दोस्त भी डाउनटाउन चले गए थे, मैंने दे दिया. कुछ दिन उसने कॉल ही नहीं करी, मैं चुप रहा. तो उसके बाद अचानक फादर्स डे आया और उसने मदर से बैठ के प्लान बनाया कि मैं मिल रहा हूँ, फ्लावर फ्लोर लाया अपनी तरफ से. तो फादर डे मनाने आया था, जैसे ही आया तो मेरे से उसको एक थप्पड़ पड़ गया आगे से. तो मैंने कहा एक बात को ध्यान रख लो, मेरा फादर डे एवरी डे है, साल में एक दिन नहीं है. तो गलती से ये फूल लेके साल में एक बार आओगे तो तुम्हारा घुसना बैन है यहाँ पर. और ये उम्मीद मत करना कि ये तुम्हारे भरोसे में फाइनेंशियली बैठा हूँ, मैं तुम्हारे से 7 जिंदगियां और चला सकता हूँ. मैंने अपना को इतना कंट्रोल, इतना ज्यादा मैंने जवानी में सैक्रिफाइस किया हुआ है बुढ़ापे को पालने के संभालने के लिए. तो वो दिन गया, आज का दिन है. आज भी मेरा बच्चा मेरे आया, मुझे किस करके गया है सुबह, इतना प्यार हमारा बढ़ गया है और बच्चा सेटल हुआ है. बच्चा मेरा, आई एम प्राउड ऑफ माई सन एंड माई डॉटर. क्योंकि उनको समझाना बहुत जरूरी है कि ये जवानी के 5-10 साल काम कर लो, बुढ़ापा आपका पूरा आपका सुधर जाएगा. उम्मीदें मत करो कि बुढ़ापे में देखा जाएगा. जब हाथ पैर तुम्हारे नहीं चलेंगे तब क्या खाक काम कर लोगे? जब हाथ पैर चल रहे हैं तभी तुम काम नहीं कर रहे. अयाशी और ये मौज सिर्फ जवानी में नहीं हुआ करती, बुढ़ापे में भी हम लोग बूढ़े बूढ़े मिलते हैं 70-80 साल के. जो फन होता है हमारी इवनिंग का, उसका कोई मैं बयान ही नहीं कर सकता. ये बच्चों को समझाना जरूरी है. 10% ऑफ देयर इनकम शुड बी सेव इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. अगर वो 5,000 कमा रहा है महीने का, 500 उसको एक तरफ रखना ही पड़ेगा. अगर वो 10,000 कमा रहा है तो 1,000 उसको एक तरफ रखना ही पड़ेगा. अगर वो 3,000 कमा रहा है तो 300 उसको रखना ही पड़ेंगे. ये उसको समझाना पड़ेगा. और जिस हिसाब से पैसा मल्टीप्लाई करता है ना, मैं वो मिलियनर बन जाएंगे बुढ़ापे में आते आते. अगर आप 10% एक्स्ट्रा सेविंग करोगे यू विल बिकम मिलियनर, यू विल डाई मिलियनर. अगर आप 10% ज्यादा खर्च करोगे यू विल डाई एज ए बेगर, एज ए पोअर. ये उनको समझाना पड़ेगा कि पैसा कैसे मल्टीप्लाई करता है, ये बताना पड़ेगा. ये माँ बाप का भी फर्ज है. कई बार वो माँ बाप की बात नहीं मानते. अगली बार मेरा सेमिनार होगा यंग बच्चों के लिए, आप जरूर लेके आइएगा. शायद कई बार दूसरे के कैंसर असर हो जाता है.
4: जी थिंग इज आपको ये जो सेमिनार है, पर्सनली आई फील कि बिकॉज ऑफ द वे द सिचुएशन इज अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ विथ वॉर्स एंड एवरीथिंग, अभी ये सेमिनार करना ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए. तो आप अभी करें ताकि हम हमारे बच्चों को लेकर आए और आपसे एडवाइस.
2: अच्छा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में कल प्लान करता हूँ और मैं इसको
4: ऑनलाइन ऑप्शन भी रखे इफ यू डोंट माइंड.
2: तीसरे क्वार्टर से पहले पहले मैं, अब आपका दूसरा क्वार्टर तो शुरू हो गया और थर्ड क्वार्टर से के अंदर अंदर मैं सेमिनार करूंगा. मैं करूंगा और मैं आपको, आप रेडियो सुनते रहिए रेडियो वॉइस, और ये फ्री सेमिनार होता है. खाना पीना सब फ्री होता है इसके अंदर, हम कुछ चार्ज नहीं करते. क्योंकि जब हम चार्ज कर लेंगे ना तो लोग पता क्या कहेंगे, पैसा कमाने के लिए सेमिनार कर रहा है ये. तो इसीलिए आई डोंट माइंड स्पेंडिंग $25,000-$40,000 खर्च करना अगर बच्चों को कुछ नसीहत मिलती है. और बच्चे वैसे ही मेरी वीकनेस है बहुत जबरदस्त. मैं जो चैरिटी करता हूँ यंग किड्स के लिए या सिक किड्स के लिए, बिकॉज मेरे अंदर एक नाजुक सा दिल है बच्चों के लिए. तो अगर बच्चे अगर समझ जाते हैं और उनकी जिंदगी समझ, मेरे ग्रैंड

0: तक बात तो पहुंची कि जवानी के कुछ साल बता लो, मेहनत कर लो और उसको बैलेंस में रखो, बुढ़ापा आपका सुधर जाएगा, ये बताना बहुत जरूरी है। मेरे पास कुछ है मेरे जानने वाले जिनके बच्चे रास्ते से भटक गए, अच्छे भले यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते बाहर निकल गए और बस बिना शादियों के बच्चे भी हो गए, जिंदगी खराब करके रख दी उन्होंने अपनी। कुछ ऐसे भी मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना ग्रैंड सन, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, अभी परसों मुझे पता चला है ही गॉट मार्क्स, हाउ मच यू नो दैट, 100 out of 100, नो 99, 100 out of 100। लगता ना ये चीजें सिखानी समझानी, उसके माँ उसके बाप के ऊपर भी बहुत बड़ा कैक जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स का कम मिलते हैं, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक समझाना होता है, और पेरेंट किस तरीके से चल रहा है ये भी बताना बहुत जरूरी है। पता चला बाप सिगरेट पी रहा है और बेटे को बोल रहा है सिगरेट मत पीना बहुत बुरी बात है, तू क्यों पी रहा है भाई, बाप शाम को 2 पैक लगा रहा है और बेटे को बोलता है शराब बड़ी बुरी बात है। कोई चीज समझाने से पहले अपने ऊपर अमल करके देखो, तब पता चलता है कि आपकी बात पर दम कितना है। जी
1: बहुत ठीक
0: है जी जी,
1: तो सबरवाल साहब बहुत अच्छा सेशन रहा, बट वक्त का तकाजा है कि हमें ना चाहते हुए भी आपको आज के लिए गुड बाय बोलना पड़ेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबरवाल साहब आपका।
0: आपके आगे आधा घंटा बीतता पता भी नहीं चलता, और अगले बुधवार फिर मुलाकात करेंगे। मैं जरूर बोलूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को लाइक करिए, आपको बहुत कुछ ऐसी बातें वहां मिलेंगी। पीके सबरवाल ऑफिशियल, पीके सबरवाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम में देखिए, बहुत कुछ मेरे अभी पिछले टॉपिक्स बड़े फेमस हुए थे, घर और गृहस्थी, एक हुआ था घर और मकान, ये कुछ चीजें मेरी बड़ी वहां पर फेमस हुई और बहुत लोगों ने लाइक किया। पीके सबरवाल ऑफिशियल, थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी।
1: थैंक यू सबरवाल साहब। तो दोस्तों ये था आज का इंसाइटफुल सेशन पीके सबरवाल जी के साथ, रियल एस्टेट का के हर सवाल का सीधा और प्रैक्टिकल जवाब। अगली वेंसडे फिर सबरवाल साहब से मुलाकात होगी, तब तक के लिए चलते हैं वापस स्टूडियो।
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
3: हाँ जी मित्र भाइयों, ये डो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए चलते हैं रॉजर्स एम्प्लॉई वकार जी के पास। बेंद्र भाइयों, रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के लिए वकार जी से एक बार बात और मुलाकात जरूर करें। वकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में, प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं आपकी बेस्ट डील्स के बारे में।
4: थैंक यू सो मच जतन भाई, आपको और तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर है, बंडल ऑफर्स है, इसमें टीवी है, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का, सुपर फास्ट फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9:30 मिनट हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के, डायरेक्ट बैक होम कॉल करें, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट, लेटेस्ट मॉडर्न अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत ही चीप रेट पे दिला देंगे। रॉजर्स सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है, और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है। प्लीज कॉल कीजिए, बहुत अच्छी ऑफर्स है, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, जरूर एक बार कॉल करें। नंबर है मेरा 6478648000, 6478648000। मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लाई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 6478648000, 6478648000।
3: वकार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों कॉल जरूर करें, वकार जी से एक बार बात और मुलाकात जरूर करें, रॉजर्स की बेस्ट डील्स के लिए एक ही नाम वकार खान, ये वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

And here we meet again on the day जहां दुनिया कहती है, मनवाती है, क्योंकि खुद मानती है कि भाषा को जब हो confusion, then interpreters होते हैं solution. जुबा के जादूगर, meanings के master, and we can even say कि आजकल के इस Google translator के दादाजी and पर दादाजी भी, जो अगर ना होते ना हर जगह हर बात में तो हो सकती थी गलत फहमी अभी, है ना. जो वो चांद होते हैं जिनके बिना अलग अलग भाषाओं में बैठे लोगों की मीटिंग्स ना समझी के अंधेरे से घिरी रहती, नहीं, और ट्रेवल टाइम पर जिनकी प्रेजेंस घुमई के एक्सपीरियंस में चार चांद तो डेफिनेटली है लगा देती. सो ऑन दिस इंटरनेशनल इंटरप्रेटर डे टुडे, दिस इज स्वाति एंड तन्वी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि जहां दुनिया आजकल शॉर्ट फॉर्म्स को समझने में कंफ्यूज्ड है, वहां ये इंटरप्रेटर्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की एक्चुअली रीढ़ है, नींव है, जिनके बिना हर कॉन्फ्रेंस का हाल ऐसा हो जाएगा लाइक दैट एंड सीन ऑफ अंदाज अपना अपना कि सब बोल रहे हैं पर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. बस हर कोई यही कह रहा है कि यू नो व्हाट आई मीन.

RB brand name cosmetics, hair care, health and beauty products, fine chocolates, designers and glasses, fragrances खरीदना चाहते हैं अपने लिए या अपनों के लिए, पर price tag देखकर खुद को बस समझा लेते हैं, तो भाई Liza's Cosmetics Warehouse Sale जरूर जाएं। सभी brands मिलेंगी and 80% तक की savings भी होगी। यानी भारी बचत और ब्रांड्स दोनों बातें हमारी पसंद की। मदर्स डे के लिए तो गिफ्ट्स की परफेक्ट वैरायटी मिलेगी। बट यस, इट्स ओनली ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। जाए एट 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट, मार्कम, हाईवे 7 एंड 404 का इंटरसेक्शन, और विजिट लीजास कॉस्मेटिक्स.com।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: आपकी दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रांग। तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पन्ना शाह एट 4376733125। 10 मिनट्स की कंसल्टेशन एकदम फ्री है। कॉल टुडे एट 4376733125।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
5: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव। चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ। ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज। ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। Wayne's Auto Group इज ऑलवेज देयर। आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

0: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 PM.
1: Right, तो CMR 101.3 FM पर आप हैं स्वाति और पायस्विनी के साथ और फ्रेश प्रीज न्यू रिलीज का है टाइम. तो चलिए एक नए गाने से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. ये गाना अपकमिंग फिल्म से है जो कि इंटेंस जेंसी रोमांस ड्रामा है करण जौहर प्रोडक्शंस की, धर्मा प्रोडक्शंस की, और इसमें अनन्या पांडे हैं एंड लक्ष्य है. तो फ्रेश पेयरिंग आपको देखेगी एक लव स्टोरी में. इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स बने हैं दोनों, तो कैंपस रोमांस आपको देखने को मिलेगा. साथ में ये जो गाना है ना, स्पेशली ये आप देखेंगे ना, तो इसमें लैबोरेटरी का जो नॉस्टैल्जिया है, अगर आपने कभी कॉलेज की लैब में काम किया है तो आपको वो जरूर नॉस्टैल्जिया होने वाला है. मुझे तो बहुत ज्यादा हो रहा था, कॉलेज डेज याद आ रहे थे, बहुत ज्यादा लैब सीन्स जो होते थे. अच्छा, गाना जो है ना, ये जब आप देखेंगे भी ना, तो इसमें कलर कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ लव लैंग्वेज, ये वाली बात ना थोड़ी समझ में आएगी. वरना अक्सर देखा गया ना, मजाक बनाते हैं कपल्स का जो कलर कोऑर्डिनेटेड दिखते हैं, पर इसमें समझ में आएगा कि नहीं भाई, ये भी लव लैंग्वेज है. गाना जो है ना, ये रिफ्रेशिंग है, अपबीट है, क्यूट सा है, रोमांटिक है, मेलेडी भी है येट ग्रूवी भी है, रिदमिक पेपी है, वाइब बहुत ब्रीजी है, फील गुड एनर्जी है, ओल्ड स्कूल रोमांस वाली स्वीटनेस भी है. मैंने बहुत सारी एडजेक्टिव्स यहाँ बता दिया आपको कि ओवरऑल आप कह सकते हैं मुझे अच्छा लगा है. मतलब ऐसा गाना है जो सुनते ही क्लिक कर जाता है ना, और प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए जगह बना लेता है. मतलब मेरी प्लेलिस्ट में तो ये, मैंने जब से सुना है, लूप में आ चुका है. वोकल्स पर राघव चैतन्य और जुनीता गांधी हैं, वेरी एप्ट चॉइस फॉर द म्यूजिक एंड द फील ऑफ द सॉन्ग. गायकों की जब केमिस्ट्री मुझे लगता है बैठ जाती है ना, तो डुएट्स ऑटोमेटिकली अच्छे लग सकते हैं, है ना, मानेंगे. सुंदर सी कॉम्पोजिशन है सचिन जिगर की, एंड आई मस्ट मेंशन हियर लिरिसिस्ट, बहुत अच्छा लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने. एक्चुअली मोस्टली मुझे इनके लिखे गाने पसंद आते हैं, मैं देखती हूँ, सो नो सरप्राइज विद दिस वन टू. रिलेटेबल होते हैं, सिंपल तरीके से फीलिंग्स को कन्वे कर पाते हैं, यही तो खासियत है जनाब की. गाना भी कुछ ऐसे ही कहता है, टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज खासियत. आप सुने और मुझे बताएं आपको भी कुछ लगी क्या इसमें खासियत.

0: बात हो रही है खासियत की, और जब खासियत की बात होती है तो एक और जगह जिसकी खासियत क्या क्या है उसके साथ आपको बताती हूँ, मिलवाती हूँ। रूहानी कॉलेज की बात मैं अक्सर बताती हूँ, खासियत वहाँ पे बहुत सारी है, एक नहीं बहुत सारी। जैसे कि वहां से अगर आप RMT का प्रोग्राम करते हैं तो विद इन अ ईयर आप RMT बन के रेडी हो जाते हैं, यानी कि विद इन अ ईयर जब आप रेडी हो जाते हैं, लाइसेंस हाथ में है, तो आप अच्छे से कमाना शुरू कर पाते हैं। और साथ में अगर आप वहां से प्री मेट कोर्स करवाते हैं अपने बच्चों को या खुद करना चाहते हैं, तो गारंटीड बहुत कम टाइम में, जो यूजुअल टाइम लगता है उससे कम टाइम में आप डॉक्टर बन के रेडी हो जाते हैं। कैसे क्या होता है उसके लिए बात करवा देती हूँ आपकी मैं ओम जी से, फ्रॉम रूहानी कॉलेज। ओम जी वेलकम।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: अच्छा ओम जी, हम खासियत की बात कर रहे थे गाने में भी कि किसकी क्या क्या खासियत है, तो रूहानी कॉलेज की ये दो खासियत तो मुझे पता है, मुझे और भी पता है क्योंकि मैं आपके यहाँ तो उसमें भी आई थी कॉन्वोकेशन में, मैंने देखा था इतनी स्माइलिंग फेसेस के बच्चे इतने खुश होते हैं, बच्चे बोले तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, एक करियर को एक डायरेक्शन मिलती है, व्हेन यू नो यू आर सेटल्ड नाउ फॉर फ्यूचर इज सिक्योर नाउ, तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि कई बार कोर्सेज तो हम लोग कर लेते हैं पर जब लाइसेंस लेने की बात आती है तो कई बार पास नहीं कर पाते, पढ़ाई कर ली लेकिन पास नहीं हो पाए, या कई बार वो भी ले ली तो नौकरी नहीं मिल पाती। रूहानी कॉलेज आई नो पास कराने में पूरी गारंटीड रिजल्ट होता है आपका 100%। आप जितनी तरीके से मेहनत करते हैं वहाँ पे आप बताते हैं कि जॉब की गारंटी होती है, कहीं ना कहीं जो काम कर कोर्स करके निकलते हैं उनके पास ये भी एक थोड़ी सी ट्रेनिंग होती ही है कि कल को अपना काम खोलना चाहे वो खोल सकते हैं, और जो इनकम आप बताते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे हमेशा कि हाउ इट इज पॉसिबल, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं।
1: जी देखिए, आज का जो मार्केट है इसमें सबसे पहले हमें कोई भी कोर्स लेते हैं हमें देखना चाहिए कि इसकी करने के बाद में क्या इसकी रिस्पॉन्स है। कोई भी आप जो भी कर रहे हैं, कोई इवेंट जो बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक सिंपल चीज होता है जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दे आर इन द बिजनेस, सो व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज आप एक साल बाद वहीं पे होंगे जो आज ऑलरेडी वहां पे हैं लोग, देन आप जाकर देखिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो हमारे RMTs ऑलरेडी बन चुके हैं, जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, उनके पास में जाओ और देखो कि कितने अर्न कर रहे हैं महीने का। हालांकि ये लगता है कि जैसे बहुत बड़ी अमाउंट है, 12,000-15,000 महीने की, बट दिस इज ट्रू, दिस इज फैक्ट। और इतनी एक तो सैलरी इतनी है, प्लस में डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप किसी क्लिनिक में वैसे ही चले जाओ, बोलो कि RMT कि मेरे लिए कोई जॉब है क्या, आपको इमीडिएट जॉब मिलती है। तो ये चीजें पहले मैं बोलता, पहले जाओ पता करो और अपनी लाइफ को चेंज करो, क्योंकि जस्ट वन ईयर का कोर्स है, उसके बाद में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास जो टीचर्स हैं रूहानी कॉलेज में काफी हाईली क्वालिफाइड है, ऑनर्स लेकर के जो सारे जो RMT ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस ओनर कोई और है बिजनेस चला रहा है, चलो पास हो गया ठीक है, नहीं पास हो तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब बिजनेस ओनर्स जो खुद उस प्रोफेशन में हो, उस सेक्टर में हो, वो खुद इन्वॉल्व हो इतना ज्यादा कि आपको किसी भी तरीके से जो भी हेल्प चाहिए, आपको मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्लासेज होती हैं, जो भी टाइम को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग क्लासेज, तो हमने इतना सारा कुछ किया हुआ, इतना अफर्ट किया हुआ, इतना ज्यादा हमने मेहनत किया हुआ है, और हर एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान रखते हैं कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, आपको क्या इम्प्रूव करना है। तो हर एक बच्चा हमारे लिए एक होता है कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है रूहानी कॉलेज का, तो
0: इंडिविजुअल इज एन एग्जाम्पल फॉर यू कि भाई यहाँ से हर कोई जो पास करके निकलेगा वो हर कोई जाके अपने आप में एक रेफरेंस बन जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो यही कोशिश है कि ऐसा एक RMT बने जो लोगों की जो ट्रीटमेंट कर पाए, लोगों को ठीक कर पाए, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी उनके अंदर हो, तो सारा चीज हम यहाँ करते हैं। और दिन रात हम इसके पीछे अपनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत दिन रात होती है, और हर तरीके से प्लेटफॉर्म, जैसे मान लो किसी के पास में टाइम नहीं है क्लास करने का किसी टाइम पे, तो हमारे रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, वो भी वॉच कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून कभी भी 24 आवर, और कॉलेज भी 7 डेज ओपन है हमारा, कभी भी आकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
0: वेरी नाइस, तो 7 दिन कॉलेज खुला है, टाइमिंग्स बहुत सारे वेरीड टाइमिंग्स हैं, आपके पास समय नहीं है का बहाना नहीं होगा, और फाइनेंशियल ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, बताते हैं अगर आप EI पे हैं तो भी मदद करते हैं रूहानी कॉलेज, नहीं है तो भी मदद करते हैं, कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप एक बार बात करें, अपनी जो भी आपकी समस्या है समय से रिगार्डिंग या कोर्स से रिगार्डिंग या फिर फाइनेंस से रिगार्डिंग, आप एक बार बात करें, आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन रूहानी के पास ज़रूर होगा आपके लिए। नंबर मैं यहाँ बता देती हूँ, 905-731-2555, 905-731-2555। और एक बार बात करें, ruhanicollege.com वेबसाइट है, कैनेडी और क्वीन का इंटरसेक्शन है, तो इट्स वेरी एक्सेसिबल, आना जाना भी। आप एक बार समय निकालें, बात करें, समझें क्या क्या कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं तो यहाँ पे 2-3 की ही बात करती हूँ कई बार, लेकिन देयर आर सो मेनी कोर्सेज। और कॉलेज का जो एक कल्चर है पढ़ाने का, वहाँ से लोग पास आउट करें, उससे रिलेटेड जो इनका मिशन है वो तो सभी कोर्सेज के लिए सेम है। तो आप कोई भी कोर्स ऑप्ट करते हैं, आपके लिए जो आपको उचित लगता है, आप देखिएगा आपको कुछ बेनिफिट ही होगा। थैंक यू ओम जी, एंड गुड लक फॉर टुमारो एंड टुडे एंड फ्यूचर। हम करते हैं बात जल्दी से फिर से।
1: हाँ जी, थैंक यू जी,
0: थैंक यू जी।

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
3: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
4: फरवरी का महीना होता है बहुत स्पेशल. फैमिली डे भी होता है, वैलेंटाइंस डे भी. तो मॉर्गेज रेट्स विद अमित खुराना इस महीने के लिए है बहुत स्पेशल. 3 इयर्स फिक्स 3.59%, 5 इयर्स फिक्स 3.74%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.44%. साथ में $4,100 तक का कैश बैक भी, प्लस $1,500 तक का ज्वेलरी गिफ्ट कार्ड भी. सो कॉल अमित खुराना फॉर फ्रेश एंड फेयर February month mortgage rates at 647-341-2785, 647-341-2785, or visit amitkurana.ca.

0: राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
0: ये है राजधानी
1: स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: घर कहीं भी ले

0: वैली नॉर्थ हंडे आपको दे रहा है मौका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Today's trends and trolls. Kuch seedhi baat, kuch golmol.
2: Math.

मैं तो बस फॉलो करती हूँ और आप लोगों से शेयर कर देती कि आज के कुछ चर्चाफुल हाइलाइटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर इट्स फीफा फैन फेस्टिवल, टिकट्स जिसके एक महीना पहले से अब अवेलेबल हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं। जून 11 से जुलाई 19 तक ये फेस्टिवल होगा एट फोर्ट यॉर्क नेशनल हिस्टोरिक साइट एंड द बेस्ट वे पार्क। जनरल टिकट्स इसके बिल्कुल मुफ्त हैं, जी हाँ फ्री है, बट ऑनलाइन रिजर्वेशन या रजिस्ट्रेशन आप कह लें एडवांस में आपको करना होगा इसके लिए, क्योंकि गेट पर ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे आज मन कर रहा है चलो वहां चलते हैं गेट पे टिकट ले लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। पहली बात हुई थी इसकी कि $10 के टिकट होंगे जनरल वाले भी, बट फिर जब काफी क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने अपना माइंड बदल लिया फॉर गुड। एंड हाँ, जनरल एडमिशंस वाले विल नॉट बी अलाउड टू री एंटर। एक बार आप घुस गए तो घुस गए, अगर बाहर निकलते हैं ना किसी वजह से तो दोबारा नहीं घुस पाएंगे। पर प्रीमियम टिकट्स अगर आपके पास है जिसका प्राइस $100 से $300 होगा बिफोर टैक्सेस एंड फी, तो आप रीएंटर भी कर पाएंगे गारंटीड, और गारंटीड कुछ एक्सपीरियंस भी आपको अलग मिलेंगे। मैक्स 4 जनरल एडमिशंस फ्री वाले आप रिजर्व करा सकते हैं पर ट्रांजेक्शन, और ये मई 15 तक आपको बार कोड भी इसका मिल जाएगा अगर आपने रिजर्वेशन कराया है तो। देन ट्रेंडिंग इज ऑल्सो होंडा, क्योंकि ओंटारियो में अपने $15 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट प्लान को उन्होंने इनडेफिनेटली अभी रोकने का सोच लिया है। देन क्या होगा इस पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, यूएस का भी बीच में आ रहा है, यू नो टैरिफ्स वाली बात आ रही है, बट देन देखते हैं और आगे क्या होता है। देन ट्रेंडिंग इज टेड टर्नर, क्योंकि CNN की जो फाउंडर हैं रहे हैं टेड टर्नर, वो अब नहीं रहे हैं, 87 ईयर्स के थे। देन आई एम सीइंग ट्रेंडिंग इज अलर्ट रेडी सिस्टम टू ओंटारियो में, कैनेडा के जो अलर्ट रेडी सिस्टम है उसकी कल टेस्टिंग होगी, तो आज सबको बताया जा रहा है कि कल आपको अलर्ट रेडी सिस्टम की जब टेस्टिंग होती है तो मोबाइल पे साउंड्स आती हैं, रेडियो पे होता है उस वक्त, तो आप समझ जाएं कि इट्स जस्ट अ टेस्टिंग। देन रेड्रेस डे इज ट्रेंडिंग टू ऑनर मिसिंग एंड मर्डर्ड इंडिजिनियस वुमेन एंड गर्ल्स एंड रेज अवेयरनेस फॉर विक्टिम्स। एंड भारत में बंगाल के इलेक्शंस बेशक खत्म हो गए पर उससे जुड़ी खबरें तो अभी भी चर्चा में है, जैसे कि पोस्ट इलेक्शन न्यूज में ममता दीदी इज इन नो मूड टू रिजाइन, वो कहती है मैं गलत हुआ है इलेक्शन, मैं तो रिजाइन नहीं करूंगी। प्लस आज ही जो सुवेंदु अधिकारी हैं उनके क्लोज एड चंद्रनाथ रथ जी का भी मर्डर हो गया, और इस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि पोस्ट इलेक्शन हिंसा शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ शपथ ग्रहण की भी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, और यहाँ पर मौसम हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है। कहा जा रहा है वीकेंड पर मदर्स डे थोड़ा रेनी रह सकता है, पर चेरी ब्लॉसम्स चर्चा में हैं। अगर आप वीकेंड पर नहीं जा पाए पिछले, तो डोंट वेट फॉर कमिंग वीकेंड, क्योंकि एक तो रेन के चांसेस हैं, दूसरा पता नहीं तब तक कितने खिले खिले बचे है ना। तो शाम को आज या कल जल्दी से निकलते समय देख के आए फूल खिले हैं गुलशन, और पिक्चर्स लें, शेयर करें, फ्लॉन्ट करें।

0: काव्या होम्योकेयर। काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, 6477602779।
1: जी हाँ, 6477602779 नंबर है काव्या होम्योकेयर पर मीता ओझा जी को कॉल करने का। यहाँ पे जब आप कॉल करेंगे तो एक चीज की गारंटी है कि जो भी छोटी बड़ी हेल्थ इश्यूज से आप गुजर रहे हैं घर में, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, यू नो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं कई बार और हम सोचते हैं ये दवाई नहीं खानी, ये वो नहीं करना, तो होम्योपैथिक मेडिकेशन एंड राइट ट्रीटमेंट विद दोज मेडिकेशन, वो आपको काव्या होम्योकेयर पर जरूर मिलेगा। ब्यूटी इज कि अगर आप किसी भी वजह से क्लिनिक तक नहीं पहुंच सकते, विच इज एट 10 कोट्रेल बुलेवार्ड ब्रैम्पटन, तो भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, मतलब हेल्थ के लिए नो एक्सक्यूज। साथ में दवाइयाँ आपके घर के दरवाजे तक पहुँच सकती हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में कहीं भी। एंड एज शी ऑलवेज मेंशंस कि इंश्योरेंस भी कुछ हैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कवर करती हैं, तो पता करें भाई कि आपकी इंश्योरेंस कवर करती है या नहीं, बचत भी होगी और ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा, है ना। और आजकल तो इनके

0: स्वाति जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय लिसनर्स।
1: गुड इवनिंग। अच्छा मीता जी, हम अक्सर बात करते हैं कई बार ऐसी बीमारियों की जो सभी को होती हैं, या विमेन हेल्थ पर हम बहुत फोकस करते हैं। आज आई वॉज थिंकिंग टू टॉक अबाउट, आई नो इट्स नॉट नवम्बर और मोवेम्बर, बट आई वॉज थिंकिंग टू अबाउट मेन्स हेल्थ। एक चीज के लिए हमने अक्सर देखा है मेन में एक प्रॉब्लम, एक एज के बाद अक्सर ही प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड जो होती हैं, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है?
0: हाँ जी बिल्कुल स्वाति जी, तो आज उसी के बारे में हम देख लेते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसको गुदुर्द भी कहा जाता है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है कि मेन में यूरिनरी ब्लेडर के बिल्कुल नीचे पीछे की ओर वॉलनट के साइज की ये ग्लैंड होती है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। अब आप कह लो कि आफ्टर द एज 50s में जाके मेल में ये ग्लैंड का धीरे धीरे एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जब ग्लैंड एनलार्ज होती है ना, ब्लेडर के बिल्कुल नीचे पीछे की ओर है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये साइज में बढ़ने लगेगी तो ब्लेडर को पुश करेगी। अब ब्लेडर के ऊपर प्रेशर आता है तो उस करके इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप देखोगे कि नाइट टाइम यूरिन की फ्रीक्वेंसी, रात को उठ उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है। स्टार्टिंग में नाइट टाइम में होगा और उसके बाद ग्रेजुअली दिन में भी वॉशरूम जाना पड़ेगा आपको। सो ज्यादा बार यूरिन जाने की अर्ज होती है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी रहती है, और इसके साथ यूरिन का फ्लो है वो स्लो हो जाता है। सो फ्लो इतना कई बार स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद स्लोली यूरिन पास होगा। एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि यूरिन पास ही नहीं हो पाता, कि कुछ एक केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि फिर उनको ईआर जाके या कैथेटर लगाना पड़ता है, तब जाके यूरिन पास होगा। तो ऐसे में एक और प्रॉब्लम भी प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है, जो आप कह लो कि ये तो हमने देखा कि 50s के आगे ये पाया जाता है, लेकिन 50s या उससे यंगर एज में जो कंडीशन होती है वो है प्रोस्टेटाइटिस, मींस के प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है ये एकदम से भी होगा या ग्रेजुअली भी हो सकता है, तो कुछ एक टाइप्स में ये बार बार प्रॉब्लम चलती रहती है कि महीनों तक सालों तक मरीज जो इससे सफर कर रहे होते हैं। और अक्सर मेल में या तो यूटीआई हुआ है, यूरिन में इन्फेक्शन, या प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे में उसको सही होने में ये काफी टाइम लेता है। और प्रोस्टेटाइटिस जब होता है तो उसके साथ क्या होगा, डिसयूरिया यानी कि पेनफुल यूरिनेशन की प्रॉब्लम, यूरिन पास करते वक्त बर्निंग होना, पेन होना, पेन इन पेल्विक एरिया, एब्डोमेन, लोअर बैक में ये पेन जाएगा, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होगी, उसमें भी आपको स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। अब ये दोनों कंप्लेन है तो उसमें क्या होगा कि पूरा प्रॉपर आपका ब्लेडर खाली नहीं हो पाता, तो जो रेसिडुअल यूरिन यानी कि बचा हुआ यूरिन है ब्लेडर में, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करके साथ में कई बार यूटीआई यूरिन में इन्फेक्शंस होते रहते हैं। और फिर प्रोस्टेटाइटिस के साथ भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी, इनिशियली आप कह लो कि नाइट टाइम में फ्रीक्वेंसी रहती है, उसके बाद दिन में भी, और क्लाउडी यूरिन पास होना, यूरिन में ब्लड जाना, और इसके साथ साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स के एकदम से ठंड लग के फीवर हो जाना, सो चिल्स के साथ फीवर, ये भी इसका एक सिम्टम देखा गया है। अब मोस्टली ये प्रोस्टेटाइटिस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जो बैक्टीरिया यूरिन से लीक होके प्रोस्टेट ग्लैंड में चला जाता है। तो समटाइम्स इट कुड बी ड्यू टू नर्व डैमेज कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इंजरी, सर्जरी, सिस्टोस्कोपी हुई, के अंदर कैमरा डाल के चेक करते हैं कई बार, यूरिन पास नहीं हो पाना तो उससे आपने कैथेटराइजेशन करवाना पड़ा था, तो और प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी भी की है, तो ये सारी प्रोसीजर के साथ उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार इसका जो रीजन है आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यहाँ पे अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट है या फिर प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है जिस करके आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में ये ट्रीटमेंट आपको काफी हेल्प करेगा। और इसके साथ बर्निंग है, पेन हो रहा है वाइल यूरिनेटिंग, या फिर स्लोली यूरिन पास होना, नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी है यूरिन की, ये सारे सिम्टम्स को आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट इसका जो है वो चलेगा कुछ एक टाइम, जैसे मैंने कहा कि मेल में ये इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे में उसको सही होने में इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन आपके सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे और कुछ एक टाइम कंटिन्यूस लेने से पूरे ट्रैक का ये मेडिकेशन क्लिंजिंग करेगी, तो बॉडी को ही इतना स्ट्रांग बनाती है कि

0: इन्फेक्शन जो है वो बॉडी खुद ही इसको खत्म करे. प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट है, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, या किडनी हेल्थ रिलेटेड आपको कोई इश्यू आ गया है, किडनीज वीक हो रही हैं, क्रिएटिनिन लेवल हाई जाना, इंटरनल ऑर्गन के इन्फेक्शन हैं, या हेपेटाइटिस लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम आई, सो कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं. और इसके अलावा मसाज थेरेपी के लिए आप काव्या होम्योकेयर से मेरा कॉन्टेक्ट जरूर करें.
1: परफेक्ट. हमने ये समझ में आया कि बीमारी कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, आपको काव्या होम्योकेयर पे एक दुरुस्त ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा. तो अगर आप किसी भी तरीके की समस्या से इस वक्त उलझ रहे हैं या आपके कोई अपने हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि दे स्टे हेल्दी और वो अपनी एक हेल्दी लाइफ की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, जो हम ऐड में भी सुनते हैं. उसके लिए मीता जी को एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें, काव्या होम्योकेयर एक बार ज़रूर जाके आए, वरना फ़ोन पे भी कंसल्टेशन इनिशियल हो सकती है. नंबर टू कॉल हर इज 6477602775. नोट नहीं कर पाए मुझसे नंबर ले सकते हैं, वरना वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इजीली गूगल करेंगे तो भी नंबर मिलेगा. इट्स काव्या होम्योकेयर डॉट कॉम. थैंक यू मीता जी, अगले हफ्ते फिर बात करते हैं विद अ न्यू टॉपिक.
0: जी थैंक यू स्वाति जी.
1: थैंक यू.

0: really?
1: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com। विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माई मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कहम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर। For details, visit mymechanicauto.ca.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर
4: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर
6: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी जसी को छोड़िए क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए परफ्यूम स्किन केयर मेकअप हेयर केयर डिजाइनर सनग्लासेस चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड वर्साचे अरमानी अजारो एंड मोर आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401 सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर विजिट lisascosmetics.com
7: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाय कर सकते हैं फॉर everything automotive, चाहे हो डेली commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com
8: नटवर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती
9: मगर क्यों पिताजी नहीं माने क्या
8: वो बात नहीं है हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो ना वो गाने बजाते हैं ना तुम अच्छा गाते हो
9: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा
0: हाँ सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा रेडियो CMR एट 5 PM योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव

And released today in 1994 was the film जहाँ से सैफ अली खान actually hit हुए थे और ओले ओले गाना वो तो सुपर हिट हो गया था. इट्स ये दिल लगी जिसका नाम यश राज ने इनिशियली रखा था दिल लगी, पर धर्मेंद्र के पास उस टाइटल के कॉपीराइट थे, तो ही रिफ्यूज टू गिव अप, मैं नहीं दूंगा. एंड नाम में फिर जुड़ गया ये. फिल्म वॉज अ रीमेक ऑफ हिट हॉलीवुड फिल्म सबरीना, वेर अक्षय डिड हम्फ्री बोगार्ट का रोल, ऑड्री हेबर्न का काजोल ने किया था एंड विलियम होल्डन का सैफ अली खान ने. फिल्म वॉज अ लव ट्राइंगल एंड वॉज अ हिट ऑफ 90s. और ओले ओले गाना, वेल उसके बारे में तो क्या कहना, इट वॉज हिट एज ओले ओले. और बाद में भी वेन यो यो हनी सिंह सैम्पल्ड इट फॉर दिस गाना.

0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टर। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: माय प्रॉपर्टी माय चॉइस, माय रियल्टर द रियल एस्टेट कंपनी, और विजिट myrealco.com। नॉट इंटेंडेड टू सॉलिसिट बायर्स एंड सेलर्स ऑलरेडी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माय रियल्टर के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा। विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ इस कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai, call kare 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माय रियल को .com.
2: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Hum honge aapke saath hamesha.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
7: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
8: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
7: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: रेट्रो इन मेट्रो, नुक्कड़ क्लासिक्स।

0: through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: FIFA ke tickets chahiye ghar, to jaye Don Valley North Hyundai par. Ab poochho wahan kyun? Unhone khoob samjhaya hum sab ka man. Ab dekho na, FIFA ke tickets lena. कोई छोटी बात थोड़ी है, मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना। ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग, पर साधारण इंसान है ना। पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान। अब पूछे कैसे, एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन, और फिर ड्रॉ होगा जून में। जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के। अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना, तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में। अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज, तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे। या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं, तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे। देखिये, ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए। अब आपको करने अपने प्रयास, जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई, वुडबाइन एवेन्यू, मार्कम। फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम।

अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com। फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स 4.14%, 3 इयर्स फिक्स 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: आपकी दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पंडा शाह एट 4376733125। 10 मिनट्स की कंसल्टेशन एकदम फ्री है। कॉल टुडे एट 4376733125।
4: घर कहीं भी लेना हो

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844 தட்ஸ் 6478648844
1: ஆர் விசிட் teamsabarwal.com
2: Your search ends here.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
4: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

व्हाट अ क्लासिक. आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर स्वाति और हैरी के साथ. बट डिड यू नोटिस दैट लवली ब्रिलियंट साउंड ऑफ अकॉर्डियन इन दिस सॉन्ग. शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक था. मैं देख रही थी उनके हिट गानों में, बहुत सारे गानों में इस इंस्ट्रूमेंट का काफी बखूबी इस्तेमाल किया जाता है और वो गाने की ब्यूटी को अच्छे से एनहेंस करता है. बट जानते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हिंदी फिल्म म्यूजिक में पहली बार कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? मैं भी नहीं जानती थी, पर डेफिनेटली जिज्ञासा हुई तो पढ़ा. और मैंने पढ़ा कि मई 1869 में साइरिल डेमियन नाम के एक ऑर्गन एंड पियानो प्लेयर थे ऑस्ट्रिया के. उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बॉक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट को, जो कभी भी कहीं भी ले जाकर बजाया जा सकता है, पेटेंट करा लिया जाए. तब उन्हें पता नहीं था कि तब से 121 साल बाद ऑस्ट्रिया का ये इंस्ट्रूमेंट हिंदी फिल्म्स में, भारत में म्यूजिक में एक फ्रेशनेस लेके आ ही जाएगा. हुआ भी 1950 में फिल्म बन रही थी दास्तान, जिसमें राज कपूर साहब थे, सुरैया थी एंड म्यूजिक था नौशाद साहब का. तो नौशाद साहब को कंपोजिशन के लिए एक गाने के लिए एक नई सी अलग सी साउंड चाहिए थी अकॉर्डियन की. ऑब्वियसली बजाने वाला भी चाहिए था. तो उनके एक पारसी ड्रमर थे उनके ऑर्केस्ट्रा में, कवास लॉर्ड. उन्होंने क्या किया, गुडी सिवाई साहब को पकड़ के लिया, जो पारसी थिएटर में अकॉर्डनिस्ट भी थे. अब हिंदी फिल्म्स में अकॉर्डियन की साउंड ने उसके बाद जैसे घर ही बना लिया. गाना था तारारी तारारा. सो ऑन दिस अकॉर्डियन बेशक समय के साथ बदलते गए, पर उसका जादू वाली नोट. दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद द सॉन्ग जो पहला गाना था जिसने हिंदी फिल्म्स में अकॉर्डियन को इंट्रोड्यूस करवाया था, हम सब को से मिलवाया था, तारारी तारारा. मिलते हैं जल्दी, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी टू यू.

0: 93FM.
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटे में मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत मुमकिन है कि हम एक माहदे तक पहुंच जाएं. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने तयशुदा शरायत मान ली तो जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म और आबनाए हुरमुज सब के लिए खोल दी जाएगी. दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ पैगाम के तबादले की तस्दीक करते हुए कहा है कि जंगमंदी की अमरीकी तजावीज़ के साथ इन पैगाम के मतन का भी जायज़ा लिया जा रहा है. इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा था कि आबनाए हुरमुज में फंसे जहाज़ों की रहनुमाई के लिए अमरीकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ वक्त के लिए रोका जा रहा है. ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची ने चीनी वजीर खारजा वांग जी से मुलाकात की है, जिसके बाद उनका कहना था कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे माहिदा ही कबूल करेंगे. उधर पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि अमरीकी धमकियों के खात्मे से ही आबनाए हुरमुज में महफूज राहदारी मुमकिन होगी. उधर अमरीकी सेंट्रल कमान का कहना है कि उसने खलीज ओमान में एक ईरानी परजम बरदार ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे नाकारा बना दिया. सुहेल आफरीदी का कहना है कि मैं भी तैयार हूं और कौम भी तैयार है, इमरान खान हुक्म करे तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे. इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अलशिफा अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने वाजे किया है कि सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं हैं, बल्कि आईनी तौर पर खुद मुख्तार अदालतें हैं. पाकिस्तान वेमेंस टीम ने जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में शिकस्त देकर वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीत ली और आज रात से गैस की कीमत में 5 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
3: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब के लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003. गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 203.30 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान के हर बैंक में आप ट्रांजेक्शन हो सकती है. वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondalbrothers.com पर आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 203.30. कॉल कर लीजिए 9053060000. वेंसडे है आज. मॉर्गेज के हवाले से राजीव तलवार साहब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे. डेट कंसल्टेशन के हवाले से आशा मनवर साहब हमारे साथ हुआ करते हैं और आज से विशाल त्रिवेदी साहब भी इंश्योरेंसेज के हवाले से हमारे साथ ज्वाइन किया है. उनका इंटरव्यू भी आप तक पहुंचाएंगे. प्राइसिस इमिग्रेशन से आमडी भाई हमारे साथ होंगे और उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचाएंगे. कैनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद हमारी भी आपकी बातें हैं, लेकिन ये सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है. अब से 9 बजे तक मैं आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ. मेरे अच्छे परेशान इंसान एक खास वक्त में मुकर्र शुदा लम्हे में पैदा होता है, फिर एक और मुकर्र शुदा लम्हे में रुखसत हो जाता है. इन दो नुकतों के दरमियान आज़ादी का सफ़र है, इम्कान और हासिल का सफ़र है. इंसान की आधी उम्र तो नींद में गुजर जाती है, मजबूरी है, सोना तो है ही. बचपन और बुढ़ापा और बीमारी का आयाम निकाल दी जाए तो इंसान के पास बाकी क्या बचता है. इस पर मतजाद ये कि आधी ज़िंदगी बेचकर बाकी की ज़िंदगी को पालना होता है. दफ्तरों की नज़र होने वाली ज़िंदगी पहले ही बिक चुकी है. इनसे का अगर दुखा जाए तो इंसान के पास अपने लिए तो बस चंद साल ही रह जाते हैं. इस मुख्तसर अरसे में इंसान ने सब कुछ करना है. बाज़ूकात कुछ भी नहीं कर सकता. वो देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका सफ़र ख़त्म हो चला है और दामने मुराद खाली नज़र आता है. फिर देखता है और महसूस करता है कि सब कुछ उसका अपना तो था ही नहीं, वो ख़ुद भी अपना नहीं था. उसे भेजने वाले ने उसको इसी काम के लिए भेजा के जाओ और फिर वापस आ जाओ. अपने खाली दानम में रज़ा के फूल भरता और फिर पुकार उठता है, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर. मेरे अच्छे प्यारे सामीन, वक्त आने से पहले उस ज़िंदगी के लिए ज़रूर कुछ कर लीजिए जहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहना है. 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ.

0: लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट BramptonAppliances.ca।
4: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर फॉर स्पिरिचुअल सूफी एंड कव्वाली नाइट। Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
5: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi? Jassi ko chhodiye, kyunki Lisa's Cosmetics line hai Spring Warehouse Sale khas aapke liye. Perfume, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के राबते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
6: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
7: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
8: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
9: सिर्फ मॉर्गेजेस। दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001। लाइसेंस नंबर 12374।
10: जी हाँ, 9058191001 जनाब राजीव तलवार साहब के रابطے का नंबर है। द मोस्ट रिनाउंड एंड क्रेडिबल अगर हम कहें मॉर्गेज ब्रोकर हैं तो उनमें से सबसे पहले नाम जनाब हमारी कम्युनिटी में राजीव तलवार साहब का आता है। किसी किस्म की भी मॉर्गेज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप उनको कॉल कीजिए। ऑन द फोन आपको बता देंगे कि मुमकिन है या नहीं है। लास्ट मिनट की वो डील्स होती हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं। मॉर्गेज के हवाले से कोई मसला है आपको, एक बार आप इनसे रब्ता जरूर कीजिए। 9058191001 इनके रब्ते का नंबर है। बहुत वसी तजर्बा है इनका, मोर देन टू डेकेड से ये है सर्विस कर रहे हैं कम्युनिटी को। हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद कहेंगे। राजीव भाई, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
11: थैंक यू बर्की साहब, थैंक यू वेरी मच। हाई लिसनर्स, कैसे हैं आप सब?
10: बहुत शुक्रिया आपका। जो सूरत हाल है मईशत की, इकॉनमी को हम देख रहे हैं, काफ़ी मुश्किल में है। इंटरेस्ट रेट होल्ड किया है, आप भी शायद थोड़ा सा आइडिया दे रहे थे, जिक्र हो रहा था कि वो कम होने की तो बातें भूल जाएं। तो ओवरऑल क्या आपको लगता है इंटरेस्ट रेट? अब ज़ाहिर है जून में फिर इस हवाले से जो है वो मीटिंग होगी बैंक ऑफ कैनेडा की, रुकता कम होता है बढ़ता नज़र आ रहा है आपको?
11: देखिए सर, इंटरेस्ट रेट खाली इंटरेस्ट रेट के से नहीं है, इंटरेस्ट रेट के पीछे चार छह फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। सबसे नंबर वन है जीडीपी,
10: ठीक है,
11: जो फोरकास्ट है 2026 का बेयर मिनिमम 1.1 to 1.2%। सो बिल्कुल फ्लैट जीडीपी है, बिल्कुल फ्लैट। 2.6, 2.8, 2.9 अच्छे टाइम्स में रहती है, 1.1 है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3% से 1% पे आ रखी है। तो कहा, इट्स टोटली फ्लैट, इट्स स्टैग्नेंट। अब इन्फ्लेशन देखेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन मार्च में 2.4% हुई है, और वो इस वजह से हुई है कि गैस की और तेल की कीमतें जो एनर्जी की बढ़ी हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है। और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है एवरीथिंग गोज विद इट। अगर गैस बढ़ी है तो इन्फ्लेशन बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है तो फूड, ग्रोसरी, एवरीथिंग, लंबर, एवरीथिंग विल इंक्रीज। तो इंक्रीज होना लाजमी है। अब उसके बाद अब देखिए, इंटरेस्ट रेट को अभी आपने बिल्कुल ठीक बताया, अप्रैल में फेड्स ने 2.25% पे उसको होल्ड किया है, ओवरनाइट 4.45। और उसके बाद जो लेबर मार्केट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज की डेट में करीबन 6.5 से 7% है। तो कोई भी इंडिकेटर भट्टी साहब ऐसा नहीं लग रहा है कि जिससे कि कुछ आगे रिलीफ आने वाला है। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब चल रही है, इसलिए रेट बढ़ नहीं, अभी तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन मैं अपनी प्रोजेक्शन बता दूं, मुझे लगता है सर अराउंड सितंबर अक्टूबर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के आसपास 0.5% तक रेट बढ़ेगा एंड ऑफ द ईयर तक, अगर सितंबर से शुरू हो। तो आप ये लगाइए, दो बारी में 0.25 बढ़ा, तो एंड ऑफ ईयर हमारी जो आज प्राइम लेंडिंग रेट 4.45 है कैन बिकम 4.95। ये एक मसला है, मॉर्गेजेस बढ़ेंगी, फिक्स मॉर्गेजेस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी हुई हैं। जो फिक्स मॉर्गेज 3.79, 3.7 तीन साल की मिल रही थी, वो अब 4.44, 4.45 पे आ गई है। सो थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बट अभी इसका कुछ कर नहीं सकते, ये सारी वर्ल्ड में यही इकोनॉमी चल रही है। सबसे बड़ी बात, जो लोग मैं बात पिछले 3-4-6 महीने से आई थिंक हम डिस्कस कर रहे हैं सारे चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ऑल सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो लोग मॉर्गेज रिन्यू करा रहे हैं इस साल में और अगले साल में, अगर पहले 6 महीने में, they are going to get big high rates sir,
10: very right। 905
11: तो अगर आप उसको पहले फिक्स कर लेंगे दोस्तों, बहुत फायदे में रहेंगे। अगर आपको लगता है मैं लास्ट मिनट में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट्टी साहब एक आपको एग्जांपल बताता हूँ।
10: जी जी,
11: आज की डेट में मेरे पास कम से कम एक हफ्ते में 8 से 10 कॉलें पता क्या आ रही है, घर की वैल्यू 8 लाख, मॉर्गेज 12 लाख। तो क्या करेंगे आप?
10: सही बात है।
11: और ये अगर रेट बढ़ा, रेट बढ़ा, जो कि बढ़ना है सब अभी नहीं, सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो और ज्यादा इक्विटी गिरेगी क्योंकि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और गिर सकती है। और गिर गई तो जिनके घर में थोड़ी बहुत इक्विटी बची हुई है उसको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं लेंडर चेंज कर दूं तो नहीं कर पाएंगे दोस्त, तो डू इट नाउ। अभी भी रेट इतने ज्यादा नहीं है, बन सकती है बात। टेक केयर ऑफ योर मोर्गेज, ये फाइनेंशियल हेल्थ है, इसको ठीक नहीं रखेंगे तो दूसरी जगह भी प्रॉब्लम आती है। तो कॉल अस बैक, कुछ भी क्वेश्चन हो आपको अपनी मोर्गेज का आज की डेट में। भट्टी साहब, हमारे पास इतनी ज्यादा कॉल है, मैं आपको ये बता दूं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को हम मना क्यों कर रहे हैं, देयर इज नो इक्विटी इन द होम।
10: बिल्कुल ठीक है।
11: कम से कम 10 से 15 कॉल एवरी वीक मैं रिजेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास इक्विटी नहीं,
10: नहीं क्या से देंगे,
11: क्या अच्छा, करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते।
10: बिल्कुल ठीक। अच्छा,
11: तो इसको अगर फिक्स कर लेंगे तो या गो अहेड सर।
10: अच्छा, अब जैसे आपने बताया अभी सूरत हाल तो बहुत खराब हो गई, इक्विटी भी नहीं है आपको, जब किस तरह से, तो एक आपने लास्ट टाइम शायद बताया था कोई लोन के हवाले से या कोई ऐसी चीजें, मतलब कोई तो बैकअप, कोई तो ऐसा हो जो चीजें बेहतर, तो इस हवाले से आप
11: हेल्प देखिए सर। मैं लोन की पिछले 3 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं रेडियो के ऊपर, आपके रेडियो पर भी मैंने कहा है, हर तरह का लोन, हर तरह का बिजनेस लोन, चाहे वो बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे ऑपरेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे आपको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए हो, चाहे आपको स्टार्टअप के लिए चाहिए हो, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ लोन्स। सारे गवर्नमेंट लोन्स है, 500,000 to $1 million भी हम दिलवा रहे हैं। कॉल मी बैक, आई विल गेट यू द मनी। आपको पैसा मिला, आप उसको कहां यूज करते, दैट इज योर जॉब।
10: ठीक, बिल्कुल ठीक।
11: लेकिन आपको लोन मिल सकता है, इक्विटी गिरी हुई हुई है, और जो लोगों की रिन्यूअल आ रही है आने वाले पूरे एक साल में, टेक केयर ऑफ योर मोर्गेज राइट नाउ सर, इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम फॉर यू।
10: That's very important. इस मुश्किल सूरत हाल में प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वक्त से पहले प्लान करना बड़ा जरूरी है, और स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके लिए आप रابطہ कीजिए 905-819-1001। राजीव तलवार साहब के रابطے का नंबर है 905-819-1001। थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक आपसे फिर बात करते हैं।
11: थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। बाय लिसनर्स, टॉक टू यू नेक्स्ट वीक, कॉल मी बैक इन गुड फेथ एंड सी व्हाट आई डू फॉर यू।
10: जरूर, बिल्कुल जनाब, कॉल कर लीजिए, मुश्किल है इसमें कोई शक नहीं है। मॉर्गेज के हवाले से लोगों के लिए बहुत से मसाइल हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, लेकिन कोई ना कोई हल जरूर होगा। आप रब्ता करके मशवरा लीजिए 905-819-1001 राजीव तलवार साहब के रब्ते के नंबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पैगामात का तबादला हुआ है पाकिस्तान के जरिए, इसकी तस्दीक की गई है, ईरान ने तस्दीक कर दी है। लगता ऐसा है कि अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ बेहतर, उम्मीद बहुत है कि कुछ ना कुछ बेहतर सूरत हाल सामने आ सकती है। आगे चल के बात करेंगे, इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी।

जो आंसू दिल में गिरते हैं वो आंखों में नहीं रहते, बहुत से हर्फ ऐसे हैं जो लफ्जों में नहीं रहते। किताबों में लिखे जाते हैं दुनिया भर के अफसाने, मगर जिनमें हकीकत हो किताबों में नहीं रहते। बाहर आए तो हर एक फूल पर एक साथ आती है, हवा जिनका मुकद्दर हो वो शाखों में नहीं रहते। लिए फिरते हैं कुछ अहबाब ऐसे मुस्तरिब सजते, जहां दरबार मिल जाए जमीनों में नहीं रहते। महक और तितलियों का नाम भंवरे से जुदा क्यों हो, कि ये भी खिजा आने पे फूलों में नहीं रहते। जो आंसू दिल में गिरते हैं वो आंखों में नहीं रहते, बहुत से हर्फ ऐसे हैं जो लफ्जों में नहीं रहते।

0: सही,
1: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।

0: ஆகட்டிக்கோ கால்மலாம்.
1: Talhavat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhavat 647-295-7861.
0: To Talhavat ti ko call milan.
1: Talhavat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478-4773. अलकरम ज्वेलर्स. अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे. आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. 9058280009. It's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine-in karein ya take-out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice, Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ. बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा. एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600. क्वींस मैनर इवेंट सेंटर.
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
2: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर. सिर्फ $229 में हासिल करें 2 रोल अप बैनर्स, और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स. चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल, तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में. और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में. मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777. It's 416-710-6777.

0: ग्लोबल ट्रेवल एंड टूर्स मिसी सागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। अयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं, PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उम्रा और ज्यारात की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555. 905-275-3555. 918 Dundas Street East, Unit 1C, Mississauga.
1: Just for you. Anna Manchella job through the team of food just for you, bringing you world's largest

0: बाय बैंक्स. अगर आपके ऊपर मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस आपकी मॉर्गेज एज वेल एज आपकी लाइफ इंश्योरेंस को कवर करता है. एंड दैट अमाउंट इज गिवन टू योर वाइफ और योर चिल्ड्रन और योर बेनिफिशरी और योर स्पाउस. एंड दैट अमाउंट कैन बी यूज टू पे ऑफ द मॉर्गेज. एंड आपको जो एक्स्ट्रा इनकम है या एक्स्ट्रा जो पैसा है, वो आप इनकम रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं. बेसिकली मॉर्गेज इज कवर्ड थ्रू अ प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. और वो आप एक बार लेते हैं तो उसका प्रीमियम लॉक हो जाता है. सो एंड ऑफ द डे बटी जी यही है कि आप जितनी भी एसेट्स हैं उनको कवर कीजिए, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड.
1: बिल्कुल ठीक.
0: इवेंचुअली फॉर व्हाट?
1: बिल्कुल.
0: बैंक्स विल ओन द एसेट्स. एंड अगर आप मॉर्गेज इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर वो आप बैंक को पे करके आपकी फैमिली उसको इंजॉय कर सकती है एंड ऑफ द डे.
1: बिल्कुल सही है. नंबर नोट कीजिए, 6477679852, 6477679852. आपने कहा आपको प्रीमियम लॉक हो जाता है फॉर दी जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रहती है या जो मॉर्गेज की रिन्यूअल तक का मामला होता है.
0: वेरी गुड क्वेश्चन भट्टी जी. सो यही एक बहुत अच्छा यूएसपी है. ये पॉलिसी होती है आप 10, 20, 30 साल कस्टमाइज कर सकते हैं. तो मॉर्गेज से कोई इसका टाइम पीरियड का कोई लेना देना नहीं होता है. एंड द ब्यूटी इज अगर आप ये इंश्योरेंस लेते हैं तो आप किसी भी बैंक से जाके मॉर्गेज चेंज करा सकते हैं या रिन्यूअल आता है. ये प्रीमियम लॉक आज कर लिया है और वो 20 साल 30 साल या लाइफ लॉन्ग जो पॉलिसी होती है वो प्रीमियम कभी बढ़ेगा नहीं डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी.
1: जबरदस्त.
0: सो द पर्पस इज यू कवर यूर सेल्फ. And end of the day, even if you go to any other bank, your mortgage change हो रही है, आपकी पोर्टेबिलिटी उस इंश्योरेंस की हमेशा रहेगी. तो बार बार आपको बैंक से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1: नहीं, बिल्कुल ठीक है जनाब. कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड मॉर्गेज इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी किस्म के इंश्योरेंस के लिए, आप कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए कॉल कर लीजिए 6477679852, 6477679852. विशाल तवरी साहब हाई नेट वर्थ जो इंश्योरेंस स्टेट प्लानिंग एडवाइजर हैं और बड़े कामयाब इस हवाले से. कुछ और ऐड करना चाहेंगे इन द एंड विशाल भाई?
0: भट्टी जी, दिस इज माई फैमिली एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी इन योर पैट्रोनेज हियर एंड दिस रेडियो. एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि द पर्पस ऑफ दिस टॉक शो इज टू एजुकेट यू गाइज. एनी वन हु इज लिसनिंग, वी आर एजुकेटिंग हियर, वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस. और कभी भी हमारे इसमें बेचने की बात या कभी कोई सेलिंग की बात नहीं होती. अगर आप मुझसे बात भी करेंगे तो मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा आप ये ले लीजिए वो कर लीजिए. नो, माई जॉब इज टू एजुकेट यू. माई जॉब इज टू give so much value in our community because this is what we are supposed to do. So I'm blessed to have you and thank you.
1: You're welcome. Bahut shukriya aur thank you very much for your time aur next week aapse baat karte hain. Thank you. Bahut shukriya.
0: Definitely.
1: Number note kijiye Vishal Tavari sahab ka. Abhi call kar sakte hain 6477679852, 6477679852. Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM 24 ghante mein nishat Radio Pakistan dot fm sun sakte hain. Our television channel Toronto 360 TV. Real estate ke bare mein koi service chahiye team Bhatti sir कीजिए कॉल तला भट्टी 6472957861. घर खरीदना बेचना लीज करना साइन करना नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए 6472957861. और इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में. और ये बड़ा ज़बरदस्त, इसमें एवरीडे गोल्ड के प्राइसेस भी हैं, इनाम घर भी हो रहा है और इसके साथ साथ आपके लिए एवरीडे डिफरेंट किस्म के जो हैं वो सेगमेंट्स रखे गए हैं और स्टॉल्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ऑप्शंस रखी हैं. रेडियो पाकिस्तान हवाला देंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देंगे. और मेहंदी के स्टॉल्स यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी है, आप शम्स साहब को कॉल कर लें. शम्स रहमान 6416-710-6777. अजनाब खबरों का वक्त हुआ चला है. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज एक और तजर्बा हम करेंगे क्योंकि अक्सर औकात कॉल्स रह जाती हैं, पूरी कॉल मैं नहीं ले पाता. तो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर पे हमारा प्रोग्राम 9 बजे ख़त्म हो जाएगा लेकिन हम उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे कंटिन्यू रखेंगे कॉल जितनी होंगी. और मैं रिपीट कॉल भी ले लूँगा, सेम नंबर आपने कॉल करनी है. आप यूट्यूब पे हमारा चैनल है टोरंटो 360 TV, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर देखते भी रहें. और या फेसबुक हमारा अरशद भट्टी वाला फेसबुक या टोरंटो 360 वाला फेसबुक, उस पर ऐप के थ्रू भी आप जो हैं वो सुन भी सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए नंबर वही होगा 4165930003. लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की पेश करने जनाब जुबैरुद्दीन साहब.
2: You're listening to CMR FM 101.3.
3: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने.